0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।

0: बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इसके साथ ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

लीजिए श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोता सुनेंगे अब से कुछ ही पलों बाद कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति आनंद के साथ।

7:05 पर होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। संतोष राव ये कार्यक्रम लेकर आएंगे और 8:00 आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति आनंद के साथ। 9:00 होगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने, संतोष राव पेश करेंगे कार्यक्रम। और वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:05 पर पूजा आनंद के साथ।

रश्मि गुप्ता पेश करेंगी कार्यक्रम 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स। वेस्टर्न म्यूजिक आप सुनेंगे 12:05 पर और इसके बाद 1:05 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन रश्मि गुप्ता के साथ। स्वाति गुप्ता लाएंगी 2:00 कार्यक्रम आशियाना।

कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर 3 बजे होगा। प्रवीण शर्मा ये कार्यक्रम पेश करेंगे और इसके बाद 4:05 पर श्रोता सुन सकते हैं कार्यक्रम अल्फा जन स्वाति गुप्ता और ऋचा वर्मा के साथ। प्रवीण शर्मा लेकर आएंगे सिटी लाइट कार्यक्रम 5:05 पर। मैसेज मसाला मिक्स आप सुन सकते हैं 6:05 पर नीरजा चतुर्वेदी के साथ। ज्योति अलावत कार्यक्रम पेश करेंगी वेस्टर्न म्यूजिक का 7:05 पर। आप सुन सकते हैं म्यूजिक मस्ती 8 बजे नीरजा चतुर्वेदी के साथ और 9 बजे आप सुनेंगे आपकी याद आती रही। इसके बाद 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम होगा और 11:05 पर रंगे महफिल।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हे लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर. और शो शुरू हो चुका है सुप्रभात ज्योति के साथ. और 6:12 हो चुके हैं और दिल से जी हाँ दिल से दिल तक हमारा कनेक्शन है. और इसीलिए बहुत खुशी मिलती है जब हम आपसे मिलने आते हैं, आपसे बहुत सारे दिल की बातें करते हैं. तो आज हो गई है 10 जून, बुधवार का दिन है, बड़ा शुभ सा दिन है. तो इस प्यारे से दिन को शुरुआत करते हैं एक स्माइल के साथ. और ज़रा बाहर निकल कर आसमां तरफ देखिए, खुला आसमान है आपके लिए, खुला आसमान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, आज के दिन को बहुत स्पेशल बना सकते हैं. सुनते रहिए सुप्रभात ज्योति के साथ आकाशवाणी रेनबो पर.

आप भी ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं कि आसमां के पार शायद कोई और आसमां होगा. ऐसा तो हम इमेजिन करते हैं कि भाई वहाँ ऊपर कहीं ना कोई एक भगवान जी बैठे हैं और उनसे हम प्रेयर करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा. बिल्कुल डिवाइन पावर है जिस पर हम विश्वास करते हैं और हमें उस पर विश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत कुदरत हमारे आसपास है और कुछ ऐसे चमत्कार और जादू हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, आसमां के उस पार एक तो कोई बैठा है चाहे उसे हमने कभी देखा नहीं है. और उसी वजह से, इसी एहसास की वजह से, इसी विश्वास की वजह से हमारी ज़िंदगी, हमारे दिन, हमारे आसपास जो भी मोमेंट्स हैं वो सब इतने ब्यूटीफुल हो जाते हैं, है ना. और कुछ लोग तो किसी लालच की वजह से या फिर किसी फ़ायदे की वजह से या किसी डर की वजह से भी भगवान को पूछते हैं. क्या आप भी ऐसा करते हैं या आपकी सच्ची श्रद्धा है कि जो भी होगा हमारे लिए वो अच्छा होगा और हर पल हमारा, हर दिन हमारा, हमारी पूरी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल होगी, क्या आप ऐसा सोचते हैं? इससे एक बड़ा छोटी सी कहानी और एक सवाल है पूछूंगी आपसे. इंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल सा गाने जिसका नाम ही है ब्यूटीफुल. सुप्रभात कार्यक्रम ज्योति के साथ सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर.

यस ऑफ कोर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ हर पल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। और सुप्रभात कार्यक्रम में ज्योति के साथ आप बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि आप हमें सुनते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। कहीं भी सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, यही तो मैजिक है। तभी तो दिल से दिल तक हम कनेक्टेड रहते हैं। और एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज है, मैनी पीपल लर्न हाउ टू टॉक बट दे डोंट लर्न हाउ टू लिसन। लिसनिंग टू वन अनदर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ एंड म्यूजिक टेल्स अस हाउ टू डू दैट। बिल्कुल सही बात है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो कितना फोकस होकर सुनते हैं ना, एकदम लेजर शार्प फोकस होता है हमारा, कहीं ध्यान इधर उधर नहीं जाता और हमारे इमोशंस भी म्यूजिक के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सो हाँ, हमें ये सिखाता है कि हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए और लिसनिंग स्किल्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल, लिसनिंग इज़ अ स्किल, इट्स अ लाइफ स्किल। और जिसको भी आप सुनेंगे ना, उसको सुनिए, उससे पूछ के देखिए कि उसको कितना अच्छा लगता है कि जब उसको कोई सुनता है, कोई आपको सुनता है। सिर्फ बोलते रहने से थोड़ा ना कुछ होता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हम इमेजिन करते हैं कि आसमान के पार भगवान है या कोई ऐसे डिवाइन पावर है या जिनको भी आप अपना ईष्ट मानते हैं और हम उन पर विश्वास करते हैं। तो एक सवाल है मेरे पास आपके लिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में दो मूर्तियां मिलें, पत्थर की मूर्ति है, एक भगवान राम की और एक रावण की, तो आप किसे उठाएंगे? बता सकते हैं। बाकी इस कहानी को और इस जवाब को मैं पूरा करूंगी थोड़ी सी देर में इस सॉन्ग के बाद।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर

0: जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ आप सुन रहे हैं और एक सवाल मैंने आपसे किया था जो कि एक कहानी के माध्यम से किस्से के माध्यम से मैं उसका जवाब आपको बताना चाहती हूँ जो एक सत्य है, बहुत सच है कि अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि हम रास्ते पे जा रहे थे और आपको वहाँ दो मूर्तियाँ मिलती हैं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, एक भगवान राम की और एक रावण की, तो आपके जवाब तो आए हैं। एक सज्जन ने लिखा है, एक लिसनर ने लिखा है कि अगर मुझे ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं तो मैं दोनों को उठा लूँगा और किसी जगह पर रख दूँगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक तरीका है, मगर ज़्यादातर क्या होता है कि हम राम की, भगवान राम की मूर्ति उठाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान राम जो है वो सत्य, निष्ठा, सकारात्मकता के प्रतीक हैं और रावण नकारात्मकता का प्रतीक है। और फिर से हम अगर रास्ते पे जा रहे हैं और हमें फिर से दो मूर्तियाँ मिलती हैं और राम और रावण की ही मिलती हैं, मगर इस बार जो राम की मूर्ति है वो पत्थर की है और रावण की मूर्ति जो है वो सोने की है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि सोने की मूर्ति उठाना प्रेफर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम सत्य और असत्य, पॉजिटिव नेगेटिव, अपनी सुविधा और अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग तय करते हैं। अगर हम सिर्फ किसी फ़ायदे या डर की वजह से ही भगवान को पूछते हैं कि हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए, या हमें कभी हमें लगता है हमने कुछ गलत कर दिया है, कुछ डर लग रहा है, तो हम भगवान से प्रे करते हैं कि हमें बचा लीजिए, या हमें कुछ चाहिए तो हम कहते हैं कि हमें ये दे दीजिए, तो किसी न किसी फ़ायदे की वजह से, किसी न किसी डर की वजह से हम भगवान को या हम उनको कोई भी नाम दें, हम उन्हें पूछते हैं। बल्कि हमें तो बिना किसी डर के हमेशा सही काम करते हुए, सही मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने मन को भी पावन रखना चाहिए, और वो सही काम करेंगे तो ही पावन रहेगा।

हमें लगता है कि हमने गंगा में स्नान कर लिया तो अपना मन पवन कर लिया, सारे पाप हमने धो लिए मगर ये भी एक भ्रम होता है क्योंकि वहां से वापस आने के बाद हम फिर कुछ ऐसे कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमेशा सचेत रहकर हमेशा ऐसे काम करें जिससे किसी का नुकसान ना हो, ना अपनी नदियाँ गंदी हों, ना हमारी आसपास की जगह गंदी हो, ना किसी का मन दुखे और ना ही किसी का कोई नुकसान हो। तो बस ये तो हम जानते हैं, कुछ भी करने से पहले ना अंदर से वो एक आवाज़ आती है, एक सुकून की आवाज़, एक हाँ की आवाज़ या फिर एक ना की आवाज़ और एक परेशानी की आवाज़ कि नहीं ये काम नहीं करना। तो बस जिस काम से खुशी मिले वो करें और वही करें जो अपने लिए भी पसंद है। ये एक छोटा सा मंत्र है जिसे हम हमेशा फॉलो कर सकते हैं और अपना मन जो है वो हमेशा पावन रख सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आपके साथ मेरे साथ जुड़े हैं, आपके आपने अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर की है जिन्हें मैं थोड़ी सी देर में शामिल करूंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर आपके साथ वापस जुड़ते हैं।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: जी हाँ, आपके लिए ही होगा अब ये शो गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मगर 7:05 से, और उसमें आपके साथ होंगे संतोष राव, और उसके बाद 8 बजे मैं फिर से आपसे जुड़ूंगी। तो अभी आप सुन रहे हैं सुप्रभात ज्योति के साथ, 6:45 हो चुके हैं, 6:45 एट द स्टूडियो क्लॉक, वेंसडे लवली मॉर्निंग है। स्टूडियो के बाहर देखूं तो मौसम अभी तो अच्छा है, सुबह ठंडी अच्छी खासी ठंडी हवा थी, सुहाना सा मौसम था, तो आज का दिन हमारा यूं ही रहे अच्छा सा, और अगर गर्मी भी आएगी तो कोई बात नहीं, मगर एक अच्छी खबर भी है, बताऊंगी थोड़ी देर में, सारी बातें अभी थोड़ी ना बताऊंगी। सुंदर यह आकाशवाणी रेनबो ज्योति के साथ कार्यक्रम सुप्रभात, एंजॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा गाना जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। तो सुनिए, अपने आप से सवाल पूछिए और बताइए।

0: तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के
1: जी हाँ, कभी कभी हमें, कभी कभी नहीं, हमेशा ही अपनी खोज में रहना चाहिए, हमेशा अपने ऊपर ना मतलब एक आई चेक रखना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हमें कुछ और नया करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सक्सेस की, हमारी खुशियों की, हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे घर वालों को, हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स, उनको सबको उसका इंतज़ार है। तो ये तो हमें करना ही चाहिए। और अगर कोई आपको कहे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तो जस्ट उसको इग्नोर कर दीजिए। And talk to yourself very carefully because you are listening.

जब हम छोटे होते हैं या हमें अकल नहीं होती है, हम मैच्योर नहीं होते हैं, तो हम उन लोगों की बातों से परेशान और अफेक्ट हो जाते हैं जो हमें जानते भी नहीं है. मतलब पता नहीं किस किस से कंपटीशन हम कर रहे होते हैं. और ऐसा अक्सर होता है कि एक उम्र तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, फिर एक उम्र ऐसी आती है जब हम इस डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और फिर एक उम्र ऐसी निकल जाती है जब हमें पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था, सिवाय हमारे अपने पेरेंट्स के, हमारे अपने सिबलिंग्स के, हमारे अपने वेल विशर्स के, अपने जो भी आपके क्लोज वन हैं उनके अलावा कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा. तो इसीलिए सबसे बड़ी जो हम कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात जो ये कि हम परेशान हो जाते के लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए उससे तो परेशान होना नहीं है. अपने आप पर हमेशा वर्क करते रहें, अपने आप को देखते रहें और अपनी तलाश करते रहें, और जैसे मैंने कहा कि अपने आप से बहुत केयरफुली बात करें. आप अपने आप के बारे में, अपने आप से जो भी कहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है. सो नेगेटिव तो हम नहीं कहेंगे, अपने आप से हम जब भी बात करेंगे बहुत ही बहुत केयरफुली करेंगे.

जी हाँ, हमारे भगवान हमारा रब सबका ख्याल रखेगा। और एक प्यारा सा मैसेज कि हम बस यही नहीं करते हैं, अपनी खोज नहीं करते हैं, बेकार की खोज में समय नष्ट करते हैं। तो इसलिए सेल्फ डिस्कवरी, खुद से सवाल पूछना, खुद की खोज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के दिन के लिए आपको एक अच्छा सा काम मिल गया है बुधवार के दिन, तो अपने पूरे दिन में इस पर जरूर चेक रखिएगा। और आकाशवाणी रेनबो के साथ यूं ही बने रहिए। और अभी फिलहाल मैं लूंगी आपसे थोड़ी सी देर के लिए इजाजत, मिलूंगी आपसे 8 बजे फिर से गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। उससे पहले 7:05 से आपके साथ संतोष और जुड़ जाएंगे बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक के साथ। कीप लिस्निंग, कीप एंजॉयिंग आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026

0: आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त है एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों आज है 10 जून 2026 यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 10 जून इस वर्ष का 161वां दिन होता है और इस साल 2026 में अभी भी 204 दिन और बचे हुए हैं। जी हाँ, 204 दिन क्योंकि ये साल है 365 दिनों का। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको भी मेरी तरह इस बात का एहसास हो जाए कि वक्त बिना किसी शिकायत के अपना सफर बिना रुके तय करता जाता है। और ये हम सब के लिए एक सीख है कि जब हमारी नजरें अपनी मंजिल की तरफ रहती है ना और हमारे कदम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते जाते हैं तो हम अपनी उस मंजिल को जो हमने अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दी उसको पा ही

देते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें हम आपको देते हैं आज के दिन से संबंधित ढेर सारी जानकारियां, ताकि आप इस प्रोग्राम को सुनकर न सिर्फ अपने आज के दिन को एक प्लानिंग के साथ गुजार सकें, बल्कि मनोरंजन के द्वारा अपने जीवन को ठीक वैसे ही खुशियों वाला बना सकें जैसे गोविंदा और सुष्मिता सेन एक फिल्म में एक दूसरे के जीवन में करते हैं प्यार भरने की कोशिश। पहले इस गीत का आनंद लीजिए, उस फिल्म का नाम भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आनंद ले लीजिए इस गीत का आकाशवाणी FM रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ये गीत था फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से। और एक बात बताऊं, मैं भी झूठ नहीं बोलता हूं, कोशिश तो यही करता हूं कि झूठ ना बोलूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा ना तो मेरी आंखें बता देंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो उस समय हमारी आंखों की हरकतें और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, एक टेंशन की वजह से बढ़ने लगती है, या हम यूं कहें कि बदलने लगती है, और फिर हमारे दिमाग को है ना सुनानी पड़ती है एक नई कहानी, और कहानी की सच्चाई घबराहट के कारण पकड़ में आ जाती है। जी हाँ, ऐसे समय में क्या होता है ना, हम नजरें चुराना शुरू कर देते हैं, ना चाहते हुए तेजी से हमारी पलकें झपकनी शुरू हो जाती है, और हमारी आंखों की पुतलियां जो होती है ना झूठ बोलते समय थोड़ी बड़ी हो जाती है ऐसे क्योंकि इस वक्त दिमाग एक मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है। अब देखिए, जब इतनी टेंशन होती है झूठ बोलने में, तो इससे अच्छा है सच का दामन थामे रहिए और बिना झूठ बोले राकेश रोशन की तरह नजर में नजर डालकर कह दीजिए सच, और फिर यही सच और आपकी आंखें दोनों आपको पहुंचा देंगे आपके अंजाम तक। तो फिर आप दोनों के लबों पर हो सकता है यही इकरार आ जाए।

और दोस्त इससे पहले कि यही गीत हम भी स्टूडियो में आरजे ज्योति आनंद के लिए गुनगुनाने लगे और हम वो बात आपको बताना भूल जाएं जिसके लिए हमने इतनी भूमिका बांधी थी इस गीत को सुनाने से पहले कि ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। साहिल लुधियानवी जी का लिखा खूबसूरत गीत है। वैसे आरजे ज्योति आनंद की भी आंखें हैं ना, बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। खैर, हमारे कंप्यूटर जी हमसे कह रहे हैं कि अपनी नजरों को इधर उधर से हटाकर अब हमारी स्क्रीन पर लगाइए और जल्दी से बता दीजिए योग दिवस के महत्व के बारे में। अब आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि हम आरजीस कभी कंप्यूटर जी से है ना पंगे नहीं लेते हैं, इसीलिए उनकी बात तो हर हाल में हमें माननी पड़ेगी, है ना। ओके दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इसका मुख्य कारण है कि लोगों को योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूक किया जा सके। ये प्राचीन भारतीय अभ्यास यानी योग हमारे शरीर में तनाव और मानसिक शांति के लिए बहुत मददगार साबित होता है। जैसे नियमित अभ्यास से हम शरीर को लचीला, मजबूत और निरोग बना सकते हैं, तो वहीं ये पुरानी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और मोटापे से लड़ने में भी कारगर है। इसके प्राणायाम और ध्यान मतलब मेडिटेशन जो है ना मन को शांत करते हैं, जिससे डिप्रेशन व एंजाइटी जो होती है उससे भी हमें राहत मिल जाती है। यानी योग करे सबको निरोग, और इसीलिए ये दिन पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और सद्भाव के संदेश के साथ जोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, जो रोजाना आपके लिए लेकर आता है ढेर सारे प्रोग्राम जिसमें मनोरंजन भी होता है और जानकारियां भी, जैसे हमारा ये गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद एसआर। फिलहाल आनंद लीजिए आप इस खूबसूरत गीत का आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों अभी आपने गीत सुना क्रिश 3 फिल्म से तू ही बता। अब फिल्म में कौन किससे कह रहा है तू ही बता और क्यों कह रहा है ये सब छोड़िए, क्योंकि जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दोस्तों आज ही के दिन यानी 10 जून 1946 में राजशाही मतलब राजतंत्र की समाप्ति के बाद इटली को आधिकारिक रूप से गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: और दोस्तों आज ही के दिन यानी 10 जून 1986 को भारतीय क्रिकेट के लिए एक दिन मतलब ये दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि 1986 में आज ही के दिन कपिल देव की कैप्टेंसी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट से हराकर पहली बार ऐतिहासिक टेस्ट मैच को जीता था। इस मैच में दिलीप वेंगसरकर ने पहली पारी में नाबाद 126 रन बनाए थे और इसके साथ ही वे लॉर्ड्स में लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए थे। और कप्तान कपिल देव को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मतलब मैन ऑफ द मैच चुना गया था, क्योंकि उन्होंने दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए थे और जीत के लिए मिले 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 10 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाकर विजयी का जड़ा था। जी हाँ, तो वहीं भारत की पहली पारी में चेतन शर्मा ने 5 विकेट लिए थे। इस मैच में मतलब सबकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से 1986 में यह इतिहास बना था।
1: यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: और दोस्तों 2008 में आज ही के दिन 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। लगे रहो मुन्ना भाई वैसे तो 2006 में रिलीज हुई थी, जिसको राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था और विधु विनोद चोपड़ा जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। एक बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म ये मुन्ना भाई एमबीबीएस का दूसरा भाग है, जिसमें संजय दत्त मुन्ना और अरशद वारसी सर्किट की भूमिका में और इनकी शानदार जोड़ी ने महात्मा गांधी के विचारों और गांधीगिरी के संदेश को बहुत ही हास्यपूर्ण और प्रेरणादायक तरीके से पेश किया था। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो एक मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन मुन्ना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक रेडियो जॉकी जानवी मतलब विद्या बालन से प्यार हो जाता है उन्हें, और जानवी को प्रभावित करने के लिए मुन्ना झूठ बोलता है और वो एक सच्चा गांधीवादी है ऐसा उसको बताता है, और इस झूठ को सच साबित करने के चक्कर में मुन्ना को महात्मा गांधी की आत्मा दिखाई देने लगती है। गांधी जी के सिद्धांतों सत्य और अहिंसा पर चलकर मुन्ना न केवल आम लोगों की परेशानियां सुलझाता है बल्कि समाज को एक नई दिशा भी देता है, जिसे गांधीगिरी कहा गया है। और इस गांधीगिरी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसीलिए आज ही के दिन यानी 10 जून 2008 को इस लगे रहो मुन्ना भाई को मिला था सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का।

पुरस्कार। अब इतनी बात की है इस फिल्म की, तो एक गीत तो इस फिल्म का बनता है ना। अब कौन सा ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप आनंद लीजिए इस गीत का। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

दोस्तों लगे रहो, मुन्ना भाई फिल्म में संजय दत्त और विद्या बालन को ये डर सता रहा था कि एक दूजे के बिन उनके पल कैसे कटेंगे, है ना। लेकिन विश्व के भूगर्भ जल वैज्ञानिकों को ये डर सता रहा है कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, कहीं एक दिन जल की समस्या इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हम सब बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाए। और इसीलिए हर साल आज ही के दिन यानी 10 जून को हर साल विश्व भूगर्भ जल दिवस यानी वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके और कैसे पानी को बचाना है, कैसे बर्बाद होने से जल को बचाना है, उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। आज के दिन विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों

को जागरूक किया जाता है। तो आइए आज से हम भी पानी को बचाने के लिए और कारगर उपायों को सोचें और उन पर अमल करके इस दिशा में अपना सहयोग दें, क्योंकि जल है तो जीवन है, और जीवन है तो आनंद है, और आनंद है तो आकाशवाणी है, और आकाशवाणी है तो एसआर यानी संतोष राव है, और जहां संतोष राव है वहां आप हैं, और जहां आप हैं वहां मनोरंजन भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। तो आइए बढ़ते हैं जानकारी के बाद मनोरंजन की तरफ और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत है आकाशवाणी FM रेनबो पर। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विद SR, SR बोले तो संतोष राव।

दोस्तों, फिल्म पुलिस पब्लिक का ये गीत आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी हमने आपको सुनाया, और उसका रीजन भी यही है क्योंकि ये बातें कर रहे हैं आंखों की। और आज है 10 जून, और 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस भी मनाया जाता है, और इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में नेत्रदान करने के प्रति जागरूकता आ सके। मरने के बाद अपनी आंखें दान करके दुनिया भर में लाखों लोगों को नई दृष्टि और रोशनी दी जा सके, इसीलिए लोगों को उत्साहित किया जाता है। नेत्रदान के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है, किसी भी उम्र या वर्ग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जिन लोगों को मेरी तरह चश्मा लगा हुआ है या जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त हो, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो सोचिए मत, इस नेक काम को जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। हम रहें ना रहें, मगर हमारी आंखें किसी और के जरिए इस संसार को निहारेंगे, है ना। सोचकर ही कितना अच्छा सा फील हो रहा है ना। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि नेत्रदान करने के लिए, उसके निर्णय के लिए अभी आपको और सोचने का टाइम चाहिए, तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, जहां ढेर सारे कैंप लगाए जाते हैं। तब आप अपने निर्णय को उस दिन, उस समय, उस पखवाड़े में अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी आंखों से दूसरों की आंखें बनकर सपना सजा सकते हैं, और राजा रानी बनकर प्यार की बारिश में कुछ इस तरह डूब सकते हैं।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विथ SR बोले तो संतोष राव। समय हो गया है 7:54 और 54 सेकंड हो गए हैं और 8 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और 8 बजे से 9 बजे तक इस कार्यक्रम का अगला भाग संभालेंगी ज्योति आनंद, थोड़ी देर में स्टूडियो में आने वाली है। तो इसलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं उन हस्तियों पर जिनकी आज जयंती है या वो मना रहे हैं अपना जन्मदिन। सबसे पहले चलते हैं 323 ईसा पूर्व में। आज ही के दिन 323 ईसा पूर्व में महान विश्व विजेता सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था और आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर। रूप कुमार राठौर एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ संगीतकार भी हैं। आपने हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी सहित कई भाषाओं में गीत गाए हैं, लेकिन इन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई संदेशे आते हैं बॉर्डर फिल्म का और मौला मेरे मौला जैसे गानों के द्वारा। और ये गीत रूप कुमार राठौर की पहचान है। आज इनके जन्मदिन पर आकाशवाणी FM रेनबो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: वैसे दोस्तों 10 जून ने एक तरफ जहां रूप कुमार राठौर जैसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी दी तो वहीं कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड को हमसे छीन भी लिया। 10 जून 2019 में भारत के एक महान और बहुमुखी नाटककार, अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और साहित्यकार जिन्होंने आधुनिक भारतीय रंगमंच और सिनेमा को एक नई दिशा दी थी। 10 जून 2019 को 81 वर्ष आयु में बेंगलुरु में गिरीश कर्नाड जी का निधन हुआ। 1974 में पद्मश्री और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित गिरीश कर्नाड जी को आकाशवाणी आज उनकी पुण्यतिथि पर करता है शत शत नमन।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज विलेन जीवन का भी आज पुण्यतिथि है उनकी। 1960, 70 और 80 के दशक की मुख्यधारा की फिल्मों में एक से बढ़कर एक नकारात्मक और चालाक विलेन के किरदार निभाने वाले जीवन का असली नाम था ओंकार नाथ धर और इनका जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। हिंदी सिनेमा में जीवन इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में, धार्मिक और पौराणिक फिल्मों में मतलब बात करें अकेले नारद मुनि का किरदार निभाया। उनके मुंह से निकलने वाला नारायण नारायण का संवाद इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी नारद मुनि समझने लगे थे। जॉनी मेरा

नाम अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, नसीब और लावारिस जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले जीवन जी 10 जून 1987 को 71 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आज उनकी पुण्यतिथि पर करता है उनको नमन और उनके द्वारा ही अभिनीत एक फिल्म अमर अकबर एंथनी का गीत सुनाता है। और क्योंकि इसके बाद 8 बजे से ज्योति आनंद आपके साथ जुड़ेंगे और मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा 9 बजे से 10 बजे तक लेकर प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। नमस्कार।

Hey listeners, good morning and welcome back. आकाशवाणी रेनबो 102.6 के फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति के साथ. और बिल्कुल झूम लीजिए, घूम लीजिए, क्योंकि जो मौसम है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो करवट बदलता है ना, ये थोड़ी सी हमें राहत तो दे रहा है. और वैसे टेम्परेचर तो काफी ज्यादा है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है. मगर ये जो मौसम है ना, ये आने वाले दिनों में फिर से अच्छा सुहाना हो जाएगा. और आई थिंक ये अच्छी बात है जब बीच बीच में कभी धूप आ जाती है और फिर कभी कभी थोड़ी सी बौछार पड़ जाती है और हमें एक सुकून और एक खुशी दे जाती है. तो मौसम का हाल यूं ही रहेगा. फिलहाल इस मोमेंट को, जो अभी ये पल है, इसको खूबसूरत बनाते हैं एक स्माइल के साथ. कोई भी चीज़ अगर आपको टेंशन दे रही है ना या स्ट्रेस दे रही है, तो उसे अभी

जब मौसम अच्छा होता है तो दिल हमारा अपने आप ही खुश हो जाता है, दिल से दिल मिल जाते हैं, मूड अच्छा हो जाता है और हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है। और जब मौसम ठीक नहीं होता ना तो कुछ भी अच्छा हो रहा तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है ना। और कल शाम को ऐसा ही हुआ दिल्ली NCR में, जो एकदम आंधी चली, तूफान चला और उसके बाद थोड़ी सी कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। मगर इस टाइम पर भी आपको इन्जॉयमेंट के साथ साथ अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब बहुत तेज़ आंधी चलती है तो काफ़ी सारी चीज़ें उड़कर भी आती हैं। ऐसा मैंने देखा अपने आसपास, कहीं कोई टीन उड़ के आ रहा है, कोई लोहे का पीस उड़ के आ रहा है, या फिर कुछ और भी प्लास्टिक की चीज़ें उड़ के आती हैं जब इतनी तेज़ आंधी होती है। और इतनी तेज़ आंधी थी कि दो फ्लाइट्स तो डाइवर्ट भी की गई हैं। तो जहाँ हम मौसम का मज़ा लेते हैं और मौसम अच्छा होता है तो हमें अपना ख्याल भी रखना है और उसे इन्जॉय भी करना है। और हवाएं बहुत तेज़ चली थी, मगर आने वाले दिन में, जैसे कि आज 10 जून है, तो 11 और 12 जून को भी इसी तरह की स्थिति अनुमानित की गई है मौसम विभाग के द्वारा। और कहीं कहीं तो बहुत तेज़ आंधी चलेगी, मौसम ख़राब रह सकता है, मगर हाँ, इतनी तपती धूप के बाद कहीं कहीं जो है वो बारिश ज़रूर पड़ेगी। और इतनी थोड़ी सी इतनी सारी गर्मी के बाद, इतनी तपती गर्मी के बाद जब थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मगर हाँ, सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो AQI है दिल्ली का, वो फ्लक्चुएट हो रहा है बिटवीन 102 एंड 163, जो कि मॉडरेट से लेकर पुअर कैटेगरी के बीच में आता है। सो ध्यान रखें, मास्क पहने, और जब आंधी तूफान हो तो कहीं बाहर ना जाएं, ये सब आप जानते हैं, मगर स्टिल एक बार याद आ जाता है, क्योंकि इन्जॉयमेंट के बीच में हम ये सब भूल जाते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं, बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो कर रही है आपका इंतज़ार यहीं पर। सुनते रहिए 8:14 बाय द स्टूडियो क्लॉक, ज्योति के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

चलो आपको एक फायदे के बाद बताती हूँ। अब आप राजीव चौक से एयरपोर्ट टर्मिनल आपके लिए जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के फेज 5 में आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ के बीच बन रहे सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर पर शिवाजी स्टेडियम के पास एक नया मेट्रो स्टेशन बनेगा, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के जो करंट स्टेशन है उसके साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा। और खास बात यह है कि इस कॉरिडोर के साथ शिवाजी स्टेडियम

से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बीच जो 800 मीटर लंबा है रास्ता, वो सबवे बनाया जाएगा और ये दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा सबवे होगा और इससे भीड़ में तो कमी आएगी ही। राजीव चौक अभी कश्मीरी गेट के बाद दिल्ली मेट्रो का दूसरा सबसे बिजी मेट्रो स्टेशन है और डीएमआरसी का कहना है कि सेंट्रल विस्ता कॉरिडोर पर आरके आश्रम और इंद्रप्रस्थ इंटरचेंज स्टेशन बनने पर राजीव चौक स्टेशन पर भीड़ कम हो जाएगी और आपका एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा। इन दोनों स्टेशन के बीच में मेट्रो बदलने की सुविधा आपको मिलेगी। वैशाली, आनंद विहार, लक्ष्मीनगर, नोएडा समेत दिल्ली के कई इलाकों से आप आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 पर आसानी से पहुंच जाएंगे और इस टाइम में शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का ही स्टेशन है, तो अभी मेट्रो स्टेशन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से नहीं जुड़ा है, तो बहुत जल्दी आपको ये नया स्टेशन मिलेगा और आप एयरपोर्ट बहुत जल्दी आसानी से पहुंच पाएंगे।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप ज्योति के साथ, और बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ती हूँ, और उस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि पेड इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है UG और PG स्टूडेंट्स को, जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ ऑनलाइन आकाशवाणी रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो भी DRDO के साथ, तो आपके लिए ये मौका है। दिल्ली में इंटर्नशिप आपके लिए ऑप्शन है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये। तो भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 6 महीने की पेड इंटर्नशिप का नोटिस जारी किया है। इसमें आपको पे किया जाएगा और जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल काम सीखना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आपको बस फॉर्म भरकर ईमेल करना होगा। ये नई इंटर्नशिप DRDO के प्रीमियर रिसर्च लैब में है, दिल्ली में निकाली गई है और इसके लिए 40 इंटर्न्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो जिन्हें लैब के एक्सपर्ट के साथ काम करने का चांस मिलेगा और ये पेड इंटर्नशिप है तो आपको मतलब सीखने के साथ साथ पैसे मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 40 स्टूडेंट्स के लिए जगह है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने की है, 6 मंथ्स की है। टोटल स्टाइपेंड आपको 30,000 रुपीज़ मिलेगा और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 15 जून है। आज 10 जून हो गई है तो 15 जून जो है वो लास्ट डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और 1 जुलाई से ये इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है। सो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स UG एंड PG स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के साथ साथ कुछ सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल और साथ ही साथ कुछ पॉकेट मनी भी आ जाएगी, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, 15 जून लास्ट डेट है।

जब हमें ट्रैवल करना होता है और हमारी ट्रैवलिंग स्मूथ रहती है और हमें कम्यूटिंग के लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट मिलते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है ना मज़ा दुगना हो जाता है सफ़र का। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राजीव चौक से आप IGI एयरपोर्ट बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे, तो उसी तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी 14 और 15 जून से अलग अलग राज्यों की बस सेवाएं शुरू होंगी। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और UP के प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, तो यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना भी अब हर जगह से काफ़ी आसान होगा। और बस सेवा का रूट मैप जो है वो तैयार हो गया है और 14 और 15 जून से बसों का संचालन इन रूट्स पर शुरू हो जाएगा। यात्रियों के लिए टैक्सी सुविधा के लिए भी एक जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जो ऐप बेस्ड कंपनीज हैं जिनका इस्तेमाल हम सब करते हैं, उसकी सेवा भी उपलब्ध रहेगी। और उसके अलावा प्रीमियम और एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूल जो है वो यात्रा आप कर सकेंगे, उसके लिए एक विशेष इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा से भी करार किया गया है, जो कि मतलब एनवायरनमेंट का भी ख्याल हम रख रहे हैं, इसलिए विशेष इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा के साथ भी अनुबंध किया गया है। चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक सीधी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्रियों को ये सीधी बस सेवा से कनेक्टिविटी देने के लिए DTC दिल्ली के प्रमुख बस स्टैंड्स जैसे कश्मीरी गेट, सरायकाले खां, आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली के ज्यादातर एरिया को कवर करते हुए बसें संचालित करेगी। तो हर जगह से प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल रही है, तो आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एयरपोर्ट आप पहुंचना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, आपके लिए सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ एक और सफ़र है जिसका जो ड्यूरेशन है वो 6 घंटे की हो गई है। बताती हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करो।

मैं तो अड्डा आज हाल चाल नहीं पूछे आपका हाल चाल नहीं पूछा मैंने, कैसे हो आप? पूछा तो था और स्टार्टिंग में कहा भी था कि कोई चीज़ परेशान कर रही है या स्ट्रेस दे रही है तो बस स्माइल कर दो और उस टेंशन को भूल जाओ और आज के दिन को होपफुल और इंटेंशनल बनाओ। सोचो कि नया क्या कर सकते हैं, जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते हैं, है ना? तो इसलिए सोचो कि क्या नया कर सकते हैं, नए नए थॉट्स, नए नए विचार अपने दिमाग में लेकर आएँ। और मौसम चल रहा है छुट्टियों का, है ना? गर्मी का मौसम चल रहा है, छुट्टियाँ हैं और हर कोई कहीं ना कहीं घूमने जा रहा है। तो बस आपके सफ़र से ही ज़रूरी एक और बात बताती हूँ, जो फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, सितंबर से शुरू होगा वो, मगर बता देती हूँ आपको। दिल्ली और NCR से अब हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच जो धर्मशाला शहर है ना, वहां पहुंचना आसान होने वाला है। दिल्ली से धर्मशाला पहुंचने में जहां पहले 9 से 11 घंटे का वक्त लगता था, वो घटकर अब सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का रहेगा। और इसके लिए 4 लेन के हाई स्पीड हाईवे को तैयार किया जा रहा है, जो इसी साल सितंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में बन रहे इस नए 4 लेन हाईवे और सुरंग के नेटवर्क से ये प्रोजेक्ट तैयार होगा और इस हाईवे से दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सीधा सीधा फायदा होगा। तो फायदा तो होगा ही भाई, घूमने जाएंगे, समय कम लगेगा, अपनी

फेवरेट प्लेस पे जाएंगे तो मज़ा तो आएगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने PWD और NHAI को सौंपी है, तो बहुत जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। काफ़ी स्पीड से चल रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि सितंबर तक ये हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे है मगर हो जाएगा। उसके बाद आप इस हाईवे से जब सफ़र करेंगे तो वहाँ पहुँचना आपको बहुत सुखद एहसास देगा। इंजॉय कीजिए खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ज्योति के साथ।

धीरे धीरे ही सही 8:57 हो चुके हैं और मेरे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि संतोष है स्टूडियो में लेकर आपके लिए नया शो, नेक्स्ट शो दिल की तराने, गाने नए पुराने 9 बजे से वो आपके साथ होंगे, और उसके बाद 10:05 से आप पूजा आनंद के साथ सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आवर, और इसके बाद रश्मि गुप्ता आपके साथ जुड़ेंगी 11 बजे लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स, और आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

बारह बजकर पांच मिनट से पूजा आनंद फिर होंगे आपके साथ लेकर प्ले इट कूल, और एक बजकर पांच मिनट से रश्मि गुप्ता फिर आपके साथ जुड़ेंगे लेकर रेनबो हेल्पलाइन, और दो बजे स्वाति गुप्ता के साथ आप सुन सकते हैं आशियाना, तीन बजे रेडियो डॉक्टर का समय रहेगा, और आज का टॉपिक है योग फॉर हेल्दी एजिंग जिसमें एक्सपर्ट होंगे योगी गुलशन कुमार। चार बजकर पांच मिनट से आप स्वाति गुप्ता के साथ सुन सकते हैं अल्फा जेन, और पांच बजकर पांच मिनट से प्रवीण शर्मा आपके साथ होंगे लेकर सिटी की सारी हलचल विद सिटी लाइट्स। फिलहाल मैं चलती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी फिर आपसे इन्हीं एयरवेव्स पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉइंग आकाशवाणी रेनबो 107.4।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विथ एसआर। एसआर बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 10 बजे तक। नॉन स्टॉप गीत संगीत प्रोग्राम है, तो आनंद लेते रहिए पूरे इस एक घंटे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

तो दोस्तों इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन प्रोग्राम अब आने वाले हैं। पूजा आनंद आ रही हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, आपके साथ रहेंगी अगले घंटे। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास

उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: One, two.

0: क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टि कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर आ गई हूँ मैं आपके साथ करने बातें बॉलीवुड की। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में है बहुत कुछ होता है खास, जिसके साथ रहते हैं हर पल हमारा मन रहता है उसके साथ, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज है ना कहीं हमारे जहन में रहते हैं, क्योंकि ये देते हैं हमें मनोरंजन, हंसी खुशी और नाचने गाने का मौका अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए। और इसीलिए बॉलीवुड की खबरों का मज़ा हमें कर देता है और भी मतलब खुशनुमा हमारे मन को कर देता है, माहौल को कर देता है। तो इसीलिए आज बॉलीवुड की बहुत सारी ताज़ा तरीन खबरें लेकर साथ में मनाएंगे बर्थडे दो ऐसे सिंगर्स का जो है लाजवाब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लाजवाब सिंगर्स जिनका बर्थडे आज हम मनाएंगे हमारे एफएम रेनबो के प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स में। तो बस जाना कहीं नहीं है, रहना है आपको इस पूरे एक घंटे, क्योंकि मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

0: जी हाँ बिल्कुल लेते आ जाइए, यदि आप इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी हैं, कहीं यदि बिजी हैं तो आप काम करते करते यदि आपका काम खराब होने की गुंजाइश नहीं है तो बिल्कुल आप इधर आ जाइए हमारे पास, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके पास एक से एक ट्रेंडिंग बॉलीवुड की खबरें। तो सबसे पहले जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ वो क्या है, वो ये है कि जो हमारे अरशद वारसी है ना, आज मतलब उनके खाते में यदि बात करें बहुत सारी फिल्में हैं। हालांकि एक टाइम ऐसा था जब उनको फिल्में ही नहीं मिल रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये था कि ABCL से मैंने शुरुआत की उसके बावजूद मतलब उनके खाते में फिल्में नहीं रहती, लेकिन जब से वो आए मुन्ना भाई MBBS में सर्किट बन के ना उनकी जो चांदी ही चांदी हो गई, या ये कह सकते हैं सोना ही सोना हो गया। खैर इन दिनों वो अपनी फिल्में वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन अब खबर ये है कि उन्हें एक और फिल्म मिल गई है, बल्कि उस फिल्म का टाइटल भी रिलीज हो गया है, उसका टीजर रिलीज हो गया है। जी हाँ, फिल्म का नाम है जीवन बीमा योजना और ये इनकी कॉमेडी फिल्म रहेगी जिसमें इनके साथ रहेंगी संजीदा शेख। और खास बात ये है कि इस जो फिल्म में ना अरशद वारसी अपने करियर में पहली बार, जी हाँ पहली बार डबल रोल करने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक डोगरा, जिन्होंने पहले डॉली की डोली और फ्राइड ड्राई जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। ये संजीदा शेख के अलावा विजय राज, पूजा चोपड़ा और विजेंद्र काला जैसे कलाकार भी इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, हाँ शूटिंग शुरू भी हुई है और बल्कि पूरी भी हो चुकी है और इस समय काम चल रहा है पोस्ट प्रोडक्शन का। रिलीज कब होगी, अब जानना चाहेंगे ना आप कि रिलीज कब होगी, तो भाई रिलीज की जो डेट है अभी ये फाइनल नहीं की गई है कि कब रिलीज होगी, लेकिन हाँ ये है कि इस फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल में हमें धमाल कमाल और क्या क्या दिखाने वाले हैं, इसका इंतजार तो आपको और हमें बिल्कुल रहेगा।
1: कि मैं झूठ बोलया, कि मैं झूठ

0: हटके हटके पराजी जरा बच गए।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेल बॉलीवुड ट्रेलर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी आरजे रश्मि। दोस्तों, हमारे जो खिलाड़ी कुमार हैं, अक्षय कुमार, इस वक्त बहुत बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब आप पूछेंगे वो क्यों भाई। अभी उनकी रिलीज हुई है फिल्म भूत बंगला, तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, और लेकिन अब जल्दी ही उनकी रिलीज होने वाली है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, अभी हमने अरशद वारसी के साथ भी इस फिल्म की चर्चा की थी, लेकिन अक्षय कुमार लीड में है, साथ में अरशद वारसी भी हैं। लेकिन अब जो अक्षय कुमार की हम बात करने वाले हैं ना, वो है उनकी नेक्स्ट फिल्म की। अनीस बज्मी की एक अनटाइटल्ड फिल्म में भी अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, और इस बार उनका सैंडविच बना है किसके बीच, विद्या बालन और राशि खन्ना इस फिल्म में दिखने वाली हैं। और बताया ये जा रहा है कि केरल शेड्यूल जो है इस फिल्म का ना, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और दोनों एक्ट्रेस के साथ में जो अक्षय कुमार है लीड किसके साथ है, उनकी लीड है विद्या बालन के साथ, ऑब्वियसली सीनियर एक्ट्रेस है, और एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर ये दोनों नजर आएंगे। लेकिन साथ ही ये भी दिखाया जाएगा कि राशि खन्ना का भी एक किरदार है जो शायद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का रोल कर रही हैं। अब एक्स है या बीच में तिगड़ी बनने वाली है, किस तरह से, ये आपको पता चलेगा जब फिल्म जो है बनकर आएगी हमारे सामने। कोरियोग्राफर है इसमें विजय गांगुली, और तीन मतलब कई गानों की इसमें शूटिंग चल रही है जहां पर ये जो कोरियोग्राफर है वो काम कर रहे हैं। हालांकि अब जल्दी ही इनकी रिलीज होने वाली है वेलकम टू द जंगल, लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद भी हमारे जो अक्षय कुमार है ना, पूरा साल बिजी है। यानी ये जो फिल्म है रिलीज होगी 4 दिसंबर को, लेकिन फिल्म का टाइटल

0: है वो अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा अक्षय कुमार की इस फिल्म का। और फिलहाल मुझे इंतजार है एक और अच्छे से ट्रैक का, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूंगी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

घर ले लिया इन्होंने आशिकों की कॉलोनी में, और कुछ तो सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ में घर ले लें, लेकिन कुछ सोच रहे हैं अभी घर से बाहर ही ना निकले, जिस घर में है ना बस वहीं पर रहें, क्योंकि बाहर है बहुत ज्यादा गर्मी। जी हाँ, गर्मी का माहौल हर तरफ है, और मतलब सच में सूरज देवता ना पूरा अपने शबाब पर है और कह रहे हैं यदि बाहर निकले ना तो मैं तुम्हें भट्टी में झोंक दूंगा। तो भाई ख्याल रखिए अपना, खूब पानी पीते रहिए, और यदि घर से बाहर निकल रहे हैं आप तेज धूप के टाइम पर तो सर पर छाता या फिर कैप लगाकर जरूर निकलिए। और खासतौर पर ख्याल रखिएगा कि इन दिनों यदि आप लाइट कपड़े पहनेंगे ना, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे और हल्के और सूती कपड़े पहनेंगे ना, तो आप अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। फिलहाल हमें आपका ख्याल बहुत अच्छी तरह से है, और इसीलिए लेकर आए हैं अब हम आपके लिए वो सेक्शन जिसमें हम पूछते हैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा सवाल। जी हाँ बिल्कुल, ये है वक्त बॉलीवुड क्विज का, और आज का हमारा सवाल ये है कि अरशद वारसी की डेब्यू फिल्म कौन सी थी। जी हाँ, आज हमने सबसे पहले बात की थी अरशद वारसी की, तो बस उन्हीं की डेब्यू फिल्म का नाम आपको बताना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। अपना फोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी हम आपको कॉल कर पाएंगे। और प्लीज प्लीज प्लीज यदि आप हमें सवाल का जवाब लिखते हैं ना, तो प्लीज अपना फोन छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपको कॉल करते हैं और आप लोग फोन उठाते ही नहीं हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आज का सवाल है अरशद वारसी की पहली फिल्म कौन सी थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जल्दी से लिखकर भेजिए अपने नाम के साथ सही आंसर 9868107070 पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: एक बार फिर से बॉलीवुड रील्स में आप सभी का स्वागत। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कहां क्या हो रहा है, कौन से एक्टर कौन सी फिल्म लेकर आने वाले हैं, और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो है बहुत खास, और उसकी वजह ये है कि जो हमारी यश राज फिल्म्स है वो अब लेकर आ रही है एक और नई फिल्म। जी हाँ, इनका जो स्पाई यूनिवर्स है ना उसमें अभी तक आपने मेल एक्टर्स को लीड में ज़रूर देखा होगा, लेकिन इस बार YRF यानी कि यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लीड फिल्म लेकर आ रही है जिसका नाम है अल्फा। और इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ हो चुका है और आज रिलीज़ हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, आज यानी 10 जून में भी कि हो चुका हो, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एग्जैक्ट मुझे पोजीशन नहीं पता है, लेकिन आज ज़रूर आपको ये टीज़र देखने को मिलेगा। और इस एक्शन पैक फिल्म में खास बात ये है कि इसमें है आलिया भट्ट और साथ में है इनके शर्वरी वाघ। जी हाँ, इस फर्स्ट फीमेल लीड फिल्म अल्फा में आपको मिलेंगी देखने को आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ एक नए रूप में, एक नए अवतार में, पूरी फुल फ्लैश एक्शन करते हुए। और पता है इनके साथ में लीड कौन होंगे? इनके साथ में होंगे बॉबी देओल, एक अच्छे खासे

रोल में। तो बस आपको इंतजार रहना होगा अब इस फिल्म का, क्योंकि अपने आप में काफी अच्छी फिल्म हो सकती है। जिस तरह से हमने इनकी पिछली फिल्म्स देखी, वॉर थी, वॉर टू भी काफी अच्छी रही, लेकिन इस बार फीमेल लीड रहेंगी। तो बस इंतजार कीजिएगा इस फिल्म का। फिलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ एक और प्यारा सा ट्रैक, लेकिन हाँ आपको ये और बताना चाहती हूँ कि आज हम मनाएंगे बर्थडे हमारे दो ऐसे सिंगर्स का जो बहुत ही जबरदस्त सिंगिंग करते हैं। साथ में हमें बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गाने भी दिए हैं, लेकिन साथ साथ आज हमने आपसे जो सवाल पूछा है वो बहुत ही आसान है। अरशद वारसी की पहली रिलीज फिल्म कौन सी थी, आपको ये बताना है जल्दी से। किस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में वो बता दीजिए, और जल्दी से अपना नाम अपना फ़ोन नंबर लिख कर भेज दीजिए 9868107070 पर।

जी हाँ बिल्कुल, नगाड़ा बजाइए, क्योंकि आज हम मना रहे हैं बर्थडे एक ऐसे सिंगर का जो सिंगर है, कंपोजर है और साथ साथ में गज़ल आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने क्लासिकल डेप्थ के साथ कॉन्टेम्प्रेरी सिंगिंग भी की है। जी हाँ, एक म्यूज़िक फैमिली में वो पैदा हुए, लेकिन उसके बाद तबला प्लेयर से स्टार्ट उन्होंने

0: एक बन गए वोकलिस्ट। जी हाँ, फिल्म अंगार से 1992 में उन्होंने डेब्यू किया फिल्म इंडस्ट्री में, और सुपरहिट गाना, जी हाँ वो गाना जो मुझे लगता है दशकों से आप सुनते आ रहे हैं, और लास्ट ईयर भी रिलीज हुई थी वो, इसी का जो आगे क्या सीक्वल था, अभी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई है वो फिल्म, और वो भी आपको काफी पसंद आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रूप कुमार राठौड़ की, और गाने संदेश से आते हैं। जी हाँ, बॉर्डर और बॉर्डर टू के साथ आपने इस गाने को सुना, एंजॉय किया, और सच मानिए कि जो रूप कुमार राठौड़ को, मुझे नहीं लगता किसी और इंट्रोडक्शन की जरूरत है। आज हम मना रहे हैं उनका बर्थडे, हमारे एफएम रेनबो की पूरी टीम की ओर से उनको बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत मन कर रहा होगा कि आज आप दिल से उन्हें विश करिए, तो आप उन्हें विश कीजिए। मैं आपको लेकर चलती हूँ एक छोटे से ब्रेक पर, और वापस आती हूँ आपके लिए कहाँ, जी हाँ यहीं पर, जिसका नाम है बॉलीवुड रील्स एफएम रेनबो 102.6 पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि आज जो हमने आपसे सवाल पूछा है बहुत ही आसान है। आपको ये बताना है अरशद वारसी की डेब्यू फिल्म कौन सी थी। जल्दी से लिखकर भेज दीजिए क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है। और 9868107070 हमारा नंबर है जिस पर आपको अपना सही जवाब लिखकर भेजना है, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपना फोन नंबर लिखकर भेजना है। और अब उस सेलिब्रिटी का नाम मैं आपको बताने वाली हूं जिनका बर्थडे भी हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हां, 1977 10 जून को पैदा हुए हमारे मीका सिंह। इंडियन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, रैपर हैं और साथ में एक्टर भी हैं। जी हाँ, कुछ फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है और बहुत ही फेमस मौजा ही मौजा इनकी है, सावन में लग गई आग, है ना। बहुत सारे इन्होंने गाने ऐसे गाए हैं और यकीन मानिए आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और आप भी चाहते होंगे दिल से उन्हें विश करना, तो आप हमारे साथ साथ उन्हें विश कर सकते हैं। फिल्म रेनबो की पूरी की टीम की ओर से, पूरी टीम के साथ में आप विश कर सकते हैं मीका सिंह को। तो मीका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बर्थडे की। उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमें इतने जबरदस्त ट्रैक्स देते रहें और हम उन्हें एंजॉय करते रहें।

0: जी हाँ, और अब वक्त हो गया है ये जानने का कि कौन बने हैं आज के बॉलीवुड सरताज। तो चलिए जानते हैं और उनसे सुनते हैं बिल्कुल सही जवाब आज का क्या है। हेलो
1: जी मैम।
0: जी कौन बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए और कहाँ से आपका मैसेज आया था हम तक वो बताइए।
1: मैं बुराड़ी दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम राकेश वोरा है।
0: राकेश वोरा जी बोल रहे हैं बुराड़ी दिल्ली से, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब भेजा था, सबसे पहले भेजा था। तो जल्दी से राकेश जी जवाब भी बता दीजिए कि अरशद वारसी की डेब्यू फिल्म कौन सी थी।
1: तेरे मेरे सपने।
0: तेरे मेरे सपने 1996 में आई थिंक रिलीज हुई थी ये फिल्म
1: जी।
0: और इनके साथ में तीन एक्टर्स और भी थे जिन्होंने साथ में डेब्यू किया था, आपको ध्यान है उनके नाम क्या है?
1: चंद्रचूड़ सिंह जी थे।
0: जी चंद्रचूड़ सिंह थे, साथ में थी सिमरन और थी प्रिया गिल। अफसोस कि वो तीनों आज फिल्म इंडस्ट्री में उतने ज्यादा मतलब नहीं दिखाई देते, लेकिन हाँ अरशद वारसी लगातार फिल्मों में बने हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज किया और हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। जी तो ये तो थे राकेश वोरा, लेकिन इनके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिनके बिल्कुल सही जवाब आए थे। उमेश कुमार ख्याला से थे, मोहम्मद फुरकान थे, साथ में राकेश कुमार जायसवाल ने किया था माधेपुरा बिहार से, मोहम्मद इम्तियाज कीर्ति नगर से हैं, साथ में है ये कौन है इनका नाम नजर नहीं आ रहा, ओके धर्म भाटिया है रोहतक से, साथ में है नेहतौर बिजनौर यूपी से, साथ में है फरीदकोट से, इनका नाम है चरणजीत कौर। अरशद वारसी का तेरे मेरे सपने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है संचित कपूर ने, जगह का नाम नहीं लिखा है। हैरी सिंधु भटिंडा से मैसेज आया है इनका, साथ में ये है नागौर राजस्थान से इरशाद अशरफी सिटी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में बसंत तोमर ने मेरठ से भी लिखा है और इसके अलावा भी काफी सारे हमारे लिसनर्स हैं जिनके सही जवाब आए हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम इतना ही, रेनबो हेल्पलाइन में आपसे फिर मुखातिब होंगी और आज एक बहुत ही जबरदस्त विषय लेकर आई हूं, एल्बिनिज्म। यदि आपने भी कभी सुना है कि ये सूरजमुखी वाले बच्चे हैं या ये जो व्यक्ति कुछ अलग सा नजर आ रहा है, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम बॉलीवुड हेल्प रेनबो हेल्पलाइन में 1:05 पर, तब तक नमस्कार। ओह गॉड, वन मोर इमेज।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the music. Loads of messages already pouring in, telling us what the day is going like. Well, I'd like to ask you one simple question, but I'll ask it after this short break we're taking. Stay close, stay tuned.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मंगल भवन मंगलहारी।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: I'll be missing you by Faith Evans. Well, she's got a birthday today. Happy birthday, Faith.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: was, of course, Al Stewart with Song on the Radio, going out very specially for Hindu who requested it. First of all, Pooja, when you are with Play It Cool, there's absolutely no question of stress. But even if I do get stressed sometimes, I always listen to my favorite songs and sing along with it very loudly and watch Hollywood movies with my siblings. Reading novels also makes me stress-free. You're welcome anytime. What a lovely message. This is coming in from Swati. And she goes on to say, thank you so much for playing my request. Talking about FIFA, why don't you play Die Die by Shakira? I think this is the best one. I so agree with you, but there were so many others waiting in line to play songs for FIFA, so I could not and would not want to, you know, use those numbers. And anyway, this was the latest 2026 FIFA number, and I thought, why not share it with all of you? Well, you will be glad to know that Akashvani Delhi will be broadcasting FIFA World Cup 2026 updates daily at 7:30 p.m. on FM Rainbow. That's right. That started from yesterday and will go on till 21st July. So 7:30 p.m, you know where to get your FIFA daily update. Akashvani FM, we are with you 24/7, 365 days a year. Thank you so much for all the messages that have been pouring in. It's made the show such a lovely place to be and to air. Well, loads more messages coming up. But before that, let's take that teeny-weeny break that we got to be taking about right about now. So don't go anywhere. Stay close and stay tuned.
1: Talent to hai, पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
4: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त आरजे रॉकिंग रश्मि। और आज रेनबो हेल्पलाइन में हम लेकर आए हैं एक खास विषय। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे बच्चे को जरूर देखा होगा जिसकी त्वचा का रंग थोड़ा ज्यादा सफेद या भूरा सा है, आंखें थोड़ी कम खुली हुई, या और सिर के बाल भी आपने देखे होंगे कि उनके पूरी तरह से सफेद हैं, यानी वो एल्बिनिज्म से ग्रसित हैं। आम लोगों की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़े से अलग दिखते हैं, लेकिन इन्हें एल्बिनोस कहा जाता है। जनरली लोग इन्हें सूरजमुखी वाले लोग कहते हैं। सुना है ना आपने, देखा भी बिल्कुल हो रहा, इस शब्द के साथ आप एकदम से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो बस आज का रेनबो हेल्पलाइन लेकर आए हैं हम इसी विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सरकार, VMMC कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। और आज का हमारा विषय है एल्बिनिज्म, सन सेफ्टी, स्किन केयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, उसी उपलक्ष में आज का एक खास प्रोग्राम आपके लिए। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एफएम रेनबो के स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मैम का इतना मतलब जबरदस्त नमस्कार है, तो मुझे लगता है हमारे सारे लिसनर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं सुनने के लिए इस प्रोग्राम को, क्योंकि अक्सर दोस्तों हम सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है, लेकिन वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। कैसे पता चले, क्या इसके कारण होते हैं, और कैसे हम इन लोगों को थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान दे सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो आज के रेनबो हेल्पलाइन में करेंगे हम इसी विषय पर बात। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यदि आप हमें कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है हमेशा की तरह 011-2342-1080 और 011-2342-1084।

0: जी हाँ बिल्कुल, इसी बहाने ही आप दिल का हाल जान लीजिए उन लोगों का जिन्हें एल्बिनिज्म है या जिन्हें एल्बिनोज कहा जाता है, यानी कि सूरजमुखी वाले लोग कहा जाता है। मैम, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहती हूँ कि एल्बिनिज्म वास्तव में क्या है और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है।
1: रश्मि जी, ये पहली बात है कि जो आपने अभी बताया एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म को हम रंगहीनता भी कहते हैं और सूरजमुखी भी, जैसे आपने बताया है। सूरजमुखी मींस कि आप मतलब धूप की तरफ फेस कर रहे हो, ठीक है, तभी ये नाम आया है। मतलब इट्स अ कोलोकियल वर्ड जो है। और ये जो है एक्चुअली डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है। और इसकी अवेयरनेस के लिए कई साल पहले जो है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, ये मतलब बात छेड़ी गई थी। और उसके बाद ये 2015 ऑनवर्ड्स ये सेलिब्रेट होता है, रादर ऑब्जर्व होता है 13 जून को, कि ताकि लोगों को पता चले कि ये जो है इनको भी हमें समाज में शामिल करना चाहिए। और मतलब वी हैव टू टेक केयर कि इनका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इनके जो त्वचा है, त्वचा में कोई भी रंग नहीं है। जो मेलेनिन होता है, एक रंग होता है, पिगमेंट होता है, तो वो जेनेटिक रूप से ये नहीं बनता है इनके। इसलिए आप जो देखेंगे वो पूरा शरीर ही इनका जो है सफेद होता है।
0: जी,
1: सो इट्स अ जेनेटिक कंडीशन।
0: तो हम इसे एक नॉर्मल बीमारी नहीं कह सकते जैसा कि कुछ लोग समझते हैं।
1: नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि और कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं बहुत कुछ। बस यही है कि उनको अपना देखभाल करना पड़ेगा प्रॉपरली,
0: जी
1: ठीक है,
0: जी
1: जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे अपनी त्वचा को देखना, आंखों को देखना, साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं इनके साथ मतलब कैसे मतलब ठीक करना है।
0: जी जी
1: अगर ये करें तो ये काफी मतलब ठीक तरीके से रह भी सकते हैं, जो करना चाहे प्रोफेशनली वो भी कर सकते हैं।
0: जी एल्बिनिज्म होने के पीछे कारण क्या है? क्या मतलब ये माता पिता से बच्चों में आता है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से हम इसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं?
1: ये जो है ये केवल जेनेटिक ही है, मतलब ये जीन्स में होता है। डेफिनेटली माता पिता के होने से ये होता है, बट वो हमेशा नहीं है कि माता पिता के होने पर ही होगा। इसमें कई चीजें हैं, जैसे अगर माता और पिता दोनों ही कैरियर्स हैं जीन के, ठीक है, अगर कैरियर हैं जीन्स के, फिर मैं मतलब सामान्य रूप से आपको बताना चाहती हूँ, तो फिर परसेंटेज चांसेस जैसे हैं, कोई बच्चे का बर्थ हुआ, शायद 25% चांस है कि उनको एल्बिनिज्म होगा। ऐसे ही है कि अगर एक पेरेंट को है एल्बिनिज्म पूरी तरह से, जो आपको
0: जी
1: दिख रहा है, एक को मतलब जस्ट कैरियर है जीन का,
0: जी
1: फिर शायद ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से आपके बढ़ जाते हैं, बट ऐसे भी हैं कि काफी मतलब परसेंटेज में नहीं भी हो सकता है, सिर्फ वो कैरियर्स ही रह सकते हैं।
0: जी तो क्या मैम ऐसी भी कोई कंडीशन होती है जिसमें माता पिता को एल्बिनिज्म नहीं है लेकिन बच्चे को है या न?

0: नवजात शिशु में ये पता चल रहा है, तो उस कंडीशन में माता पिता को क्या करना चाहिए?
1: जी, ये ज़रूर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता को ये हो सकता है कि क्लिनिकली, मतलब देखने में नहीं पता चल रहा है कि एल्बिनिज्म है, लेकिन उन पे जेनेटिक डिफेक्ट है,
0: जी
1: ठीक है, तो लेकिन उनको पता नहीं चला है, लेकिन दोनों लोगों में है। जैसे
0: हाँ हाँ
1: कई बार जैसे होता है कि परिवार में शादी होती है,
0: जी
1: कंसैंग्विनिटी, तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वो हो, फिर ये बच्चे में आपको एकदम से दिखेगा नवजात शिशु में कि एल्बिनिज्म हो गया है, लेकिन माता पिता में कभी पता नहीं चला है।
0: जी
1: इन दैट केस ये होगा कि माता पिता को अब पता चल गया है, तो उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बच्चे के लिए क्या करना है, प्रिवेंशन के लिए
0: जी
1: ये देखना होगा, और ये तो माइंड में रखना ही पड़ेगा कि नेक्स्ट कुछ जो अगर सब्सिक्वेंट बर्थ्स हों
0: जी
1: उसमें हो सकता है किसी बच्चे को हो भी सकता है एल्बिनिज्म, नहीं भी हो
0: नहीं
1: सकता
0: भी
1: है।
0: हो
1: कोई
0: सकता
1: जरूरी
0: है
1: नहीं है
0: जी
1: कि नेक्स्ट में होगा या थर्ड में होगा, इट डिपेंड्स मतलब कि क्या है, बट अवेयरनेस उनको हो जाना चाहिए कि हम में डेफिनेटली कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, इसलिए बच्चे को हुआ है।
0: तो बहुत ख्याल से रखना चाहिए। माता पिता को ये देखना पड़ेगा, यदि उनके नवजात शिशु में इस तरह की कोई भी कंडीशन नज़र आती है तो इन फ्यूचर के लिए उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो उसका ख्याल रख सकते हैं। हमें भी आपका ख्याल है, इसीलिए लेकर आए हैं हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सा ट्रैक। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और रेनबो हेल्पलाइन से जुड़े रहिए। आज का हमारा विषय है एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता। यदि इससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी का कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं और उससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1084। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें मैसेज लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म की, यानी कि रंगहीनता। कुछ लोग इसे फूल बहरी या विटिलिगो से भी सोच सकते हैं, लेकिन सच मानिए दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। एल्बिनिज्म एक वो बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया। और आगे हम ये बात करना चाहेंगे इस विषय पर कि जो ये पेशेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह से अपने त्वचा को धूप से बचाव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी त्वचा, बालों या आंखों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बेसिकली लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं।
1: देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन में, त्वचा में प्लस आंखों में प्लस बालों में जो है, जो पिगमेंट होता है मेलानिन के कारण, जो पिगमेंट है वो इनमें या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। और ये जो मेलानिन ये और या पिगमेंट है, इसका मेन रोल होता है हमारे स्किन में या आंखों की पुतली, जो काली वाली पुतली होती है
0: जी,
1: कि बेसिकली ये फिल्टर आउट करता है, जैसे धूप के रेज, यूवी रेडिएशन आता है, इसको कुछ हद तक ये फिल्टर कर देता है ताकि कोई सेंसिटिविटी ना हो।
0: ओके।
1: तो अब इनके पास ये तो नहीं है, बहुत ही कम है, इसलिए जो है इनको धूप से जो है काफी बचाव इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो है इसको फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। धूप में जाने से बहुत जल्दी, जैसे लाली हो जाना, या मतलब बर्निंग सेंसेशन होना है, ऐसी सारी चीजें हैं। तो स्किन में तो ये है कि उनको बहुत ज्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट कुछ पेशेंट्स में जिनको सिवियर होता है वो धूप की तरफ ज्यादा देख ही नहीं सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये इससे आपको पता लगता है कि उनको बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिविटी है
0: जी।
1: इसके अलावा क्योंकि ये प्रोटेक्टिव जो होता है मेलानिन वो नहीं है, ये जो स्किन है हमारा ज्यादा प्रोन होता है टू सनबर्न्स और स्किन कैंसर।
0: ओके।
1: स्किन कैंसर देखिए, वैसे तो एक तरीके से इंडिया में थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमारा स्किन जो है डार्क ब्राउन है
0: जी,
1: तो हम वैसे ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन इनके स्किन में जैसे हमने बात की नहीं है इतना ज्यादा, तो इसलिए ये है कि दे आर मोर प्रोन टू स्किन कैंसर्स। इसलिए आपको हमेशा ये देख के रखना चाहिए कि कुछ भी ब्राउन स्पॉट्स आए, कुछ उभरे हुए स्पॉट्स आए बहुत ज्यादा, कभी चेहरे पे आए या ऐसे कुछ आपको लगे, या आपके मोल्स वगैरह जो हैं वो बढ़ रहे हैं जो है ना, जिसको हम जेन चिन कहते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो स्किन में तो ये इश्यू है ही है जो है। उसके अलावा जो है मतलब, और बचपन से आपको पता भी चलता है इसमें कुछ

0: स्पॉट्स आते हैं जिनको हम फ्रेकल्स कहते हैं
1: जी,
0: फ्रेकल्स कहते हैं या लेंटिजीन्स होते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। या जो थोड़े से मतलब एज वाले होते हैं, सेबोरिक केराटोसिस, जो उभरे हुए ब्राउन मतलब निशान होते हैं, ये सब आ सकते हैं। अब इसके अलावा आंखों में भी ये कम है, ठीक है, मेलानिन। तो हमारी जो काली पुतली है आंखों के अंदर, आयरिस जो है, वो बेसिकली वो भी फिल्टर करती है धूप को, ताकि वो डैमेजिंग रेज अंदर नहीं आए। तो आई के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे एक तो जो है फोटोफोबिया, मतलब धूप की तरफ देखना आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन लोगों को, एकदम मतलब देख नहीं पाते कुछ कुछ पेशेंट्स। फिर उसके अलावा जो है इनका जो विजुअल एक्विटी है, देखने का जो जो शार्पनेस है वो बहुत कम हो जाता है, जैसे वो गहराई देखना या डिस्टेंस देखना उसमें दिक्कत आती है उनको, विजुअल एक्विटी कम है
1: जी।
0: जैसे हम जिस जो फॉन्ट में पढ़ सकते हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट हो तो इनके लिए बेटर होता है
1: जी।
0: और इसके अलावा कुछ अननेचुरल मूवमेंट्स होती हैं आईज की, जिसको हम निस्टैग्मस कहते हैं
1: जी,
0: और स्क्विंट,
1: ओके,
0: स्क्विंट भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें आईज पे होता है, तो आई स्पेशलिस्ट या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को तो डेफिनेटली मतलब मिलना चाहिए
1: जी,
0: और प्रॉपर उनसे राय लेके प्रॉपर ग्लासेस या लेंसेज या विजुअल एड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाता है
1: जी। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि ये जनरली बर्थ से ही हो जाता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हो सकते हैं जिन्हें थोड़े टाइम के बाद पता चले, या मतलब कुछ बच्चों को देर से एल्बिनिज्म के बारे में पता चले?
0: यूजली ये होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरे बॉडी पे होता है
1: जी,
0: तो ये तो डेफिनेटली है कि देख के लगता है कि कुछ ज्यादा ही सफेद है
1: जी,
0: मतलब नॉर्मली इतना व्हाइट नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल मतलब रंग नहीं होता है या कम होता है स्किन पे, हो फिर तो पहचान हो जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पूरी तरह से नहीं आता जेनेटिकली, शायद सिर्फ आंखों में हो,
1: अच्छा
0: वो फिर देखिए एकदम नवजात शिशु में तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि एकदम छोटे बच्चे में नहीं पता चलता, जैसे वो बच्चा शायद थोड़ा बड़ा हो या आपको लगे कि उसको ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है या ऐसे हो रहा है, तब वो आई गेस आपको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखा के पता चल सकता, वो फिर थोड़ा सा लेटर एज पे पता चल सकता है।
1: एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं पैंथर तोमर, किशनगंज दिल्ली से, कहते हैं अंग्रेजों की जो चमड़ी होती है बचपन से ही ऐसी दिखाई देती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो बचपन से ही एल्बिनिज्म के शिकार है?
0: नहीं, ऐसे नहीं है
1: जी,
0: वो उनका जो है ऑब्वियसली स्किन टाइप, हम स्किन टाइप कहते हैं या स्किन टोन कहते हैं
1: जी,
0: हम सबके स्किन टोन थोड़े से अलग अलग हैं। मतलब मैं अगर आपको मतलब सिंपली बताऊं तो फिट्ज़पैट्रिक हैं तो 5-6 टाइप के होते हैं
1: जी,
0: उनका टाइप 1-3 होता है जो लाइट स्किन होता है, मेलानिन कम है और हमारे वाले में ज्यादा होता है मेलानिन, तो उनके स्किन में ऐसे नहीं है कि मेलानिन बिल्कुल नहीं है, तो उनका एकदम सफेद नहीं होता है, उनका एक्चुअली बहुत ही हल्का ब्राउन
1: होता
0: या हल्का आप कह सकते हैं भूरा होता है
1: जी,
0: तो नहीं उनका नहीं एल्बिनिज्म है, उनका स्वाभाविक रूप से सभी वैसे हैं
1: जी,
0: बट आप हमें पता है कि एज एन इंडियन हमारा एकदम से व्हाइट नहीं होगा
1: जी, जी,
0: तो डेफिनेटली अगर एकदम व्हाइट वाला कोई बच्चा, व्हाइट स्किन वाला होगा तो, और पेरेंट्स का नहीं है इतना ज्यादा, तो दैट इज डेफिनेटली समथिंग जो हमें देखना पड़ेगा कि वो स्वाभाविक रूप से नहीं है।
1: मैम एक सवाल इनका और भी है, ये पूछना चाहते हैं गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में पल रहे शिशु को एल्बिनिज्म है या नहीं, क्या इसका पता लगाया जा सकता है?
0: आई थिंक इसमें जो है इसमें जेनेटिक रोल है, मतलब
1: जी जी
0: हाँ, तो जेनेटिक मतलब इसमें जो है जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह है, बट उसके लिए जो है आपको यू विल हैव टू गो, मतलब जो पर्टिकुलरली कोई हॉस्पिटल्स डील करते हैं द जेनेटिसिस्ट या जो पीडियाट्रिशियन है, दे मे बी एबल टू मतलब फाइंड आउट कि जेनेटिक टेस्ट हो सकता है प्रीनेटल की नहीं, कि पता मतलब वेदर बच्चे को एल्बिनिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
1: अच्छा क्या इनकी सबके सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं या अलग अलग स्टेजेस होते हैं, या किसी को कम किसी को ज्यादा होता है, जैसे आपने अभी बताया तो सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं?
0: देखिए सिम्टम्स तो एक ही जैसे होते हैं, मात्रा में मतलब अलग अलग हो सकते हैं, मतलब किसी को जैसे है स्किन में है बट उसको शायद फोटो सेंसिटिविटी थोड़ा कम है, या फोटोफोबिया जैसे मैंने आंखों का बोला, क्योंकि ये दो चीजें हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है डील करने के लिए
1: जी,
0: कम है किसी को ज्यादा है, तो वो मात्रा डेफिनेटली डिपेंड करता है, क्योंकि जीन्स भी काफी सारे हैं और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जीन कब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर

0: इज वॉट इट इज. तो डेफिनेटली डिग्रीज विल डिफर. मेरा मतलब ये है कि मात्रा अलग अलग हो सकता है.
1: जी. अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि इन्हें धूप से काफ़ी परेशानी होती है, खासतौर पे जो इनकी त्वचा है
0: जी,
1: उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो क्या सनस्क्रीन इनके लिए सही रहता है?
0: हाँ, सनस्क्रीन बिल्कुल ही सही रहता है.
1: जी.
0: सनस्क्रीन तो लगाना चाहिए ही, ठीक है. जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है वो मतलब वो लगा लें, एंड मतलब दैट
1: और
0: इज अ
1: कितना
0: मस्ट.
1: SPF होना चाहिए इन?
0: SPF देखिए, इट शुड बी मोर देन 30, सो अबाउट SPF 50 वुड बी गुड इनफ. लेकिन हमारे इंडियन स्किन के लिए 30 एंड अबव शुड बी ऑल राइट. तो वो यूज कर सकते हैं, बट
1: जी.
0: इसके अलावा दे कैन ऑल्सो यूज, जैसे टोपियां यूज कर सकते हैं, कैप्स यूज करते हैं, जो
1: जी
0: यू नो नेचुरल चीजें हैं. अम्ब्रेला ले लीजिए आप,
1: जी जी जी
0: हाँ, छतरी ले लीजिए, गॉगल्स पहन लीजिए, जो
1: जी
0: है दुपट्टा, कुछ
1: ओके,
0: नहीं तो इवन दुपट्टा से आप कवर कर
1: कवर
0: सकते
1: कर
0: हैं. तो
1: सकते
0: ये भी
1: हैं.
0: आप जरूर करिए. और दिन के जो वो पार्ट है ना, जब धूप सबसे तेज है, जैसे
1: जी
0: ठीक है, एक तो जैसे 11 से 2 सबसे तेज है, बट अदरवाइज 8 से 4 तक है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए कि बहुत ज्यादा
1: तेज धूप में ना
0: तेज धूप
1: निकले.
0: में आप
1: जी
0: नहीं निकले जो
1: जी
0: है.
1: जी जी हम आज बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म की, एक अलग तरह का टॉपिक, एक खास टॉपिक जिसे आपने बचपन से कहीं ना कहीं अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिनका जिनकी त्वचा का रंग पूरी तरह से सफ़ेद है और वो कुछ अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तब ये समझ नहीं आता कि आखिर ये कि हमसे अलग, थोड़े से अलग क्यों हैं. यदि आपको भी ऐसा कुछ दिखाई दिया है और आप चाहते हैं कि आप उनके साथ एक नॉर्मली आप बिहेव करें और उन्हें अपने साथ, आपने स्कूलों में भी देखा होगा, समाज में इधर उधर घूमते हुए भी देखा होगा, तो आज का हमारा रेनबो हेल्पलाइन का विषय है यही, एल्बिनिज्म, सन सेफ्टी, स्किन केयर एंड क्वालिटी लाइफ. तो यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं 9868107070 पर.
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त.
5: पता का चाय, गजब का स्वाद.

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं आज आपके साथ आरजे रॉकिंग रश्मि और हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि सरकार। जी हाँ, आज दो दो रश्मि आपके लिए आई हैं और प्रोग्राम है एल्बिनिज्म पर। यदि आपका भी कोई इससे जुड़ा सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सरकार, VMMC कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। यदि आपका भी एल्बिनिज्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें स्टूडियो में फोन कर सकते हैं 011-234-21080 और 011-234-21084। और यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9868107070। मैम, जो से एल्बिनिज्म की हमने बात की कि इन लोगों को रोजमर्रा की लाइफ में त्वचा से संबंधी या आंखों से संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? और जैसा कि हमने स्किन केयर की बात की, इन लोगों को क्या स्किन केयर का होने की संभावना आम लोगों की तुलना में ज्यादा होती है?
1: हाँ रश्मि जी, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो इनको देखभाल बहुत ही अच्छी तरह अपना करना चाहिए
0: जी।
1: मतलब ऑल्दो ये डिजीज नहीं है, देखभाल बहुत इम्पोर्टेंट है इनका
0: जी।
1: तो आम लोगों की तुलना, जैसे स्किन में मैंने बोला है कि सनस्क्रीन्स डेफिनेटली लगाना है या धूप से बचाव, वो तो मस्ट है जो इनको करना ही करना है। और बिसाइड्स दैट, इनको ये भी है कि अगर उनको लगे कि छोटे छोटे कोई काले निशान आ रहे हैं, ब्राउन कलर के निशान आ रहे हैं, सडनली आ रहे हैं, तो इनको स्किन स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली दिखाना है। मैं कहूंगी कि इसमें इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई निशान आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 3 महीने या 6 महीने में स्किन स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली विजिट करिए
0: जी जी।
1: और उनको दिखाइए कि ये नेचुरल है कि अननेचुरल है
0: जी जी जी।
1: बिकॉज वो मतलब एकदम बिगिनिंग वाला रूप होगा कि कोई भी चीज अगर ऐसे है कि स्किन कैंसर हो रहा है या वो मतलब बेनाइन से मैलिग्नेंट हो रहा है, एटलीस्ट आपका स्किन स्पेशलिस्ट वो बता पाएगा।
0: अच्छा मैम, सनस्क्रीन के अलावा मॉइस्चराइजर या जो दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है इन लोगों के लिए?
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। एक जो स्किन में डर्मेटोलॉजी में सबसे बड़ी जो हमारी संस्था है या जो अम्ब्रेला संस्था है 2050 संस्थाओं की, उसका नाम है इंटरनेशनल लीग ऑफ डर्मेटोलॉजिकल सोसाइटीज, ILDS। उसमें जैसे मैं बोर्ड मेंबर हूं, उसका काम होता है कि WHO के साथ और ऐसी बड़ी संस्थाओं के साथ अवेयरनेस पैदा करना
0: जी जी।
1: एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 2025 लास्ट ईयर ही स्किन हेल्थ को भी लिया गया था एज अ प्रायोरिटी। नॉर्मली हम सोचते हैं कि त्वचा की बीमारी है इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो रेजोल्यूशन से वो अडॉप्ट किया गया कि स्किन हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और इन द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन
0: जी,
1: सनस्क्रीन को भी लिया गया है फॉर पर्टिकुलरली फॉर एल्बिनिज्म, क्योंकि ये माना गया है कि एल्बिनिज्म के लिए इट इज अ मस्ट। तो स्किन का तो ये रोल है ही है प्रोटेक्शन के लिए, बट बिसाइड्स दैट मैं आपको बोलूं, स्कूल में जैसे है ना बच्चों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर खास ख्याल रखे, जैसे वो ब्लैक बोर्ड के थोड़ा पास बैठे
0: जी,
1: रोशनी जो है वेल लाइटेड एरिया है ताकि वो थोड़ा देख सके। और जनरली इनका जैसे है बहुत छोटा प्रिंट होगा, इनको देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वो फिर बड़े फॉन्ट्स आर ऑलवेज बेटर, तो थोड़ा कुछ केयर वो रख सकती है। प्लस ये भी देखिए, मतलब बच्चों को टीजिंग और बुलिंग वगैरह भी नहीं हो।

0: दैट
1: जी
0: इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रादर देन ट्रीटमेंट, क्योंकि पेशेंट्स को एज सच पूरा ही स्किन वाइट है तो उनको उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई
1: जी
0: उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
1: जी तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें इस बात को ये बात अच्छी तरह से समझ आई होगी कि इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, बल्कि हमें इनकी सहायता करनी है ताकि ये भी रूटीन लाइफ, अपनी डेली लाइफ बहुत ही आराम से जी सके, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम और आप नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली सारे काम करते हैं। तो मैम, जैसे तेज़ रोशनी इनको नुकसान देती है, स्कूलों में आपने बताया कि बड़ा फॉन्ट उनके लिए हो, ऐसी जगह पर उन्हें बिठाया जाए जहां से इन्हें ब्लैक बोर्ड देखने में
0: हाँ वो
1: तकलीफ ना हो। अच्छा, एक सवाल हम तक फिर से पहुंचा है, किशनगंज से ही है। एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को समाज में अक्सर अलग निगाह से देखा जाता है, क्या वास्तव में ऐसा करना सही है? इनका दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती है? ये दो सवाल ये जानना चाहते हैं।
0: पहला सवाल जो है, देखिए वो समाज का ही एक पार्ट है, ठीक
1: जी
0: है। जैसे मैंने बताया कि वो किसी को भी हो ही सकता है, कई बार पता भी नहीं चलता है पेरेंट्स पे, तो डेफिनेटली इनको हमें अलग नहीं रखना चाहिए। रादर हमें ये सोचना चाहिए वो हमारी तरह ही है, पिगमेंट थोड़ा सा कम है, तो क्योंकि इनको बहुत साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है,
1: जी
0: क्योंकि इनको अलग किया जाता है, कई बार इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा सकता है, टीजिंग, बुलिंग, इनफैक्ट अफ्रीका में कई डेथ्स भी होते हैं, कई बार लोग इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं
1: हाँ,
0: करते
1: लोगों के
0: हैं,
1: बीच में कुछ अंधविश्वास होता
0: अंधविश्वास
1: है कि
0: है।
1: ये इस तरह का व्यक्ति आ गया है तो शायद कोई हमारे ऊपर किसी का साया आ गया है,
0: साया आ
1: तो
0: गया है,
1: जी।
0: और या फिर इनको मारने से मतलब हमारा जो लक है वो बेटर हो जाएगा, ऐसे यहाँ
1: ओके
0: इंडिया में नहीं है लेकिन
1: जी।
0: अफ्रीका में काफी जगहों पे है, तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि इनकी लाइफ को बेटर करने में हमारा काफी हाथ हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो एक चीज है। सेकंड इनका जो सवाल है मेरे ख्याल से कि वो
1: क्या
0: संक्रामक है कि
1: जी
0: नहीं है, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली जेनेटिक बीमारी है, एक से दूसरे को नहीं हो सकता है।
1: ओके
0: तो आप आराम से, आपका फ्रेंड आपके साथ बैठ सकता है जिसको एल्बिनिज्म है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आप
1: जी।
0: ही की तरह है, बस रंग जो है, जैसे मैंने बोला, रंगहीनता या रंग कम है।
1: तो मैम, क्या ये दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं?
0: तो देखिए नहीं आते हैं उस तरीके से, बट ऑन द सेम एट द सेम टाइम सिंस आप पूछ रहे हैं, आंखों की जो है ना
1: जी
0: डेफिनेटली विजुअल एक्विटी कम है, तो दैट वे विजुअल एक्विटी आ सकता है विकलांगता में जो है,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: ऐसा अगर एल्बिनिज्म नहीं आए तो अगर आंखों में विजुअल एक्विटी कम है उस तरीके से वो आ सकते हैं, अदरवाइज तो देखिए वो नॉर्मल है, आपकी तरह ही उठता है, बैठता
1: सभी
0: है,
1: की
0: सब
1: तरह
0: कुछ।
1: सामान्य
0: हाँ
1: जीवन जी सकते
0: जी
1: हैं,
0: हम्म,
1: शिक्षा में या रोजगार में भी वो
0: जी जी
1: समान अवसर उन्हें
0: हाँ,
1: मिलते
0: बट
1: हैं।
0: आंखों की डेफिनेटली दिक्कत है, वो कम है,
1: जी
0: उसमें आ सकता है, डिपेंड करता है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि कितना कम है वो।
1: जी। आज हम बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म से, और मैम आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक का समय हुआ है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं और साथ में सुनते हैं मैम की पसंद का एक और प्यारा सा ट्रैक।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख।

0: रुपए और फोर्थ प्राइज 1,00,000 रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।
2: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा।
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म की, सन सेफ्टी, स्किन केयर और साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ की। दोस्तों, एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों को ना स्वास्थ्य और साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बहुत से उपायों की, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ साथ उन्हें ज़रूरत है आपके द्वारा दिए गए सम्मान की, समानता की। तो मैम, यदि इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लोग किस तरह से इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं कि उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें?
7: आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने अभी बोला है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का तो है ही बहुत ज्यादा रोल, क्योंकि ये जो है इनको हमेशा लगता है कि लोग इनके साथ व्यवहार ठीक से नहीं कर सकते, बट यहाँ पे रोल आ सकता है पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। सो जैसे कुछ व्यक्ति हैं जैसे जिनको एल्बिनिज्म है, लेकिन मतलब उन्होंने काफी अचीव भी किया है लाइफ में, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए हैं जिसमें काफी पेशेंट्स इकट्ठे एक दूसरे से मतलब मिलते हैं या बात करते हैं, तो उनसे जो है एक दूसरे से काफी हौसला मिलता है। इसकी एक्चुअली बहुत जरूरत है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सोसाइटीज तो हैं, अफ्रीका में है काफी, बट इंडिया में इस मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली जरूरत है। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहती थी
6: जी,
7: कि दिस इज रिक्वायर्ड। ग्लोबल एल्बिनिज्म एसोसिएशन या GAA के नाम पे ये एल्बिनिज्म है एक अवेयरनेस का पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन।
6: ओके,
7: सो दैट इज एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो मतलब पहुंच सकते हैं
6: जी,
7: मतलब ऑब्वियसली इट विल बी देयर गूगल पे। तो ये एक चीज है, रोल और भी है, जैसे एनजीओस का काफी रोल है इसमें कि अवेयरनेस, बेसिकली अगर लोगों को पता हो तो आधी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएं।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
7: मतलब ये जैसे आप कह रहे हैं कि इनको सम्मान की बहुत जरूरत है
6: जी,
7: आधा तो देखिए उसी से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगा जैसे आप कह रहे थे। और इसमें मैं मानती हूं कि मीडिया का काफी रोल है, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं रश्मि जी
6: जी,
7: इसमें ये लोगों को पहुंच रहा है। तो अदरवाइज इससे पहले एल्बिनिज्म के बारे में इतनी बात होती नहीं थी
6: जी जी जी,
7: ज्यादातर विट्लाइगो पे होता है, फुलबेरी पे होता है। तो आई थिंक ये काफी हेल्थी साइन है, इसका हो या सोशल मीडिया में हो या टेलीविजन के दौरान हो या किसी भी चीज में, तो आई थिंक मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मतलब लोगों को बताना कि मतलब ये डिजीज नहीं है, एक जेनेटिक कंडीशन है
6: जी। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भेदभाव इन लोगों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि एनजीओज और मीडिया इस विषय पर और ज्यादा काम करें तो आई थिंक जो लोगों के बीच में इनके बारे में मिथ है
7: जी,
6: जैसा कि आपने बताया कि लोग इसे समझते हैं कि संक्रामक रोग है, या थोड़ा ये समझते हैं कि ये ईश्वर की दिया कोई श्राप इनको मिल गया है, वो चीजें ना समझ के जागरूकता फैलाई जाए तो आई थिंक इनके साथ में समानता का व्यवहार किया जाना शुरू हो जाएगा। तो जो भी हमारे लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, यदि उनके आसपास भी कोई इस तरह का व्यक्ति है जो एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता का शिकार है, तो प्लीज उसके साथ बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, उनके लिए अपने आसपास के लोगों के बीच सही जानकारी फैलाएं, और यदि उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उनको जल्दी से जल्दी डर्मेटोलॉजी के पास लेकर जाएं ताकि उनका सही इलाज हो सके। मैम, हमारे पास कुछ एक मैसेज आए हैं, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम कीर्ति नगर से हैं। इनके ये जो सवाल हैं वो लगभग हम सारे पूरे प्रोग्राम में इसी विषय पर बात कर रहे थे, तो चलते चलते एक रिकैप आप जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आया है इंदर सिंह लिख रहे हैं रोहिणी से, ये

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब

0: चाहते हैं कि क्या जीन थेरेपी के द्वारा इसका इलाज संभव है?
1: इनका जो मतलब प्रश्न है, आई थिंक काफी अच्छा प्रश्न है,
0: जी
1: क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो जीन थेरेपी है ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, क्योंकि काफी सारे जीन्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं
0: जी
1: कि जिससे ये कंडीशन हो सकता है. इन द फ्यूचर डेफिनेटली जीन थेरेपी का तो रोल है. ये मतलब बाहर के काफी कंट्रीज में इसका चल रहा है जो है
0: जी जी
1: कि इस पे काम, तो आई थिंक वो एक होप है फॉर द फ्यूचर कि जीन थेरेपी से काफी हद तक ये जो सिवियर बीमारी होती है ये काफी हद तक ठीक हो सकता है.
0: जी तो मैम, अब क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं चाहूंगी वो लिसनर्स जिन्होंने देर से हमारा प्रोग्राम सुनना शुरू किया और ये
1: जी
0: बीमारी क्या है और किस तरह से इन लोगों को मदद मिल सकती है चलते चलते, उन लोगों के लिए भी एक संदेश जो इससे ग्रसित है या उनके परिवार वालों के लिए, क्या आप कहना चाहेंगी?
1: मैं यही कहना चाहूंगी रश्मि जी कि जैसे हमने बताया कि ये जो ये एक डिजीज नहीं है,
0: जी
1: एल्बिनिज्म या रंगहीनता या सूरजमुखी जिसे कहते हैं, एक जेनेटिक कंडीशन है,
0: जी
1: ठीक है. और इसको हमें समझना पड़ेगा कि वो बीमारी नहीं है, इसलिए जो भी पेशेंट है, जो भी पीड़ित है, वो नॉर्मली रह सकता है, नॉर्मली अचीव कर सकता है, नॉर्मली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो जी सकता है,
0: जी
1: लेकिन कुछ बचाव उसको डेफिनेटली करना पड़ेगा. त्वचा का बचाव जैसे मैंने बताया है, सनस्क्रीन या धूप से बचना जो है, उसके अलावा आंखों की देखभाल वो
0: जी
1: भी जरूरी है, क्योंकि इसमें जो विजुअल एक्विटी है या देखने की क्षमता वो कम है इनमें,
0: जी
1: तो इसलिए ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है. साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर उनको लगे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, और जो बच्चे स्कूल में हैं उनको विशेष रूप से देखा जाए टीचर से. और एक
0: जी
1: और चीज, अफ्रीका वगैरह में ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा हमला होता है, कई बार मारा भी जाता है, क्योंकि वो लगता है कि शायद ये बैड लक, मतलब ये सॉरी गुड लक लेके आएंगे मारने
0: जी
1: से. तो ये सब गलत जो धारणाएं हैं इनको हमें दूर करना है, मतलब
0: जी
1: जागरूकता
0: आज
1: से.
0: हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर रश्मि सरकार, सफदरजंग हॉस्पिटल से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो आज इन्होंने एल्बिनिज्म से रिलेटेड इतनी सारी बातें यहाँ बताई। मैम, आप यहाँ आई, अपने कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं के लिए इतना अच्छा आपने प्रोग्राम उनको दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपको भी थैंक
0: जी।
1: यू.
0: इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ प्रोग्राम हम कदम लेकर हाजिर हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे का वो वक्त जो हम नाम करते हैं आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते के, और हर बार एक नए आयाम के बारे में हम करते हैं बातचीत हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। आज का हम कदम मैंने सोचा किससे जोड़ा जाए। जी, हम सभी जानते हैं कि 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो हमने सोचा चलिए फिटनेस की ही बात कर लेते हैं, योग की भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो जनरल फिटनेस होता है ना, आजकल बड़ी एक डिजायरेबल सी क्वालिटी हो गई है ना। जब भी हम अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं तो उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है हमारे दिमाग में, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे दिमाग में, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उसमें केयरिंग नेचर की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, यहां तक कि ड्रेसिंग सेंस की भी बात करते हैं, और उसी लिस्ट में काफी ऊपर आने लग गया है फिटनेस लेवल। जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर की तलाश जो है वो खुद करें, चाहे आप दूसरों के जरिए करें, लेकिन ये जो लिस्ट होती है ना दिमाग में, ये हमेशा अपनी चेकलिस्ट में ना वो टिक मार्क लगाती चलती है। तो भाई, पार्टनर का फिट होना, ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि उसके लिए आपके पास में एक फिल्मी हीरो वाली बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, या फिर आपके पास में हीरोइंस जो होती हैं हमारी जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनके लेवल का फिटनेस जो है वो आपके पास होना चाहिए। बात है ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, और लाइफ है ये एक दूसरे का साथ लंबे समय तक निभाने की। जी, ये तो ढूंढते ही है ना हम हमेशा अपने हम कदम में, और हमारे हम कदम लंबे समय तक हमारे साथ रहें, फिट रहें, दुरुस्त रहें, और ये सारी चीज़ें हम अक्सर जो है अपनी लिस्ट में शामिल करके चलते हैं, और मिल भी जाए तो बहुत ही मज़ेदार बात है, लेकिन उसके बावजूद तलाश हमेशा जारी रहती है क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसी बारे में करेंगे हम आज बात हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है हम कदम, आप सुन रहे हैं मेरी यानी स्वाति के साथ ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। पहला गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए, फ्रॉम द मूवी फना, सोनू निगम एंड वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। इस गाने से मुझे ना एक शिकायत है, और शिकायत ये है कि ये गाना बहुत छोटा है। इतना खूबसूरत गाना है कि इसको और थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, थोड़ी देर और इसे हमारे साथ रहना चाहिए था, है ना? आपको भी लगता है ना ऐसा? सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में मैंने अभी आपको सुनाया एक बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी फना। और चलिए अब रियलिटी की तरफ वापस चलते हैं। भाई सपनों की बात है, फैंटेसी और रियलिटी का जो मेल है ना, वही जीना चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, जहाँ फैंटेसीज पूरी हों लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से हमारी रियलिटी में उतर कर आ जाएँ। हाँ, हमेशा इस फैंटेसी वर्सेज रियलिटी की जो एक जद्दोजहद है ना, वो चलती रहती है। एंड में हमें ये बात तो माननी पड़ती है कि भाई परफेक्शन जो है ना एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्शन का जो आइडिया है ना उसको छोड़ दिया जाए, उसकी तरफ मेहनत ना की जाए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर मैं भी यही कोशिश करती रहती हूँ कि मेरी बातें और मेरी प्लेलिस्ट जो है ना, कुल मिलाकर आप लोगों का जो मनोरंजन है वो जरूर करती रहे। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में फिटनेस की। भाई फिटनेस वैसे तो एक पर्सनल गोल की तरह होता है, और फिटनेस की जो जर्नी होती है ना वो भी काफी अकेलेपन से भरी होती है। लेकिन आप जब भी फिटनेस से जुड़े जो कपल्स होते हैं ना हमारे, चाहे आप स्पोर्ट्स से जुड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लें या फिल्म से जुड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लें, जब भी कुछ इस तरह के पेयर इन फील्ड्स में से हमारे सामने आते हैं तो एक चीज़ तो हम ज़रूर एडमायर करते ही है ना, और वो है कि इन दोनों की फिटनेस कितने कमाल की है। और आपको पता है आपका जो रिश्ता है ना उसमें भी ये फिटनेस बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि जो इंसान फिट होता है उससे अक्सर स्ट्रेस जो है ना वो दूर भागता है और उसका मूड हमेशा जो है बेहतर रहता है। हम सभी जानते हैं दैट एक्सरसाइज इज द मेडिटेशन ऑफ बॉडी, और ऐसे में जो रिलैक्स होते हैं, जो स्ट्रेस से दूर होते हैं, जिनका मूड बेहतर होता है, डेफिनेटली जिंदगी की सिचुएशंस में ना ऐसे लोगों के साथ में रहना, उनके साथ में जिंदगी बिताना काफी आसान तो हो ही जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम हम कदम में हम बात कर रहे हैं फिटनेस की और आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते की। तो चलिए इसी इंपॉर्टेंट रिश्ते के नाम मैं एक खूबसूरत सा गाना और प्ले कर रही हूँ। आज मैं सारे अपने फेवरेट गाने चुनकर लाई हूँ। आज जो है ना, आज थोड़ा सा रिलैक्स मूड में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एंड ऑब्वियसली यही एक ठहराव, यही एक रिलैक्स्ड जो मूड होता है ना, यही हम चाहते हैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इसमें एक इस ठहराव के साथ साथ ना एक संतुष्टि का भाव होता है। और कुछ ऐसे ही गाने आज मेरे पास आप सभी के लिए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, मेरे यानी स्वाति के साथ प्रोग्राम चल रहा है हम कदम।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर, ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो
9: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आपके लिए प्रोग्राम हम कदम। और 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में आप सुनते हैं ये प्रोग्राम, और इसमें हम बात करते हैं आपके हम सफ़र की, आपके ज़िंदगी के इस रिश्ते की, आपके दिल के सबसे करीबी रिश्ते की। और अक्सर ऐसा होता है ना कि शेयर्ड इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं हमारे किसी भी रिश्ते को जो है मजबूत करने में, ख़ासतौर पर जब आपके हम सफ़र की बात होती है। तो ऐसे में जब इंटरेस्ट सेम होते हैं तो बहुत सारे फ्रिक्शन जो है ना दूर हो जाते हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट जो होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों पे जहां हम एग्री नहीं करते हैं। और वैसे भी रोजाना की जिंदगी में अगर सब चीजें ही अलग अलग हों तो काफी मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के साथ चलना। लेकिन अगर फिटनेस जो है अगर आपका एक शेयर्ड पैशन है तो ऐसे में मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपके रिश्ते को तो मजबूत करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके साथ जुड़ जाती है, और वो है रिस्पेक्ट। वैसे भी जब हम किसी को भी अपने लिए मेहनत

करते हुए देखते हैं, खुद के लिए मेहनत करते हुए देखते हैं, तो हमेशा हम लोगों के दिल में जो है ना उनके लिए, उनकी मेहनत के लिए एक रिस्पेक्ट आती है। और ख़ासतौर पर जब आपके अपने पार्टनर की बात हो तो भाई देखा जाए तो आपके पार्टनर एक तरह से आपके लिए ना आने वाले कल के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस जुगाड़ रहा है ताकि वो हमेशा आपके लिए जो है फिट रहे, आपके लिए साथ निभाने के लिए हमेशा जो है वो दुरुस्त रहे। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करने की जब बात आती है तो आपके रिश्ते को लॉन्ग टर्म जो है एक सपोर्ट मिलती है आपके अपने उस अपनी उस फिटनेस से जिसके लिए आप लोग मेहनत करते हैं। और अगर खास तौर पे अगर मिलकर मेहनत करते हैं देन ऑब्वियसली ये इस जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। और जो अकेलेपन की बात मैं कर रही थी ना कि फिटनेस की जर्नी हमेशा जो है काफ़ी अकेलेपन से भरी होती है, वो अकेलापन बहुत अच्छे से दूर हो जाता है। एंड ऑब्वियसली रिश्ते को तो मजबूती मिलती ही है, ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और मज़े की बात है जिसने गाया है वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया है। परिणीति चोपड़ा ने इस गाने को गाया है। अमेजिंग सॉन्ग, सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
8: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और फिटनेस की बात हम कर रहे थे कि किस तरह वो आपके रिश्ते को मजबूती देती है। ये तो फिटनेस के अपने अपने सबके ख्याल होते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि योग एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए फिटनेस लेवल जो है उनको बनाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। और केवल फिटनेस नहीं, केवल शारीरिक फिटनेस नहीं आती है, बल्कि आपको उससे जो है एक मेंटल पीस का भी अनुभव होता है। खासतौर पर यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी आपको ओम के उच्चारण की। ओम का उच्चारण न केवल हमें आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। इससे तनाव दूर होता है, आपका कंसंट्रेशन जो है ना वो बेटर होता है, आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो मेंटेन रहते हैं, आपके तनाव में कमी आती है, डिप्रेशन को ये कम करता है, आपकी हेल्थ जो है ना, आपके हार्ट की हेल्थ, आपके जो खूबसूरत सा वो दिल है जो कि आपके हम सफर के साथ खासतौर पर बहुत करीबी तौर पर जुड़ा है, उसके स्वास्थ्य को बना के रखने के लिए भी जो है बहुत काम आता है। इसके नियमित अभ्यास से, यानी कि ओम के उच्चारण के नियमित अभ्यास से आप ब्लड प्रेशर को और दिल की धड़कन को जो है ना वो आप नॉर्मल लेवल पे रख सकते हैं। बहुत से फायदे हैं इसके, मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर इन फायदों को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। फिलहाल मेरा जो समय है ना आपके इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में बात करने का वो खत्म हो रहा है, और थोड़ी देर में आप सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम। फिलहाल आज का ये जो प्रोग्राम हम कदम ये था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं

0: वृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
0: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
0: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
0: जी।
1: तो आज
0: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
1: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
0: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चले एक और महादेश, अफ्रीका।
0: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
0: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
0: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ, बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
0: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
0: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
0: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: है। फिर क्या होता है विमलेश?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
0: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है

0: audio@cit.nic.in, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

0: केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
2: अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
2: ओ।
1: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और

0: अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी,
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह,

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओ।
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार

0: बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
1: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
1: रेस्ट हाउस में?
2: जी।
1: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
1: ओके,
0: बाय
1: बाय।
0: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
4: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा

पता चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओ, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर।

0: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बने रहना हमारे हाथ में है। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन कुमार। आप एक योग आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868-1070-70। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपकी फिटनेस की, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर अपने एक विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आप हमें ये बताइए, हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है?
1: वृद्धावस्था में स्वस्थ कैसे रहा जाए, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है, तो उम्र का बढ़ना प्रकृति का एक नियम है। बढ़ती उम्र एक खूबसूरत पड़ाव है, जिसे योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और योग का केवल मतलब ये नहीं होता कि शरीर को कठिन आसनों से मोड़ना, तोड़ना, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। योग का जहाँ तक अर्थ है, अपने शरीर के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, अपने शरीर के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सक्रिय करना। प्राय देखा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का, जिसे हम हेल्दी एजिंग की बात कह रहे हैं, तो हेल्दी एजिंग को पाने के लिए योग एक माध्यम है, और इस माध्यम से हम एक हेल्दी एजिंग की लाइफ को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं।
0: तो योग, जैसे कि आपने कहा, हेल्दी एजिंग के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रखेगा, कैसे रख सकते हैं हम इसके जरिए?
1: योग के माध्यम से शरीर और मन दोनों, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, और योग दोनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। क्योंकि ये कहावत काफ़ी समय से प्रचलित रही है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यदि एक शरीर अगर हमारा रोगी होता है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है, और यदि मन रोगी होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग भागों पे पड़ता है। मन अगर रोगग्रस्त होता है, मन अगर विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता है, तो उसका हमारे शरीर के आंतरिक कार्य प्रणाली पे बहुत गहरा दबाव पड़ता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके व्यक्ति के कारण व्यक्ति अपने आप को शक्ति विहीन महसूस करता है। और जब हम योग से जुड़ते हैं तो योग करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहने लगते हैं।
0: तो वृद्धावस्था की, जैसे कि हमारा आज का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो वृद्धावस्था में हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से योग करने चाहिए?
1: वृद्धावस्था में व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए सबसे पहले है कि हमारे शरीर के

0: अवस्था में इन सब रोगों को दूर करने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम योग की कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं, कुछ योग की सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो शरीर में जो एक बढ़ती उम्र के साथ चेंजेज आते हैं, उन चेंजेस को बढ़ने से रोका जा सकता है और शरीर को फिर पूर्व अवस्था में, एक जो किसी समय में, किसी उम्र में हमारी एक शरीर की एक स्वस्थ अवस्था बनी हुई रही थी, कभी वो स्वस्थ अवस्था फिर वापस लौटने लगती है।
1: वृद्धावस्था में स्वस्थ अवस्था रहे, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हमने फिट रहने का, स्वस्थ रहने का लक्ष्य बना लिया तो हम उसे ज़रूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताइए कि वृद्धावस्था में, जैसे कि अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग आसन है, या कोई ऐसा आसन है जो दोनों कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं?
1: कुछ आसन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख आसन हैं जैसे भुजंग आसन है, ये चाहे महिला है चाहे पुरुष है दोनों ही कर सकते हैं। भुजंग आसन की पद्धति इस प्रकार से है, बहुत आसान है करने का तरीका। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखते हुए सांस

0: भरते भरते गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए कमर को मोड़ देने की स्थिति का नाम भुजंगासन है। ये महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो सभी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पादहस्त आसन है, ये खड़े होकर आसन किए जाते हैं और दोनों पैर मिला के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं और फिर दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथों को बिना घुटना मोड़े दोनों हाथ पैर के अंगूठे के साथ टच करेंगे और इसमें कुछ सेकंड रुकते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए वापस आ जाते हैं। ये बाधस्थ आसन है, इसको महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक कटी चक्र आसन है, ये आसन भी पैरों में 2 फीट के लगभग अंतर रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हैं कंधे की सीध में और फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करते हैं और कुछ सेकंड ट्विस्ट करके रुकना होता है और फिर दोबारा सेंटर में वापस आ जाते हैं। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से यदि किया जाए तो ये आसन भी महिला और पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं।
1: तो क्या यह आसन सुबह खाली पेट करना होता है या पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं?
0: खाली पेट ही आसन किए जाते हैं और सुबह अगर ये आसन खाली पेट किए जाएं तो अधिक लाभ मिल सकता है। और जिनके पास सुबह कोई ऑफिस वर्क है कहीं पर उनको जल्दी जाना होता है तो शाम के समय भी ये आसन किए जा सकते हैं, शर्त ये है कि दोपहर का खाना 4 घंटे पहले खाया हुआ हो।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते। ये लिखते हैं कि मैंने MRI करवाया था, मुझे साइटिका बताया है, मुझे हिप से काफ्स तक पेन होता है, मैं कौन सा योग एक्सरसाइज करूं? सतीश कुमार, एज है 65 वर्ष और वजन है इनका 95 किलो, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
0: सतीश कुमार जी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जब आप साइटिका से पीड़ित हैं और आसान तरीका है, साइटिका पेन से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका योग ही है। इसमें विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन अनेक लोगों पे हमने प्रयोग किए हैं और उन लोगों ने साइटिका की पीड़ा से छुटकारा पाया है। और इसमें एक ही टांग में कमर रीढ़ की हड्डी से यह दर्द शुरू होता है कुल्ले तक और कुल्ले से फिर थाइस में और फिर काफ से पैर तक ये पेन की लहर जाती है। इसके लिए एक आसान आसन जैसे मैंने बताया कि विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन कर सकती हैं, जमीन पर लेट जाएं और दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल फैला के रखें, फिर दाहिना पैर आप बाएं हाथ के साथ मिलाने की कोशिश करें। जब दाहिना पैर उठा करके बाईं तरफ लाएंगे तो घुटना सीधा रहना चाहिए और यदि आपकी उसी टांग में दर्द है तो फिर ये शायद आप अपने आप ना कर पाए तो इसके लिए फैमिली के किसी मेंबर्स की सपोर्ट लीजिए और वो आपके पैर को ऊपर उठाते हुए राइट वाले पैर को लेफ्ट फैले हुए हाथ के पास लगा के कुछ सेकंड रोकें और कुछ सेकंड रोकने के बाद फिर पैर को वापस ले आना होता है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करते हैं। ये विधि अगर 3 से 5 बार सुबह शाम अगर की जाती है तो आप पाएंगे कि आपकी साइटिका पेन में काफ़ी आपको 8-10 दिन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास पैदा होता है और फिर आप कुछ दिन अगर इसको कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन तो 80 से 90% साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हिम्मत सिंह हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम, आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: जी, आरडी की प्रॉब्लम है जी, एसिडिटी ऊपर रिफ्लेक्ट।

0: हो जाती है, उसके लिए कोई योगा जो?
1: एसिडिटी रिफ्लेक्स यदि आपको हो रही है तो जिन चीज़ों से एसिडिटी आपको खाने से बनती है, इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मात्रा को कम कीजिए। दूसरा, अपना आहार में बदलाव लाइए। दो प्रकार के आहार हम लेते हैं, एक होता है एसिडिक फूड और दूसरा होता है एल्कलाइन। तो 70% आप एल्कलाइन फूड लीजिए और 30% आप एसिडिक फूड लीजिएगा। एसिडिक फूड में आता है मैदे का बना हुआ सामान है, बेकरी है, बिस्किट्स है और नमकीन है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जितना भी क्षारीय आहार है उसमें गाजर है, खीरा है, टमाटर है, ये जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। योग की जहाँ तक बात की जाए तो योग में आप कुंजल क्रिया कीजिए। सुबह खाली पेट 3 से 5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और आगे झुकते हुए दो उंगलियां अपनी जीभ से थोड़ा सा टच करें, उससे पिया हुआ पानी सारा वोमिट बन करके बाहर आ जाएगा। जैसे ही पानी बाहर आएगा तो आपकी एसिडिटी भी उसमें घुलनशील होकर के बाहर निकल जाएगी। ऐसे प्रतिदिन कुछ दिन कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी लाभ मिल जाएगा।
2: एक और श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
2: अजी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: जैसे मैडम ने बताया कि योग से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि सारी बीमारियां हैं इससे दूर हो सकती हैं, तो मैडम मेरा ऐसा है ना डॉक्टर साहब।
1: जी जी बोलिए।
3: मेरा थोड़ा बीपी ज्यादा है तो मैं एमिडोपिन, कोई अंग्रेजी दवाई है तो उससे मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, तो मुझे कौन सा योग करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि जो स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि योग के साथ साथ दवाई भी खाना चाहिए, कैंसर की बीमारी दूर होती है, तो इस तरह से गलत धारणा भी लोगों के दिमाग में है, तो मुझे यही बताना है कि आप मुझे कौन सा योग करना है, बीपी ज्यादा है।
1: देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना एक लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत आता है, तो यदि आपका जीवन की पद्धति कुछ आपको लगता है कि अगर कुछ गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाइएगा, और अगर आप अपने आहार में बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप तीखे मिर्च मसाले वाली वेजिटेबल्स लेते हैं या बाज़ार का कुछ इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा मिनिमाइज कीजिएगा। और जहाँ तक योग की बात आप कह रहे हैं कि इसमें देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको चंद्रभेदन प्राणायाम की मदद ले सकती हैं। इसमें राइट नोस्टिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्टिल से सांस को भीतर लीजिए और राइट नोस्टिल से सांस को बाहर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा संयम से कीजिए, जल्दी में और बहुत तेजी में आके मत करें, धीरे धीरे आप लेफ्ट नोस्टिल यानी चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए और राइट नोस्टी से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। ये कम से कम 5 मिनट तक आप कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं और आप अपने दोनों टीथ को आपस में मिलाइए और टीथ के माध्यम से वायु को मुख के द्वारा भीतर की ओर धीरे धीरे भरिए। पूरा भरने के बाद होठों को बंद कर लेते हैं, फिर दोनों नोस्टी से सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये 2 प्राणायाम कीजिए, साथ में रिलैक्सेशन करिएगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर

0: आपका बड़ा हुआ हो तब आप थोड़ा रिलैक्सेशन करें, नीचे लेट जाएं या अपने बेड पे भी लेट सकते हैं, और बेड पे लेटते हुए शरीर को जितना रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को ढीला छोड़ते जाओ, ढीला छोड़ते जाओ। और ढीला छोड़ने का क्रम जो है 5 से 10 मिनट तक लगता है, एकदम शरीर ढीला नहीं हो जाता। जैसे जैसे बॉडी आपकी रिलैक्स होती चली जाएगी, आपका जो शूटअप हुआ ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप राइट करवट ले के लेटे। राइट करवट ले के लेटने से आपकी चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास चलना शुरू हो जाती है। ऐसा करने से साइंटिफिकली क्या प्रभाव पड़ेगा कि चंद्र नाड़ी से सांस चलने से ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है? इसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारी पैरासंपैथेटिक नाड़ियों पे पड़ता है। जब पैरासंपैथेटिक नाड़ियां हमारी एक्टिव हो जाती हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, तनाव कम हो जाता है। और हम देखा है हमने कि 10 से 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो आप इनका प्रयोग करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि इनसे पहले भी एक श्रोता थे हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने भी कहा था कि डाइजेशन का इशू है, तो वृद्धावस्था में अक्सर देखा जाता है कि कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाचन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। तो क्या कुछ ऐसे योग आसन हैं कि जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो हम डेली में कर ले, ईजली खा सके, ईजली डाइजेस्ट हो सके?
0: जो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का जो चलना फिरना है वो काफ़ी कम हो जाता है। 60 इयर्स की एज के बाद प्राय लोगों को देखा गया है, वो बैठे रहते हैं या वो अपने बेड पे लेटे रहते हैं, उन्हें आराम करना ज़्यादा आरामदायक और अच्छा लगने लगता है। बॉडी का डीएक्टिवेट होना ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया जो है मंद पड़ने शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा बॉडी को वर्किंग में रखें, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा और खाना जो है वो थोड़ा सा हल्का लीजिएगा, क्योंकि आप अब आपकी कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही है। तो अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आप 10-15 साल पहले कर रहे थे, भोजन की क्वांटिटी यदि उतनी ही ले रहे हैं और वर्किंग में बॉडी है नहीं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण आपको एक मंदाग्नि रोग के शिकार इस उम्र में लोग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें केवल इतना ही करना है कि जठरा अग्नि को थोड़ा सा दीपन किया जाए। जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए योग में अग्नि सार क्रिया की बात बताई गई है। वज्रासन में इसमें बैठ जाते हैं, यानी दोनों घुटने मोड़ करके एड़ियां हिप्स के नीचे रख के वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं, सांस पूरा भरें और फिर सांस को पूरा धीरे धीरे बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोक देते हैं। तब पेट की धीरे धीरे पंपिंग करते हैं, पेट अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, ऐसा सांस के बाहर रोके रहने तक 10-12 बार ही हो पाता है। फिर एक नई सांस ले लें, पेट को हिलाना बंद कर दें। इस तरह से इस पद्धति को 4-5 बार किया जाए तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है, इस समस्या का जो संबंध है वो आपकी नींद से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी पाचन क्रिया हमेशा खराब रहेगी। तो रात की नींद गहरी होनी चाहिए, तब आपका पाचन क्रिया भी अच्छा होगा।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में कि हमने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे, लेकिन काम से आराम करना शरीर को आराम नहीं देना।
0: जी।
1: ये बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुन

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात

0: करें योग फॉर हेल्दी एजिंग पर, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं कर्मपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 75-80 केजी के आसपास मेरा वजन है। ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, और
0: जी
1: पित्त मेरी प्रवृत्ति है। तो डॉक्टर साहब, मेरे कई सारे सवाल हैं, प्लीज आप नोट करें, मैडम भी नोट करें। वैसे तो खैर 21st को आप जगह डे मना ही रहे हैं हम सब, तो मेरी आप लोगों से तमन्ना है कि एक दिन जो है ना आकाशवाणी से पूरे प्रोग्राम योगा भाई, सारे सारे प्रोग्राम कैंसिल करके योगा प्रोग्राम पेश करें। जैसे 1 घंटा फॉरेन कार्यक्रम, 1 घंटा अपने हिसाब से पेश, डॉक्टर अपनी राय दें, 1 घंटा फॉरेन कार्यक्रम, 1 घंटा अपनी राय दें, ऐसे कुछ होता अच्छा रहेगा,
0: आप
1: तो
0: अपना
1: योगा डे के
0: सवाल
1: मायने बढ़
0: कीजिए,
1: जाएंगे।
0: आप अपना
1: अब मैं
0: सवाल
1: अपने
0: कीजिए।
1: सवालों पे आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे को क्या है कि कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम है, हिप ज्वाइंट में और नेक में प्रॉब्लम है। अब मैं आगे की ओर बैंड होता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीछे की ओर बैंड होता हूँ तो मुझे उस पर रिलीफ मिलता है। तो हिप्स में ना क्या है, स्टिफनेस तो नहीं है, सॉरी स्वेलिंग नहीं है, स्टिफनेस और पेन होता है। जो तो धनुष होता है ना, धनुष उस
0: जी
1: किस्म का
0: जी
1: बिना शरीर हो गया है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ा सा उतना मेरे प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस सर्दी दोनों में बढ़ जाती है। क्या मैं विदाउट सपोर्ट बैठूं या आगे की ओर बैंड हो, या इंडियन टॉयलेट में ऐसे बैठता हूँ उस मुद्रा में बैठो अवस्था में मुझे परेशानी हो रही है, इसे मुझे क्या
0: ठीक।
1: करना चाहिए?
0: आपने कमर और अपनी गर्दन में पीड़ा की बात कही है, और आपने स्वयं ही बता दिया कि आगे झुकने से कमर में दर्द और गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। जब तक आप थोड़ा योग करके स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपको फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। और योग की जहाँ तक बात आती है कि अगर कमर में दर्द है तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। हमारी बैकबोन के अंदर एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है, और दूसरा होता है कि हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आ जाती है, तो भी हमारी कमर में दर्द होता है। यही स्थिति गर्दन के साथ होती है। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी में डीजनरेटिव प्रोसेस होगा, तो हमारे वर्टिब्रेस के अंदर कुछ रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से टच करती है, तो उसकी वजह से नाड़ियों में एक झुनझुनी, एक दर्द की लहर पैदा होती है। तो आपको इसके लिए आसान सा दो आसन हम बता रहे हैं। एक आसन पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, भुजंग आसन करेंगे। पेट के बल लेटना है, और पेट के बल लेट करके दोनों हाथ अपनी कंधों के नीचे रखते हुए हाथों के सपोर्ट से अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएं, और साथ साथ जितनी आसानी से कमर मुड़ जाए उतनी मोड़ें, क्योंकि ज़्यादा मोड़ेंगे तो एकदम बहुत तेज दर्द कमर में आने की संभावना होती है। धीरे धीरे मोड़ें, और फिर थोड़ा रुकें 2-3 सेकंड, उसके बाद फिर माथे को नीचे ले आएंगे, तो आपकी कमर में और गर्दन में उसी समय नीचे लाने पे तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे करने से हमें आराम मिल रहा है। दूसरा हम कर सकते हैं मकर आसन। इसमें पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, और दोनों घुटने मोड़ लेने चाहिए, और दोनों हाथों को मकर आसन करने के लिए कंधों की सीध में फैला दिया जाता है, और दोनों मुड़े हुए घुटनों को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें और अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ें। यहाँ पे 2 सेकंड, 4 सेकंड, जितना आप रुक सकते हैं आराम से रुकें। उसके बाद 2-4 सेकंड बाद फिर दोनों घुटनों को और गर्दन को बीच में ले आए। इसी तरह से दोनों घुटनों को राइट साइड मोड़ेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। इस तरह से ये विधि मकर आसन की दोनों तरफ से 4-4 बार कीजिएगा, और जिस दिन आप करेंगे उसी दिन पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद बेटर फील करना शुरू कर दोगे। जी, एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम, नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते,
2: मेरी वाइफ को

0: हर्पीस की बीमारी है, आई से नीचे की तरफ नोज पर पेन होता है। मेरी वाइफ कौन सा योग करें कि फ़ायदा हो? राजरानी, एज है इनकी 67 ईयर्स, और रोहिणी दिल्ली से।
1: देखिए, हर्पीज एक प्रकार के जीवाणु के कारण होती है और इसमें बड़ा इरिटेशन होती है। जो जो भी इस रोग के शिकार होते हैं तो काफ़ी इरिटेशन फील होती है, तो कुछ ठंडक चाहिए। तो ठंडक चाहिए तो इसके लिए किया जा सकता है, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा सा पाइप नुमा बना के फोल्ड करें और जीभ के माध्यम से शीतल शीतल वायु को भीतर की ओर भरें और फिर होठ बंद करके अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें और थोड़ी रोकने के बाद दोनों नोस्ट्रिल से वायु को छोड़ दें। ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन करें तो जो इरिटेशन आपके फेस के आसपास आईज के नीचे हो रही है हर्पीज के कारण, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं वो इसको कंटिन्यू में रखें अभी।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। इन टूडेज स्ट्रेसफुल वर्ल्ड आई एम मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब्ड। विच योग आसन आई कैन डू टू बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव? वैसे तो इनकी उम्र 26 साल की और हम वृद्धावस्था पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने मैसेज भेजा है तो हम ले लेंगे आज के शो में। तो ये लिखते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो कौन सा योगासन करूँ?
1: फिजिकली और मेंटली अनफिट होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपके अंदर जो एक बायो एनर्जी है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। क्योंकि बायो एनर्जी हमें माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्ट करती है। जब भी हमारी बायो एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों में अनफिट फील करेंगे। और आपको क्या करना है, आप कुछ दिन, केवल कुछ दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा। राइट नोस्टिल बंद करें और लेफ्ट नोस्टिल से सांस अंदर भरना है और फिर राइट नोस्टिल से छोड़ देना है। फिर लेफ्ट नोस्टी बंद करें, राइट नोस्टी से भरें और लेफ्ट नोस्टी से छोड़ देना है। ये ऑल्टरनेट प्रोसेस के साथ ब्रीदिंग आप करिए और कम से कम 10 मिनट जरूर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि पहले दिन ही, जिस दिन आप 10 मिनट करेंगे, आप अपने अंदर बड़ा ग्रेटेस्ट चेंज फील कर पाएंगे। तो आप इसे करिएगा और फिर इसके रिजल्ट देखिएगा।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर मैडम को भी नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी बोलिए रघुवीर जी।
2: मैडम ने ये मैडम मेरे को 2-3 सवाल पूछने थे। जैसे ये मैं अभी आर्मी से रिटायर हूँ, मैं मेरी उम्र है 58-59 60 करीबन।
0: जी
2: तो आर्मी में क्या होता है कि कोई भी पीटी लंबी रनिंग के बाद या कुछ वार्म अप के बाद ही होती है, तो उसमें बताते हैं कि लंबी सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो करके। तो अब सिविल में तो ये बोलते हैं कि नाक से लो, नाक से ही छोड़ो। एक क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा श्रोता बंधु जो रघुवीर जी के लिए आपने बोला था कि जो हम जीभ को मोड़ते हैं तो उससे सांस लेते हैं, तो फिर मुंह बंद करके छोड़ना है या फिर जीभ से ही छोड़ना है? क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करता हूँ, जब मैं कोई भी काम मुंह करता हूँ तो मैं लगा रहता हूँ ऐसे।
1: शीतली
2: और तीसरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो योगा से फायदा होता है या फिजिकल से फायदा होता है? क्योंकि फिजिकल रनिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे हमारे तो घर रोड साइड में तो दौड़ जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता। तो योगा से में फायदा होता है ज्यादा कि या फिजिकल उसमें फायदा होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करें मैडम।
1: देखिए, योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। फिजिकली जितना भी आप रनिंग करते हैं उससे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, जैसे मांसपेशियां हैं और आपका थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो जाता है, इतना ही होता है।

0: यदि आप शारीरिक और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करना चाहती हैं तो इन सब का जो लाभ है वो केवल योग से ही मिलता है। योग हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाती ये सब चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो योग आपको तनाव से मुक्त करने का एक तरीका बताता है और आप कि सोच एकदम पॉजिटिव हो जाती है और आप सारा दिन रिलैक्स महसूस करने लगते हो।
1: रिलैक्स रहने के लिए तो हम योग करते हैं और योग करना भी ज़रूरी है। एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, योग क्या दिन में किसी समय भी कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ना कर सकते हो, क्या सिटिंग पोजीशन में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ से।
0: सरोज जी, योग का समय सुबह और शाम का ही ठीक समय माना गया है, लेकिन यदि आप ऑफिस वर्किंग हैं और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो आप अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, पैरों को ज़मीन पे टिका करके और आप अपनी कमर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड ट्विस्ट करें, तो इसे चेयर योगा कहते हैं। तो चेयर पे बैठे बैठे आप अपनी गर्दन काफ़ी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और गर्दन अकड़ गई है 6-7 घंटे काम करते, तो चेयर पे बैठे बैठे गर्दन को बैक स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को साइड मूवमेंट दीजिए। इस तरह से 4-5 टाइम्स बैक स्ट्रेच करें, फ्रंट में लाएं और फिर इसी तरह गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड मोड़ें, ऐसे 4-4 टाइम्स इसे करें। तो आप ऑफिस में बैठ के भी योग कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली समय निर्धारित है वो सुबह और शाम का है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो फिर आप अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं।
1: शायद कई बार काम करते करते हम स्ट्रेचिंग करना भी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब दर्द का एहसास होता है तब हमें लगता है कि हाँ, कुछ अकड़ गया है, जकड़ गया है,
0: तो जब अकड़ जाता है तो उसको करने के बाद तुरंत रिलीफ भी मिलता है।
1: मिलता है। एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, नमस्कार, मन को एकाग्र करने का उपाय समझाइए, क्या उसके लिए कोई योग है? अनिल, गुरुग्राम से।
0: अनिल जी की मन को एकाग्र करने की ही बात हमारे महर्षि पतंजलि जी ने की है। महर्षि पतंजलि हमारे योग के गुरु कहलाते हैं और उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग करने से एकाग्रता आती है। आप योग करने के लिए एक ड्राइंग पेपर के ऊपर एक 1 रुपीस कॉइन्स का एक गोल चक्र बना लें और उसको किसी ब्लैक पेन से ऐसे फिल कर लीजिए, बिल्कुल काले रंग का एक गोल चक्र बन जाएगा। उसे आप दीवार के ऊपर कहीं पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट करने के बाद अपनी नासिका से 4 फीट की दूरी पर बैठ करके उस गोल बिंदु को देखें और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट देखने के बाद आपके चित्त में एक ठहराव आने लगता है और आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है। इसे योग की भाषा में त्राटक विधि कहते हैं और जैसे जैसे आप त्राटक विधि का प्रयोग करने लगेंगे आपके मन में एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके मन में अननेसेसरी जो थॉट्स आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे।
1: तो क्या ऐसे में याददाश्त बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि वृद्धावस्था में जाते हैं तो कई बार हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो क्या कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे योगासन हैं जो बढ़ती उम्र के साथ कर लेने चाहिए?
0: बिल्कुल, प्राय ये देखा गया है कि एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी आने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं और कभी कभी किसी किसी का नाम भी व्यक्ति भूल जाता है। तो

0: स्मृति के ऊपर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, तो दिमाग की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो डीप ब्रीदिंग करनी होती है, इसमें एक स्मृति शक्ति विकासक योग की बात कही गई है। ये विधि खड़े होके की जाती है, दोनों पांव को मिला करके गर्दन सामने की तरफ रखते हैं और सिर के मिडिल हेड के ऊपर फोकस करते हुए फोर्सफुली आपको इनहेल एक्सहेल 15 से 20 बार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन के अंदर एक फ्रेशनेस आती है और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो धूमिल हुई स्मृति है फिर से जागृत हो जाती है और फिर हम स्मृति में काफी सुधार महसूस करते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: नमस्ते मैडम, मेरा नाम ब्रह्म दत्त है, मंगोलपुरी दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ।
1: अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: पहले तो विशेषज्ञ जो आए हैं उनको सादर प्रणाम जी।
0: सादर प्रणाम ब्रह्मदत्त जी।
2: हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हाईफाई मशीनें हैं आजकल अत्यधिक तकनीक से युक्त, हम लोग जिम जाते हैं जिम करने, तो क्या जिम और योगा संयुक्त रूप से कर सकते हैं? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं?
0: नहीं,
2: कृपया
0: संयुक्त
2: बताने
0: रूप
2: का।
0: से कर सकते हैं, दोनों चीजें
2: शुक्रिया,
0: संयुक्त रूप से कर
2: धन्यवाद।
0: सकते हैं। पहले जिम कर लीजिए और जिम पूरा जब हो जाए तो उसके बीच में 10 मिनट का थोड़ा गैपिंग रखिएगा, उसके बाद आप योग कर लीजिएगा, क्योंकि जिम जो है वो आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है और योग जो है वो आपके ओवरऑल जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा और हमारा एस्क्रिटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारा पूरा जो नाड़ी तंत्र है उन पे गहरा प्रभाव योग के माध्यम से आता है और इनमें एनर्जी आती है योग करने से। दूसरा, एक तरफ आप जिम करते हैं तो मसल्स हार्ड हो जाते हैं, टाइट करता है जिम, और योग उन मसल्स में एक नई स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। दोनों में बस थोड़ा सा ये अंतर है कि आपने जो जिम के माध्यम से मसल्स डेवलप किया है वो योग के माध्यम से उस मसल्स को लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी योग से काफी सहायता मिल जाती है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम सब अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, तो क्या चाय के बाद हम योग कर सकते हैं? और हमें अपनी मील्स में क्या-क्या खाना चाहिए, प्लीज बताएं। पूनम फ्रॉम नांगलोई।
0: पूनम जी, आप दिन की शुरुआत चाय से मत कीजिएगा, आप दिन की शुरुआत हरे नारियल के पानी से करें। सुबह उठते ही एक हरे नारियल का पानी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास हरा नारियल उपलब्ध नहीं है तब आप नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि नींबू पानी भी आप नहीं पीना चाहते तो सुबह फलों का एक गिलास जूस पी लिया कीजिएगा। दिन की शुरुआत आप ऐसे करें। आगे आप क्या पूछ रहे हैं?
1: वो कह रहे हैं कि वो चाय के बाद हम योग कर सकते हैं।
0: चाय के आधे घंटे के बाद आप योग कर सकते हैं, चाहे जैसे ही आपने शाम को 4 बजे चाय पी है तो 5 बजे आप योग कर सकते हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, वेरी नाइस डिस्कशन, वेरी नाइसली कंडक्टेड बाय शिल्पा गुप्ता मैडम एंड आल्सो डॉक्टर योगा टीचर। माय प्रॉब्लम इज माय स्लीप गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू यूरिन, माय एज इज 60 इयर्स। prostate operation done maybe due to BP tablet. Guide for continuous peaceful sleep. I am getting up early. Sanjay Joshi from Pune.
0: संजय जोशी जी, आप प्रोस्टेट की इस प्रॉब्लम के कारण जो

0: कंटिनेंस यूरिन की समस्या है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिएगा। इसके लिए मैं एक आसान सी विधि आपको बता रहा हूँ। इसमें योग में आती है एक प्रक्रिया मूलबंध की। आप अपने गुदा की मांसपेशियों को अंदर स्क्वीज करें, गुदा की मांसपेशियों को स्क्वीज करने ते हुए कुछ देर रोके। ऐसे रोकने के कारण आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम है वो काफी सुधरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम में सुधार होगा, आपका जो फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है और उसमें सुधार हो जाएगा। नाइट में बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ओवरऑल इसका जो पूरे हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। जैसे मैंने बताया, एक नेचुरल वे है कि आप मूलबंध लगाएं, गुदा को भींच के रखने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं। इसे रोकिए और फिर उसके बाद इसे ढीला कर दीजिए। कितनी बार करना चाहिए? कम से कम कंटिन्यूसली 5 मिनट तो जरूर कीजिए। एक आता है मल आसन। जैसे इंडियन हमारी टॉयलेट होती थी तो दोनों पैरों के बाहर हम बैठते थे, उस स्थिति का नाम है मल आसन। उसमें बैठ जाइए 2-3 मिनट और फिर बस उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से करिए। रात्रि के समय जो लिक्विड डाइट्स है वो कम लीजिए। दूध या अन्य पदार्थ रात के सोने से पहले लेना बंद कर दिया कीजिएगा, और उससे आपकी रात को यूरिनेशन नहीं होगा और कम हो जाएगा, जिससे नींद आपकी क्वालिटी सुधरेगी। और नींद के लिए थोड़ा सा शवासन रात को जरूर कर लिया करें।
1: योग ज़रूरी है, चाहे हम सुबह उठ के करें और रात की अगर नींद की समस्या है तो रात को ज़रूर करें। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड रविंद्र पाठक जी का आँखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के कितने टाइम बाद योग शुरू किया जा सकता है? बहुत सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
0: आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो आप 20-25 दिन बाद हल्के हल्के योग करना शुरू कर दीजिएगा। 20-25 दिन बाद सर्जरी अगर आपकी हुई है तो 20-25 दिन बाद योग करना शुरू कर दीजिएगा, और धीरे धीरे एक हफ्ते तक जो आपका पुराना रूटीन योग कर रहा है, एक हफ्ते तक उसी रूटीन में आके कर सकते हैं। और कोई सवाल इन्होंने पूछा?
1: नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि कितने दिन बाद योग शुरू कर सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: कर सकते हैं, 20-25 दिन बाद शुरू कर सकते हैं।
1: और एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर योगाचार्य को सादर नमन। डॉक्टर साहब, योग बंद कमरे में या खुले पार्क में करना चाहिए? योग में खान पान का क्या महत्व है? बच्चे, जवान और बुजुर्गों को कैसी डाइट रखनी चाहिए? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: योग हमेशा खुले स्थान पे ही करना चाहिए। बंद कमरों में योग करने से उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम खुले वातावरण में योग करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर उसका प्रवाह अच्छा हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह अच्छा हो जाने से हमारा जो सोच है वो सकारात्मक होने लगती है। और जहाँ तक आपने आहार की बात की है कि कैसा आहार होना चाहिए, अगर हमारा शरीर 10 से 22-25 साल की एज का है तो हमें अपने शरीर के ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, जिसमें सभी तरह के तत्व शामिल हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। और अब अगर बात आ जाती है कि उम्र बढ़ गई है, तो उम्र बढ़ करके हमें अपने भोजन पे थोड़ा सा संयम बरतना है। योग में ये भी बताया गया है कि शरीर को 4 भागों में बांट दिया जाए।

0: दो भाग भोजन के और एक भाग जल के लिए और एक भाग खाली रखना चाहिए सांस लेने और छोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप भोजन का विभाजन अपने लिए कर सकते हैं।
1: वैसे हमारा जाने का समय हो गया, लेकिन जाते जाते शॉर्ट में एक मैसेज आया है, वो मैं लेना चाहूँगी। वो लिखती हैं, उनकी एज 46 ईयर्स है, रेनू भोपाल से। प्लीज़ सजेस्ट योगा फॉर प्री मेनोपॉज वुमेन के लिए।
0: प्री मेनोपॉज के अंतर्गत जब प्री मेनोपॉज के लक्षण आते हैं तब प्रायः देखा जाता है कि महिलाओं में एक डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो प्री मेनोपॉज की स्थिति में योग की कुछ विधियां जैसे कोन आसन है, पादहस्त आसन है, ताड़ासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इतना कर लीजिए, इससे काफी फायदा होगा।
1: और जाते जाते एक लास्ट में हमारे जो श्रोता, उनके लिए मैसेज कि कोई आसन जो हर कोई कर सकता है वृद्धावस्था में अपने, जिससे कि वो स्वस्थ रहें।
0: ताड़ासन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। ताड़ासन वृद्ध भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कम से कम 8-10 बार ताड़ासन करें, पादहस्तासन करें और कटी चक्र आसन करें, कोन आसन करें। यही सारे आसन हानि रहित हैं, सभी कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की चर्चा से हमने जाना कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित, ऊर्जावान और आनंदमय बनाने का मार्ग है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे योग विशेषज्ञ योगी गुलशन कुमार। आप हमारे कार्यक्रम में आए और योग के महत्व को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए और हर उम्र को उत्साह के साथ जिए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की राष्ट्र की निरंतर सेवा की ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है।

0: इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शन को PNG कनेक्शन में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मूज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मूज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की ओर दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमरीका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मूज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमले किए गए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएंगी। ये डेटा सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक में उत्पादों और AI क्षमता को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।
4: और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी की, आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कहकह लगाता रहा हूं, तो आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकहों की आवाज सुनी है, कभी कई बाकर के उन कहकहों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे।
5: ये कहकहे, आंसू, जज्बात, ये बेकार और नकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास

दोस्तों, फिल्म शराबी के इस डायलॉग को सुनकर आपको याद आ गई होगी ये फिल्म, जिसमें प्राण साहब एक पिता की भूमिका निभाते हैं, जो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास अपने बेटे अमिताभ बच्चन के लिए भी टाइम नहीं रहता। और इसीलिए इस डायलॉग में एक बेटा अपने पिता से कहता है इस तरह की बातें। दोस्तों, अधिकतर परिवार में माता पिता की व्यस्तता ही बच्चों के खराब भविष्य का कारण बन रही है, और माता पिता ये भूल रहे हैं कि बच्चे के लालन पालन में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की होती है तो वो है बच्चों के माता पिता की। जी हाँ, माँ जहाँ बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा देती है, तो वहीं एक पिता बाहरी दुनिया का दिलाते हैं बच्चों को भरोसा। और दोस्तों, जब दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करते हैं तो बच्चा न सिर्फ अपने आप को समझता है सुरक्षित, बल्कि उसको इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो भी है एक सक्षम बच्चा। दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ इसी विषय पर आपसे मुखातिब होंगी और साझा करेंगी अपने विचार कि माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो पर हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

प्रिय श्रोता, आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के लालन पालन में शामिल हो सकते हैं। हमारे समाज में जब विवाह होता है तो सारा परिवार बहुत उत्तेजित होता है कि मेहमान कब आएगा, कब एक छोटा बच्चा हमारे परिवार में आएगा, कब खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन जब वो खुशखबरी आ जाती है, जब बच्चा आ जाता है, तब उसके लालन पालन में काफ़ी कमियां हो जाती हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। और आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं कि तरह तरह की सलाह माता पिता को दी जा रही है कि किस तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन किया जाए, क्योंकि तेज़ रफ्तार वाले शहरों में जहाँ पर माता पिता दोनों काम करते हैं, बच्चों को समय नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे श्रोता जन हमको लिखकर बताते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं कि उनके बच्चे या तो घर से चले गए हैं, या उनके बच्चे ड्रग में चले गए हैं, या उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारे वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल एडिक्शन उनका हो गया है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि जो बच्चे का लालन पालन होता है वो बहुत ज़रूरी है कि माता पिता स्वयं उसमें शामिल हों। किसी सेवादार को दे देना, किसी हेल्पर को दे देना, या किसी बुज़ुर्ग माता पिता पर पूरी जिम्मेवारी छोड़ देना, ये सही नहीं है। परमेश्वर ने हमें बच्चा दिया है, उसके लालन पालन की जिम्मेवारी हमारी है। और आजकल की ज़िंदगी में जब तलाक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बच्चे का जो दिल की हालत है, क्योंकि बच्चे को तो माँ बाप दोनों चाहिए। मैं हाल ही में किसी टीचर्स के साथ बात कर रही थी तो वो बता रही थी कि मैडम, आजकल बहुत ही कम है जो कि एक नॉर्मल

बच्चा हमारे स्कूल में आता है, जब बच्चा नर्सरी में आता है तो अधिकतर उसके माता पिता तलाकशुदा होते हैं, तो उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत क्रोध होता है। उस छोटे से नन्हे से बच्चे के दिल में क्रोध और घृणा भरी होती है। वो टीचर पर अपना गुस्सा उतारता है, वो अपने बच्चों अपने साथियों पर गुस्सा उतारता है या उतारती है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो घर में लड़ाई का एक वातावरण देखता है या देखती है, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अपने आप को व्यक्त नहीं करते, वो ज़्यादा बोल नहीं पाते, तो उनके दिल के अंदर जो चोट लगती है, उनके जो छोटे नाजुक दिमागों में दिल में चोट लगती है, वो चोट बहुत गहरा जख्म बन जाती है। तो किस तरीके से हम अच्छे माँ बाप बन सकते हैं? अच्छे माँ बाप बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा विवाहित जीवन अच्छा हो। अगर हम विवाहित हैं और हम खुश हैं, सुखी हैं, संतोष है हमारे पास, ज़रूरी है कि ऐसे वातावरण में ही बच्चे को लाया जाए। नहीं तो बच्चे को जन्म तो दे दिया लेकिन फिर या उसको सेवादार पर छोड़ दिया या खुद अलग हो गए, तो ये सही नहीं है। किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद करने का अधिकार माता पिता को नहीं है। जब ईश्वर हमें माता पिता बनने का अधिकार देता है तो ढेर सारी जिम्मेवारियां हमारी होती हैं, और वो जिम्मेवारियां तभी ख़त्म होती हैं जब हमारे जीवन का अंत होता है। तो इसलिए जब हम माता पिता बनते हैं तो सोच समझ के अपनी जिम्मेवारियों को होशो हवास में समझ कर ही ये कदम उठाना चाहिए। नहीं तो किसी भी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने का अधिकार किसी भी माता पिता को नहीं है। हाल ही में एक जवान लड़के की मृत्यु हो गई। सबको पता था कि उसके घर में उसके पिता रोज शाम को दारू पीते हैं, उसकी माता भी उसके साथ दारू पीती थी। तो ऐसे वातावरण में जब हम बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं बिना किसी अनुशासन के, तो हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं बच्चे से? हम बच्चे को निर्देश तो देते हैं, बच्चे को दिशा तो दिखाते हैं, लेकिन बच्चा तो हमारे लवों को नहीं सुन रहा, हम क्या कह रहे हैं वो नहीं सुन रहा, वो करेगा जो वो देखता है या देखती है। जी हाँ, हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। अगर हम तहजीब से बात करते हैं, अगर हम प्रेम पूर्वक अपने परिवार में रहते हैं, अगर हम अपने मन मुटाव प्यार और शांति से सुलझाते हैं, एक शांति का वातावरण अपने परिवार में रखते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम जैसे भी बात करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, वो बच्चा हमें बहुत गौर से देख रहा है और वो वही करेगा या करेगी जो उसके माता पिता करते हैं। अगर माता पिता अच्छे हैं, माता पिता अनुशासन रखते हैं।

रखते हैं, किसी को हेल्पिंग हैंड देने में विश्वास रखते हैं, अगर माता पिता घर में प्रार्थना का वातावरण रखते हैं, तो ठीक वैसे ही बच्चा भी करेगा, बच्ची भी करेगी, क्योंकि वो हमें देखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम माता पिता की भूमिका में अपने आप को देखते हैं या हैं, तो हमको इस जिम्मेवारी का पूरा एहसास होना है। और किस तरीके से हम अपने जो पेरेंटिंग है, माता पिता की जो भूमिका है, उसको हम और कितना अच्छा कर सकते हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं उनकी अच्छाइयों से हम सीख सकते हैं, जो पहले पीढ़ी गई हैं उनसे हम सीख सकते हैं, हमारे माता पिता ने क्या गलतियाँ करी या क्या अच्छाइयाँ करी उनसे हम सीख सकते हैं, किताबों से, सलाह लेकर, काउंसलर्स से, क्योंकि हर एक बच्चा फ़र्क होता है। तो किस तरीके से हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, प्रिय श्रोताओं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे भविष्य का, चाहे वो देश का भविष्य हो, समाज

0: आज का भविष्य हो माता पिता के हाथों में दिया है। हम सोचते हैं कि टीचर्स सुधारेंगे, लेकिन अध्यापकों के पास तो बच्चा केवल 6 घंटे होता है, बाकी 18 घंटे तो वो माता पिता के साथ घर में होता है। अब माता पिता घर में प्रेशर कुकर का वातावरण रखते हैं या प्रेम शांति का वातावरण रखते हैं, ये माता पिता के हाथ में है। कई बार तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि माता पिता बात ही नहीं करते बच्चों से, ना एक दूसरे से बात करते हैं, ना बच्चों से बात करते हैं, और करते भी हैं तो लड़ाई मार झगड़े का। तो प्रिय श्रोता, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझें, क्योंकि देश का भविष्य जो इस छोटे छोटे बच्चों की मुट्ठी में है, उसको सही दिशा दिखाना हम माता पिता का पहला कर्तव्य है।
1: जी हाँ, घर का माहौल और माता पिता का आपसी संबंध ही बच्चे का भविष्य तय करने में निभाते हैं अहम भूमिका। इसीलिए घर का माहौल खुशियों भरा और आपसी संबंधों में बनाए रखिए अपनापन और मोहब्बत, ताकि आपके बच्चे का भविष्य भी खूबसूरत और प्यार से महकता रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से अपने बच्चे से संबंधित विषय पर बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं इसी नंबर पर, यानी 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का उस प्रोग्राम में जो है हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की धड़कन नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जब हम आपको लिए चलते हैं यूनिवर्सिटी के गलियारों में। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार एक नया कॉलेज और हर बार हमारे सहयोगी ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं आपके लिए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का वो टैलेंट जो उनकी आगे आने वाली जिंदगी जो है ना उसकी एक झलक पेश करता है। अकेडमिक्स के साथ साथ टैलेंट है, सोसाइटीज हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी हैं। आई मीन इट्स स्टूडेंट लाइफ जो है ना इतनी वाइब्रेंट होती है कि उसको शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने उसे पूरे एक प्रोग्राम में समेटा है जिसे हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आप सभी के लिए। आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची कमला नेहरू कॉलेज और वहां उन्होंने की वहां के स्टूडेंट से बातचीत और बहुत सारी बातें वो जो है समेट कर लाई हैं, आइए सुनते हैं।
2: मेरा नाम है ऋचा और आज मैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आई हूँ कमला नेहरू कॉलेज और इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मेरे साथ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के कार्यक्रम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग।
3: थैंक यू ऋचा, आपने कमला नेहरू कॉलेज में आकर हमसे बात करने के लिए समय दिया और हमें कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ा, इसके लिए कमला नेहरू कॉलेज परिवार आपको थैंक्स करता है। मेरा नाम प्रोफेसर पवित्रा भारद्वाज है।
2: मैम अभी कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एग्जाम सीजन चल रहा है, मैम इस कॉलेज में एग्जाम्स जो है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है?
3: हमने एक ऑनलाइन

0: ले रखा है जिसमें हम सारे मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, कंटिन्यूअस इवेलुएशन के मार्क्स हम बच्चों को ऑनलाइन दिखाते हैं ताकि एकदम ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रहे, और अगर बच्चों का कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके लिए भी वो हमने प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो टीचर के पास जा सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको हम बहुत पब्लिसाइज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पूरा ज्ञान रहे, वो गलती से भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उन्हें आगे जाके कष्ट हो।
1: मैम, इतना सारा प्रयास आप लोग करते हैं, पर मैम स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव जो एक रहता है वो ये रहता है कि वो एग्जाम्स की उन्हें बहुत एंजाइटी रहती है, तो क्या इंस्टीट्यूशन के ऐसे कोई इनिशिएटिव्स हैं जो स्टूडेंट्स की एंजाइटी को कम करने के लिए हेल्पफुल रहे?
0: कॉलेज में हम तीन स्तर पर बच्चों को एग्जाम के दिनों में खास करके सहायता देने का प्रयास। पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा एक फिजिकल सपोर्ट सिस्टम और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि कूलर्स, एयर कंडीशनर जिन कमरों में है उनमें हम एग्जाम की व्यवस्था करें। दूसरे लेवल पे हम देखते हैं कि बच्चों को एकेडमिक हार्डशिप कोई ना हो। हमारे टीचर्स जो हैं, फैकल्टी जो हैं कॉलेज के, वो बहुत अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं। अभी परीक्षा के लिए बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं तो टीचर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सएप, ईमेल, फोन के माध्यम से बच्चों से जुड़े रहते हैं। किसी को लास्ट मिनट क्वेरी, डाउट है तो सभी टीचर्स उनको पर्सनल अटेंशन देते हैं उसको करने के लिए। और तीसरा जो है, जो कि हम सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स हैं, जो परिवार से दूर रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि उनको एक काउंसलर, एक गाइडेंस दी जाए। उसके लिए कॉलेज ने फुल टाइम काउंसलर को हायर किया हुआ है।
1: तो मैम, जब आप स्टूडेंट रही होंगी तब आपका भी एक गोल्डन मंत्र होगा इन एग्जाम से टैकल करने का, जो आज आई एम श्योर आप अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन कर रही हैं, तो गोल्डन मंत्र आपका क्या है?
0: डेफिनेटली जिस दौर में हम परीक्षा देते थे और आज का दौर बहुत अलग है। अब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के जमाने में स्टूडेंट्स, जहां सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एग्जाम में ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, जो कि हमारे जमाने में हमें नहीं था। लेकिन मैं याद करती हूँ कि मेरा जो मंत्र होता था एग्जाम में, वो मेन जो मेरा फोकस होता था वो रिविजन पर, और जब मैं परीक्षा लिखती थी उस समय पे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि हम पहले सवाल का आंसर बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन जैसे जैसे हम पेपर में नीचे बढ़ते हैं समय कम रहता है तो हमारे आंसर्स जो है उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है और रिवीजन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
1: तो मैम, सीयूईटी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और जो आपके कॉलेज में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज?
0: मैं यही कहूंगी कि कमला नेहरू कॉलेज क्योंकि एक वुमेन्स इंस्टीट्यूशन है, हम खुले दिल से छात्राओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पूरे देश भर में सीयूईटी की परीक्षा दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको अपना मनचाहा कॉलेज और मनचाहा कोर्स मिले। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जीवन बहुत बड़ा है, अगर आपको आपकी इच्छा के अनुसार एक कॉलेज या एक कोर्स नहीं मिलता तो आपको उससे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। जो आप को कोर्स मिल रहा है, जो कॉलेज मिल रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करके और उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए।
1: मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, कॉलेज के बारे में तो बहुत जानने का मौका मिला ही, लेकिन साथ ही आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट कार्यक्रम को सुनेंगे उन्हें एग्जाम में कैसे प्रिपेयर हो रहा है इसकी भी जानकारी मिलेगी। मैम से जुड़ने के लिए FM रेनबो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वाकई में एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम का टाइम जो होता है वो एक तरह से बड़ा ही फेवरिश वाला टाइम होता है। स्ट्रेस तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं ना, उसका भी एक कहना चाहिए कि उसकी भी एक पिक्चर जो है ना मन में उभरने लगती है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, एंड ऑब्वियसली टीचर्स जो हैं वो आपके बेस्ट गाइड्स होते हैं और वही आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है इन एग्जाम्स को देने का। फिलहाल मेरा काम है आप तक पहुंचाना ये सारी बातें हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहां के स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन जिसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
9: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और रेनबो पे चल रहा है वो प्रोग्राम जो है हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के दिल की धड़कन, क्योंकि हम आपको मिलवाते हैं आप ही के अपने फेलो स्टूडेंट्स से, आपके कंटेम्प्रेरीज से, और आप लोग साझा करते हैं एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स, अपने टैलेंट और ये सारी चीजें, क्योंकि एक दूसरे को देख कर ही तो इंस्पायर हुआ जाता है। स्टूडेंट लाइफ बड़ी ही कहते हैं कि इनरिचिंग होती है, और उसकी वजह यह है कि आपका जो एक्सपोजर होता है, आप जो है दुनिया को देखने का जो एक नजरिया होता है ना, वो आपका बड़ा होता है, वो बढ़ता है, और उसी के साथ साथ एक इंसान के तौर पर भी आप बेहतर होते चले जाते हैं और बेहतर जानकारी लेते जाते हैं, बेहतर वर्ल्डली वाइज होते जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना कॉलेज लाइफ का हिस्सा होती हैं, और इसी को कवर करते हैं हम हमारे इस प्रोग्राम में। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची कमला नेहरू कॉलेज, और वहां पे की उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत, और अगली बात किससे की आइए सुनते हैं।
10: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आज अल्फा जेन कैंपस कॉलेज में मैं आई हूँ, कमला नेहरू कॉलेज, और यहाँ की बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के बीच में हूँ जिनके आज एग्जाम है, और एग्जाम के बाद ये सब यहाँ पर इकट्ठी हुई है मेरे साथ। तो एग्जाम डेज जब आपके होते हैं तब कुछ स्ट्रेस नहीं होता?
11: नमस्कार, मेरा नाम साक्षी द्विवेदी है, मैं BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ। स्ट्रेस तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को होता है, तो जो बच्चे मैंने देखा इंटायर सेमेस्टर क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादा नर्वस नहीं रहते, वो स्ट्रेस में नहीं रहते। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आप इंटायर सेमेस्टर पढ़िए, ये छोड़ के कि आप एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका जो स्ट्रेस है कम रहता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट रहता है कि आपने पढ़ा है। तो इसलिए अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, आपको योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा अगर आपने।
10: बिल्कुल, और कहते हैं कि

0: एग्जाम से पहले वाला थोड़ा सा जो स्ट्रेस होता है ना, दैट इज अ गुड स्ट्रेस, क्योंकि
1: बिल्कुल वो होगा नहीं तो
0: वो
1: फिर
0: नहीं
1: हम
0: होगा तो फिर आप अच्छे
1: बिल्कुल
0: से एग्जाम में
1: नहीं दे
0: प्रिपेयर कर
1: पाएंगे
0: पाओ।
1: सही।
0: एग्जाम में हमारा स्ट्रेस बेसिकली इसलिए होता है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए, और जो अच्छे मार्क्स हैं क्या वही दिखाते हैं कि स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है?
1: बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कभी बार एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में हो गया, कुछ बच्चे तुक्का लगा दिए, कुछ अगर थ्योरेटिकल पेपर हो रहा है तो एग्जामिनर पे भी कई बार डिपेंड करता है कि चार जगह अलग अलग कॉपी जाती है, चार टीचर्स है, वो अलग अलग तरीके से इवेल्युएट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल लेवल या इंटेलिजेंसी इस बेस पे, उसके एग्जाम के बेस पे चेक हो सकते, बिल्कुल नहीं है।
0: अच्छा ये बताइए कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो किसी के लिए ज्यादा जरूरी है लर्न करना, या फिर जो उसका एकेडमिक्स है उसमें स्कोर करना ज्यादा अच्छा है?
1: स्किल तो आजकल जरूरी है। जब हम देखते हैं कि एक्सेल अगर ले लीजिए, अगर हम उसको थियोरेटिकल पढ़ेंगे तो क्या हम फॉर्मूला वो कर सकते हैं कि मैक्सिमम कैसे निकालना है, मिनिमम कैसे निकालना है, लेकिन अगर वो फिर बाद में हमको इम्प्लीमेंट करना होगा तो नहीं है। लेकिन अगर हम थियोरी के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, अगर किसी कोई भी थियोरिटिकल पेपर पढ़ते हैं उसके साथ अगर हम प्रैक्टिकल एट अ टाइम करते हैं, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेनिफिशियल है, और वो बच्चा फिर पूरे जीवन वो भूल नहीं सकता अगर प्रैक्टिकल के साथ थियोरी पढ़ रहा है।
0: तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स से बहुत ही डर लगता है, जो मैथ्स से भागते हैं, तो अच्छा जो हमारे लिसनर्स हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, उनके लिए आप कुछ टिप्स बताइए कि उन्हें मैथ्स अच्छा लगने लगे?
1: मैथ्स अच्छा लगने का है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स। मैथ्स कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है, आप उनको लाई बैठाई, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स।
0: साक्षी आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, और प्रैक्टिस इज द ओनली की जिससे आप मैथ्स को विन कर सकते हैं। जिन लोगों को डर लगता है उन्हें भी ध्यान से सुनना चाहिए कि प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स का भूत खुद ब खुद भाग जाएगा।
1: बिल्कुल
0: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। मेरा नाम सिमरन है और मैं बीए हिंदी ऑनर्स की छात्र हूँ।
0: हिंदी साहित्य पढ़ती हैं आप, तो आपने भी बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी, तो पसंदीदा साहित्य कौन सा है, साहित्यकार कौन सा है जिसे आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फणीश्वरनाथ रेणु, उनका एक उपन्यास है मैलाचल, जो कि मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा आप हिंदी ऑनर्स कर रही हैं, तो आगे जाकर आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, आपके क्या प्लान है?
1: मुझे तो प्रोफेसर बनना है हिंदी ऑनर्स का।
0: तो बताइए टॉप 3 बिहारी फूड्स के बारे में जो हर डेलियाइट को ट्राई करने चाहिए।
1: लिट्टी चोखा, भूजा चाप और ठेकुआ।
0: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
1: थैंक यू।
0: अच्छा एग्जाम्स को लेकर ना बच्चों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, और उन मिथ्स की वजह से उनकी परसेंटेज उनके मार्क्स पर बहुत ही फर्क पड़ता है। एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनके साथ आइए कुछ मिथ्स बस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: नमस्कार, मेरा नाम निधि चंदा है और मैं 3rd ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ।
0: तो सबसे पहला जो मिथ आपके सामने रख रही हूँ वो है कि स्टडिंग ऑल नाइट बिफोर एन एग्जाम इम्प्रूव मार्क्स, यानी कि अगर हम पूरी रात पढ़ते रहें तो हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे।
2: ये बिल्कुल मिथ है। पूरी रात पढ़ने से हमारे दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तुम कम पढ़ो बट अच्छे से फोकस करके पढ़ो, पूरी रात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
0: तो एक और मिथ है, मिथ कहता है कि म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करो और इससे आपके जो टेंशन भी कम होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी।
2: अगर हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, पढ़ाई और म्यूजिक दोनों साथ में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस, मान लीजिए हम 90% फोकस है, अब 80% दूसरे चीज में चला गया, 10% किसी और चीज में चला गया, तो फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
0: तीसरा मिथ ये है जो कहता है कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पढ़ो और ये कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, ये एक मिथ है या रियलिटी है?
2: मैम छोटे छोटे में बहुत लोग कंसिडर करेंगे, हम 10 मिनट पढ़े 10 मिनट ब्रेक ले, तो ये मिथ है। कम से कम 1 घंटे पढ़े 10 मिनट ब्रेक ले।
0: रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक चैप्टर को बार बार पढ़ने से, यानी कि आप रिवीजन कीजिए, जो आपको अच्छे से लर्न है उसे पहले आप रिवाइज कीजिए, एक चैप्टर को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये मिथ या रियलिटी है?
2: मैम ये है, क्योंकि क्योंकि चैप्टर लेंदी होता है, हम एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं कि हम ये देखेंगे तो अच्छा उसके बैकग्राउंड का जो चीज है वो हमें क्लिक करेगा, हमें याद आ जाएगा, तो चैप्टर को बार बार पढ़ना टाइम वेस्ट। चैप्टर को एक बार पढ़े, नोट्स लिखे, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखे और वो रिकॉल करने का ट्राई करे कि जो पीछे का चीज बताया गया हो उस पॉइंट के पीछे का, ये बेटर ऑप्शन है।
0: चलिए भाई सारे के सारे हमारे मिथ्स बर्स्ट हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लिसनर्स हैं उन्हें भी पता लगा होगा कि पढ़ाई की स्ट्रेटेजी, क्योंकि तो स्टूडेंट सुन रहे होंगे कि पढ़ाई की स्ट्रेटेजी एक्चुअली कैसे बनानी है और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए और ये सारे मिथ्स बर्स्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
3: वाकई में मिथ्स तो बर्स्ट होते ही हैं, लेकिन भाई हमारे स्टूडेंट्स का जो कहना चाहिए जो मन है ना, उसमें उतने ही सवाल और ज्यादा जो है ना आके इकट्ठे हो जाते हैं। आफ्टर ऑल कॉलेज की जो लाइफ होती है ना, उसका कल्मिनेशन पॉइंट होता है एग्जाम्स, और ये एग्जाम्स जो होते हैं ना ये पूरे साल की तैयारी तो मांगते ही है, मगर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और एग्जाम ना अगर देखा जाए तो चाहे कॉलेज का हो चाहे जिंदगी का, टिप्स कुछ दो चार वही हैं जो काम आते हैं हमेशा, तो उन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसमें फोकस इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका गोल इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, कितना सही कितना समय देते हैं और कितना क्वालिटी समय देते हैं, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।

0: अपनी तरफ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल डायरेक्टली स्टूडेंट्स और टीचर्स की बातें आप तक। हमारा प्रोग्राम है ये अल्फा जन कैंपस कॉलिंग ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो, और कैंपस कॉलिंग हर बुधवार शाम को आप तक पहुंचता है हमारे इस फ्रीक्वेंसी यानी कि आकाशवाणी रेनबो के जरिए 4 से 5 बजे के बीच।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: طمناني.
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
2: आकाशवाणी रेनबो।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो,
3: यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ, और हमारे साथ है हमारी सहयोगी ऋचा पहुंची कमला नेहरू कॉलेज, और वहां उन्होंने एग्जाम्स को जो ना डी स्ट्रेस भी किया, उसके साथ साथ डिकोड भी किया है, और बहुत ही काम की बातें वो आप सभी के लिए लेकर आई हैं। और अगर आपका भी हाल जो है ना कुछ इस तरीके का रहा है कि आधी रात बीत गई है, आंखों के आगे किताब खुली हुई है मगर दिमाग जो है वो कहीं और ही घूम रहा है, और सुबह के एग्जाम से आपको डर भी लग रहा है, और सुबह का पेपर देख के जब रोना आता है ना, उसके बाद में जब निकलते हैं बाहर और डिस्कस करते हैं तो दोस्त कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाएंगे ना। जी, 100% मार्क्स की उम्मीद के साथ हम तैयारी शुरू करते हैं मगर एग्जाम खत्म होते होते हम कहते हैं चलो पास तो हो ही जाएंगे ना। वाकई में डिस्टिंक्शन के साथ निकलना जो है ना, लाइफ का एग्जाम हो चाहे कॉलेज का एग्जाम, होता थोड़ा डिफिकल्ट ही है, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए होता है सब कुछ आसान। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अगली आवाज ऋचा की, जो आपको सुनवाएंगी कि कमला नेहरू कॉलेज में इस समय एग्जाम का फीवर किस तरीके का है।
6: आज मैं आई हूँ कमला नेहरू कॉलेज, और यहाँ की एक टीचर डॉक्टर पूजा यादव मेरे साथ हैं। आप हम कितने समय से यहाँ इस कॉलेज में पढ़ा रही हैं?
7: मुझे 15 इयर्स हो गए हैं।
6: मैम, इतना लंबा समय आपने यहाँ गुजारा है, तो आई एम श्योर कि आप जरूर जानती होंगी कुछ ऐसे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स की क्वालिटीज के बारे में जो आपने ऑब्जर्व किया होगा। स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, जिनके जो टॉपर्स होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को डेवलप भी करनी चाहिए अपने अंदर?
7: देखिए, जो भी हमारे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट क्वालिटी दे हैव, दे आर द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स, दे आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, रेगुलर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो उससे उनका टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, एवरीथिंग दे डू प्रॉपरली, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी दे हैव, दे आर रेगुलर वंस।
6: मैम, अक्सर तौर पर हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे टॉप

0: बॉस होते हैं ना, टीचर्स उन्हें थोड़ा लाइक करती है, उनके लिए हल्की सी बायस होती है, कि ये सच बात है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बायस होते हैं, लेकिन अब आपको अच्छा तो लगता ही है, कोई स्टूडेंट आपको जब आप कुछ पूछ रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिव, दे आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस, वॉट एवर यू आर गिविंग देम, तो अपना समय से सब काम सबमिट कर रहे हैं, तो दे डिजर्व दिस।
0: एब्सोल्युटली मैम, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या ये कहना सही रहेगा कि जो बच्चों के मार्क्स हैं वो उनका ट्रू पोटेंशियल दिखाते हैं?
1: नहीं, ये सच नहीं है कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे हम ये आकलन नहीं कर सकते।
0: तो एक अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा आपकी नजर में क्या है कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए?
1: बीइंग अ टीचर, हम जब रेगुलर बेसिस पे हम स्टूडेंट को देख रहे हैं, जैसे हम कंटिन्यूअस असेसमेंट के बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, लॉजिकल बिहेवियर क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लॉजिकल टर्म्स पे डिपेंडेंट है, तो उसके बेसिस पे ही हम देखते हैं कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ, व्हाट आर देयर वीकनेस, हाउ दे रिएक्ट इन द पीयर ग्रुप्स, इन द टीम वर्क, तो इन दिस ऑन दिस बेसिस वी कैन फाइंड आउट विच स्टूडेंट इज गुड।
0: क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, मुझे पता है उन्हें पता लग गया होगा कि हाई परफॉर्मर वो भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए रोज कॉलेज आना होगा, टीचर्स के जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करना होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने बल्कि अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: माई नेम इज डॉक्टर अमित सोनी, आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश।
0: सर, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपको कितना समय हो गया इस कॉलेज में पढ़ाते हुए?
2: आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2010, इट्स बीन ऑलमोस्ट 16 इयर्स।
0: सर, 16 साल से आप पढ़ा रहे हैं, आप जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं वो चेक करते होंगे, मेरे साथ साथ मुझे लगता है सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से मार्क्स होते हैं जो हम लोग सही करके आते हैं फिर भी कट जाते हैं, जो कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कि हम क्या गलत कर रहे हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में दो या तीन पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं, उससे क्या होता है कि इस क्वेश्चन को एक आंसर कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर सकते।
0: तो एक और चीज है कि अक्सर तौर पे हमने ये कहते हुए सुना है कि भगवान करे जब आपका एग्जाम जो एग्जामिनर चेक कर रहा हो उसका मूड अच्छा हो तो उसका आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बताइए बड़ी जेन्युइनली हमारे लिसनर्स को भी, पेपर चेक करते वक्त क्या सच में टीचर्स का मूड डिपेंड करता है उस पे?
2: आई डोंट अग्री विद दिस, क्योंकि देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस कोई भी एग्जामिनर है, इवेलुएटर है, उसको ये पता है, बिकॉज वी ऑल हैव बीन स्टूडेंट्स इन आवर लाइफ, है ना, एंड हमारे दिमाग में भी यही चीज थी। और हम कई बार बोलते थे, हे भगवान, जब मेरी स्क्रिप्ट आए तो मेरे एग्जामिनर को कोई अच्छी गुड न्यूज मिले,
0: तो वो खुश हो के दिल खोल,
2: तो वो दिल खोल के मार्क्स देंगे। सिंस यू नो दैट व्हेन आई बिकेम अ टीचर एंड आई बीन इवेल्युएटिंग ओवर द इयर्स, थिंकिंग जो है मेरे माइंड में कभी नहीं आई।
0: तो ठीक है, आज बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंची होंगी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली, तो हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, थैंक यू।
3: नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर शुभ्रा सिन्हा, मैं इतिहास विभाग से हूँ।
0: मैम, आजकल एग्जाम टाइम चल रहा है, बच्चों को तो स्ट्रेस हो ही रहा है, साथ में उनके पेरेंट्स को भी स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं?
3: देखिए, जो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो घर का वातावरण बिल्कुल अनुकूल बनाए, स्ट्रेस फ्री रहे, उन पर किसी तरह का दबाव ना रहे। और एक आजकल जो बहुत आम होती है ना, हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम तुलना करने लगते हैं कि भाई फलाने के बच्चे ने ऐसा किया, तुम ये नहीं कर रहे हो। कृपया करके इस तरह का वातावरण ना तैयार करें घर में। जितना आप माहौल स्ट्रेस फ्री रखिएगा उतना ही वो अच्छा रहेगा। और एक जो है इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको पता है एज अ पेरेंट, आपको पता है कि आपके बच्चे जो है उसका लेवल क्या है, तो जो बहुत हाई अचीवर नहीं है आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हाई अचीव करे। मुझे एक लगता है कि एक कॉन्फिडेंस बच्चों में यह देना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे और तुम जैसा करोगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, सुधार करने की अगर गुंजाइश होगी तो हम सुधार करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, रण क्षेत्र में लड़ने नहीं जा रहा है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आप जितना शांत वातावरण अनुकूल माहौल रखिएगा।
0: टीचर का माइंडसेट क्या होता है जब वो एक क्वेश्चन पेपर बना रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि मैं टफेस्ट क्वेश्चन दूं या वो ये सोचता है कि मैं इजी क्वेश्चन दूं जिसे सारे अटेम्प्ट कर पाए, तो एक क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त एक टीचर का माइंड क्या कैसे चल रहा होता है?
3: ऋचा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।

0: कि जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम हाई परफॉर्मर के लिए क्वेश्चन सेट करते हैं।
1: जी
0: फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 8 क्वेश्चन दिए हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि 4 क्वेश्चन ऐसे हों जो कि हर कोई आंसर कर सके, पर 4 क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि वो टफ नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा देते हैं, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों में उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है कि नहीं।
1: यानी मैम, अगर स्टूडेंट रेगुलर आए और अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करे तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मैम, एक प्रॉब्लम और मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व की है वो कि लास्ट मोमेंट पर वो टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं, बाकी सोर्सेज देखते हैं बजाय अपनी बुक्स और टेक्स्ट बुक देखने के। इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
0: ये बिल्कुल समझ में हमें आ जाता है कि ये एआई और चैट जीपीटी का ये देन है, ये बिल्कुल समझ में आता है। देखिए, जब हम पढ़ाते हैं, खास करके अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही अलर्ट हो, तो जो भी हम क्लास में लेक्चर लेते हैं और अगर वो जॉट डाउन कर रहा है तो वो उसके आंसर में रिफ्लेक्ट होता है।
1: बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारी भी मिली। आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट इस वक्त इस कार्यक्रम को सुनेंगे वो एक टीचर का पर्सपेक्टिव भी उनके सामने बहुत क्लियरली आ चुका होगा। हमसे बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिचा।
1: आज मैं आई हूँ कमला नेहरू कॉलेज और यहाँ की गर्ल्स के बीच में हूँ। मेरा नाम भूमि भंसाली है और मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो चलिए एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। अर्ली मॉर्निंग स्टडी और लेट नाइट स्टडी?
2: लेट नाइट स्टडी।
1: नोट्स और टेक्स्ट बुक्स?
2: टेक्स्ट बुक।
1: ऑनलाइन लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग?
2: आई थिंक आई विल प्रेफर क्लासरूम स्टडीज विद ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वी मूव फॉरवर्ड फॉर द डिजिटल इंडिया थिंग। आई थिंक आई वुड रादर सपोर्ट इट।
1: एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस?
2: डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन।
1: लॉन्ग स्टडी आवर्स और स्मार्ट नोट बेस्ड स्टडी?
2: इफ इट्स बिफोर एग्जामिनेशन डेफिनेटली स्मार्ट लर्निंग थ्रू नोट्स, अदरवाइज आई ऑलवेज प्रेफर टेक्स्ट बुक लर्निंग विथ लॉन्ग आवर स्टडी।
1: ओके, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। अच्छा एक बात बताइए कि जब एग्जाम में आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करती हैं?
2: ऑनेस्टली मुझे स्कूल तक स्ट्रेस होता था बहुत ज्यादा, बिकॉज बोर्ड के लिए सब बहुत ऐसे करते थे, बट जब से मैं कॉलेज में आई हूँ आई हैव एक्चुअली मैनेज्ड कि मुझे कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। तो एग्जाम से पहले आई वुड रादर पुट माई एनर्जी इन टू स्टडिंग देन एक्चुअली पुटिंग इन टू समथिंग जो मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तो स्ट्रेस मैं नहीं लेती हूँ, और अगर मुझे बाई चांस अगर स्ट्रेस हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्विक ब्रेक लेती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, आई लिसन टू सम काम म्यूजिक।
1: एग्जाम स्टेज चल रहे हैं तो ऐसे में हर जगह एग्जाम की बात हो रही होगी ना, कि घर पे भी पेरेंट्स बोलते होंगे पढ़ाई करो, स्कूल में भी, यहाँ पे भी, कॉलेज में भी टीचर्स कहते होंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग खुद भी एग्जाम मोड में। चलिए एग्जाम मोड से बाहर निकलते हैं और माई टॉप थ्रीज इज अ गेम, वो आपके साथ प्ले करते हैं। ओके, तो आजकल सिविक सेंस की बहुत बात होती है सोशल मीडिया पे और लोगों को लगता है कि बहुत लोगों में बिल्कुल जीरो सिविक सेंस है। ऐसे में ऐसे कौन से टॉप थ्री सिविक सेंस हैं जो इंडियंस को अपने अंदर डेवलप करने चाहिए?
2: सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन एंड सिविक हाइजीन बहुत, और दूसरा मेरा होगा रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी, और तीसरा मुझे लगता है जो थोड़ा सा ह्यूमैनिस्टिक बिहेवियर में आ जाता है विच इज कंसिडरेशन फॉर अदर्स। किसी को ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है तो इंस्टेड ऑफ मॉकिंग देम क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं, कोई क्यू में खड़ा है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, क्या हमें उन्हें मदद कर सकते हैं? बिकॉज मुझे लगता है एज सोसाइटी वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड बियॉन्ड जस्ट अबाउट आवर सेल्फ, तो उसके अलावा हम चीजें करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर सोसाइटी।
1: वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, थ्री लर्निंग्स ऑफ योर लाइफ?
2: सबसे पहले तो फॉरगिवनेस। मैंने बहुत लोगों को देखा है ग्रजेस रखते हैं, मुझे लगता है कि फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द थिंग्स यू कुडंट कंट्रोल। तो सबसे पहला तो खुद को माफ कीजिए फॉर द थिंग्स जो आपने गलतियां भी करी है, आगे बढ़िए और उनसे सीखिए। दूसरा मैं कहूंगी हार्डवर्क एंड काइंडनेस नेवर गो वेस्टेड। लोगों को लगता है कि मैं इतनी काइंड क्यों बनूं या फिर मैं हार्डवर्क क्यों कर रही हूँ जब कोई शॉर्ट ट्रिक अपना के आगे जा रहा है, बट मुझे लगता है कि उससे जो आप सीखते हो ना, जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं क्यों करूं, यू शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट एंड डू, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा। तो काइंडनेस एंड हार्डवर्क नेवर गो वेस्ट। और तीसरा मेरा होगा यू नो व्हाट, लोगों को लगता है कि कंपैरिजन करते हैं और अपनी लाइफ को कंपटीशन की तरह लेते हैं। आई थिंक द ओनली कंपटीशन यू शुड हैव इज योर ओन सेल्फ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोकस करिए, डिटरमाइन रहिए अपने गोल पे, काम करिए एंड यू विल रीच वेर योर सपोज।
1: एवरी टाइम ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन देन बिफोर।
2: या इट्स जस्ट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट अदर्स, यू हैव टू रीच टू योर डेस्टिनेशन, तो किसी और से कंपेयर करना इज बेस्ट.
1: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात कही आपने. और चलिए, आपके टॉप 3 फूड्स क्या हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देते हैं?
2: नंबर 1, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट माय मॉम कुक. कुछ भी बनाए वो, दाल चावल, इवन शी मेक्स द बेस्ट साउथ इंडियन फूड, तो मम्मी के हाथ का खाना. Okay. दूसरा होगा जंक में मुझे पास्ता बहुत पसंद है, और स्ट्रीट स्टाइल फूड में मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है. आई थिंक एवरी गर्ल वुड अग्री.
1: एब्सोल्युटली, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला हमारे लिसनर्स.

0: आपसे बात करके।
1: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू।
1: तो टॉप थ्रीज की अभी बात हो रही थी हमारी, और एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, क्या नाम है आपका?
2: हेलो, माय नेम इज हंशिका और मैं बीए संस्कृत ऑनर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट।
1: अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेस्ट थ्री मूवीज कौन सी हैं जो आपको बहुत ही इंस्पायर करती हैं और आपकी सभी यहाँ बैठी हुई फ्रेंड्स को जरूर देखनी चाहिए एक बार?
2: वैसे तो मैं मूवीज इतना नहीं देखती हूँ, बट मेरे को 12th फेल और थ्री इडियट्स मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मूवी लगती है।
1: थ्री बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ?
2: माई मदर, माई फादर एंड माई टीचर।
1: एग्जाम्स चल रहे हैं आपके, तो मुझे बताइए कि एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है पढ़ाई के लिए, कैसे पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स स्कोर कैसे करने के लिए आप कैसे प्रिपेयर करती है अपने आप को?
2: जो टीचर रोज पढ़ाती है तो उसको रोज रिवाइज करो ताकि वो आपको ध्यान रहे, लेकिन जब एग्जाम के पहले या जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको याद रहता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, तो आप इजीली उसे कर पाते हो, यानी कि जो डेली पढ़ा रही है टीचर उसको डेली की डेली कंप्लीट कर।
1: और जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, उन्हें अगर एक मैसेज देना हो आपको तो आपकी तरफ से मैसेज क्या होगा?
2: टाइम मैनेज अपना बहुत अच्छे से करो, रोज जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, बैकलॉग मत रखो, क्योंकि अगर बैकलॉग रखते हो तो बहुत ज्यादा लास्ट में हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि ये क्या हो गया, काश पहले पढ़ लेते हो, काश नहीं रहना चाहिए।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी और उम्मीद करते हैं अंशिका कि आपकी तरह ही बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आए और आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू मैम।
3: हेलो, मेरा नाम निधि पांडे है फ्रॉम बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर।
1: अच्छा, कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत ही करीब होते हैं और वो गाने जो हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, क्या कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप सुनते हो ड्यूरिंग एग्जाम और वो आपको बहुत मोटिवेट करता हो?
3: हाँ, मेरे एग्जाम के टाइम मेरे को आरंभ है प्रचंड सॉन्ग है जो मैं मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, बिकॉज उसमें ऐसी मतलब लिरिक्स हैं या लाइंस हैं जो बहुत मोटिवेशन है आपको खुद से दोबारा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए हो, आपके एग्जाम का स्ट्रेस है, तो आपको दोबारा से उठाते हैं और बताते हैं कि नहीं, अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप कर सकते।
1: आपकी लाइफ की कोई ऐसी लर्निंग आपको आपके पेरेंट्स ने दी हो या टीचर ने दी हो जो आपको लगता हो कि जब कभी आप हार रहे हो, जब कभी सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, तो आपको वो लाइन याद आती है एक बार फिर से रीस्टार्ट करने के लिए?
3: हाँ, मुझे मेरी मदर ने भी बताया है और मतलब बहुत लोगों ने मुझे बताया है, सीख दी है कि आपको पेशेंट रहना, मतलब पेशेंट बहुत रहना चाहिए और आपको खुद पे काम करना चाहिए। अगर आपसे कोई चीज खराब भी हो रही है तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि अगर कोई चीज खराब हो रही है तो आप दोबारा उसको सही ना कर सको।
1: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
4: नमस्कार, मेरा नाम निशा है, मैं बीए हिंदी ऑनर्स की छात्र हूँ।
1: क्या बात है, आप हिंदी पढ़ रही हैं, तो उम्मीद है कि आपने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे। चलिए, हमें भी कोई कविता सुनाइए।
4: मैंने पुष्प की अभिलाषा बहुत ज्यादा पढ़ी है क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
1: ये तो मुझे भी बहुत पसंद है।
4: चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ में देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
1: बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, रेडियो सुनती हैं आप?
4: यस मैम।
1: कौन सा रेडियो स्टेशन सुनती हैं आप?
4: FM रेनबो।
1: तो कौन से प्रोग्राम आपको बहुत पसंद है?
4: सुप्रभात, ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है।
1: बिल्कुल, दिन की शुरुआत अगर सुप्रभात से हो तो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। और शाम को भी कुछ सुनती हैं?
4: हाँ, मैसेज मसाला, जिसमें हम अपने दोस्तों को संदेश भेजते हैं।
1: वाओ, ये प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम तो एक्चुअली मेरे भी बहुत ही फेवरेट है। और अगर आप भी अपने लोगों को संदेश भेजना चाहते हैं तो मैसेज मसाला मिक्स 9868107070 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने संदेश अपनों को भेज सकते हैं। अच्छा, आप लोग सबके एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल और एग्जाम्स में हम सभी को बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए, तो ऐसा कौन सा सॉन्ग है, क्योंकि म्यूजिक सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, तो ऐसा कौन सा गाना है जो आपके स्ट्रेस को दूर करता है?
4: रुक जाना नहीं।
1: तो चलिए हम सब मिलके, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है, कोशिश करते हैं कि आपका स्ट्रेस बस्ट हो, इस गाने को गुनगुनाते हैं। रुक जा

0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना गाया आप सभी ने, और आप सभी को आपकी मंजिलें मिले ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
1: आकाशवाणी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का है ये कोलैबोरेशन, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन जो आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। एग्जाम्स के बारे में बहुत सी बातें हमने सुनी आज, बहुत सारे टिप्स भी मिले आपको, बहुत सारे मिथ्स भी बर्स्ट हुए, लेकिन चलते चलते आपको

एक प्रोफेसर का पर्सपेक्टिव दे जाती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स की ना एक फनी साइड भी होती है। तो जरा गौर फरमाइए कि पूरा साल ये कैंटीन में बिताते हैं, पूरा साल ये कैंटीन में बिताते हैं, एग्जाम्स आते ही मेरे पैर दबाते हैं, कहते हैं सर कृपा कर दो इस बार, शुरू से ही मेहनत कर लेंगे हम अगली बार, पर नेक्स्ट टाइम फिर यही दोहराते हैं, स्टूडेंट्स हैं अपनी मस्ती से बाज कहाँ आते हैं, हर बार यही प्रोमिसेस करते हैं और हर बार फिर यही कहानी दोहराते हैं। देखा जाए तो कुछ गलत नहीं कहा गया है इसमें, लेकिन हाँ फिलहाल आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर चुके हैं तो भी, और अगर कर रहे हैं तो भी, मुझे यकीन है कि आप इस प्रोग्राम को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन आज का था बस यहीं तक। कमला नेहरू कॉलेज से हमारी सहयोगी पहुंची ऋचा वर्मा वहां पर, और वहां से उन्होंने आप तक पहुंचाई ये सारी बातचीत। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम जो है मैं यहीं पर समेटती हूँ। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी

मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं म्यूजिक लियर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम का, जिसका नाम है सैटेलाइट। और आज सैटेलाइट में आपके साथ स्टूडियो में उपस्थित आपका दोस्त रोस्ट प्रवीण शर्मा।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों, गर्मी का आगमन हर किसी के लिए एक चिंताजनक समय होता है, खासकर जब लू चलती है। इस टेम्परेचर में रहना सच में बहुत कठिन हो सकता है और ये सेहत को प्रभावित भी कर सकता है, लेकिन अगर आप सावधानी बरतें तो इससे बचा जा सकता है। जी हाँ,

और दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं योग की। जी हाँ, आरोग्य पथ में आज हम बात करेंगे डीप ब्रीथिंग की। दोस्तों योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अद्वितीय है, इसमें कोई शक नहीं। ये केवल कसरत ही नहीं दोस्तों, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें स्वस्थ और निरोगी यानी आरोग्य बनाती है। योग में डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांस लेने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है, जो निरोगी काया का मुख्य मार्ग है। और जहां तक योग के महत्व की बात है दोस्तों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि योग प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो मन और शरीर को संतुलित करता है। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे योग शरीर को लचीला, मजबूत और निरोगी बनाता है। ये चिंता, तनाव और अवसाद को कम करता है। नियमित योग करने से मन शांत होता है, सकारात्मकता बढ़ती है और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है। इसके साथ साथ योग का नियमित अभ्यास शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जहां तक डीप ब्रीथिंग के अभ्यास का प्रश्न है, तो हम यहां आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप किसी शांत जगह पर सुखासन यानी पालथी मारकर या वृजासन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और फिर नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें और पेट को बाहर की ओर फूलने दें। उसके बाद सांस को कुछ सेकंड के लिए फेफड़ों में रोक कर रखें। अब धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर की ओर खींचें। इस प्रक्रिया को आप 5 से 10 मिनट तक दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों योग करते रहिए और स्वस्थ बने रहिए और सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम सिटी लाइट प्रवीण शर्मा के साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, गर्मी के दिनों में ठंडी चीजों का सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठंडे दूध, फलों का रस, ठंडी दही इत्यादि, इन सब का सेवन करने से आपको आराम मिल सकता है, आप तरोताजा बने रह सकते हैं और आप इस चिलचिलाती गर्मी से अपने आप को बचा भी सकते हैं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, गर्मी के दिनों में वेंटिलेटेड रहना बहुत ही जरूरी है, यानी अपने आप को अपने अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पर आपको जाना चाहिए जहां ठंडक आपको मिलती हो, यानी अगर जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलना चाहिए, और ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां आप आराम से रह सकते हैं दोस्तों, सुकून से रह सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप गर्मी के लहर से राहत पा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। चलिए अब मौसम की बात कर ली जाए। दोस्तों आज दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा जैसे कि हम देख रहे हैं, लेकिन कल शाम या रात से मौसम कुछ बदल सकता है। आज अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की उम्मीद है। कल बादल छाने और हल्की बारिश आ जाने के साथ

आंधी चलने के भी आसार हैं। आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। दिन भर तीखी धूप, तेज गर्म हवाएं और उमस रहेगी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

दोस्तों, कुछ देर पहले हम मौसम की बात कर रहे थे, तो जहाँ तक कल के मौसम की बात है तो कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। दिन में धूप छांव बनी रहेगी और शाम या रात के समय ठंडी हवाओं के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दोस्तों, जहां तक गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने का सवाल है, मैं आपको बताई दिए हैं, तो गर्मी के पीक आवर्स में यानी कि दोपहर 12 से 4 बजे के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें आप। अगर निकलना ही हो, मजबूरी हो, तो सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी या ORS का सेवन करते रहें और सुनते रहें प्रोग्राम सैटेलाइट आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून ने मंगलवार को उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के शेष क्षेत्रों में दस्तक दे दी है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। और राहत की बात यह दोस्तों कि 15 जुलाई के आसपास पूरे देश में इसके पहुंचने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि मानसून जल्द आएगा और हमें इस चिलचिलाती धूप से यानी गर्मी से निजात मिलेगी।
1: ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है।

और दोस्तों अब एक सुविधा की बात कर ली जाए, अब आधार सत्यापन के लिए लोगों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी या कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने इसके लिए एक नया ऐप तैयार किया दोस्तों। इस ऐप में QR कोड स्कैन करते ही आधार सत्यापन हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये ऐप आधार धारकों की जानकारी को सुरक्षित तरीके से साझा करने और सत्यापित करने की सुविधा देता है। इससे डेटा की गोपनीयता बनी रहेगी और आधार की फोटो या अन्य जानकारी के दुरुपयोग की आशंका भी कम होगी।

दोस्तों, आयुष कौशल विकास पाठ्यक्रम के तहत संचालित योग वेलनेस ट्रेनर कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। संस्थान के अनुसार अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ये कोर्स रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित हो रहा है दोस्तों।

दोस्तों, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी यानी DSEU में कक्षा 10 के बाद के तकनीकी डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। दोस्तों, जी हां, आज अंतिम तिथि है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई की गई है और विस्तृत जानकारी DSEU.ac.in से प्राप्त की जा सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल अब वक्त आपसे इजाजत लेने का आ गया है, तो फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है सैटेलाइट से अनुमति, आपसे फिर होगी भेंट, लेकिन आप कहीं जाइए क्योंकि अगले प्रोग्राम यानी कि मैसेज मसाला मिक्स के साथ अगले प्रोग्राम में आपके साथ होंगी नीरजा चतुर्वेदी, तो आप कीजिएगा उनका स्वागत और फिलहाल प्रवीण को दीजिए अगले मुलाकात तक इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो

मुख्य ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: વાણી આકાશવાણી.
1: અરે ચલા ચલા ચલા મંડળીએ, અરે ચલા.

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा आपके साथ और प्रोग्राम लेकर आई हूं मैसेज मसाला मिक्स। कहते हैं दुनिया जीतने से पहले इंसान को अपने मन को जीतना पड़ता है, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं भीतर चलती है। आज मैसेज मसाला मिक्स में हम बात करेंगे उस ताकत की जो आपको हर दिन आगे बढ़ाती रहती है। बताइए वो क्या है, एक शब्द में या एक पंक्ति में बता सकते हैं? और बताने के लिए हमें मैसेज करना होगा दोस्त, व्हाट्सएप करें हमें 9868107070 पर, क्योंकि आपकी नीरजा आप ही के संदेश का इंतजार कर रही है। बिल्कुल बिंदास होके बताइए कौन सी है वो शक्ति जो आपको लगातार आगे बढ़ाती है। रोकने वाली तो बहुत है, बढ़ाने वाली क्या है वो बताइएगा।

तुम। आकाशवाणी रेनबो पर आरजे नीरजा के साथ आप हैं और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहां बात हो रही है कि अगर सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है ना बस 5 मिनट और, लेकिन जो उठ खड़ा होता है वही अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंच जाता है। यही तो है मन को साधने की कला। तो वो कौन सी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ा देती है? हमारे साथ सोनू बिजनौर से जुड़े हैं और कहते हैं मन में बड़ी उथल पुथल होती है पर मन एक बड़ा शांत सागर है। जितना धैर्य से इस मन से काम ले सकते हैं इंसान, वह कहीं और नहीं खुद से ही है। तो जो भी कोशिश है खुद से ही करनी होगी, यही सोनू हमें समझा रहे हैं। और आनंद विहार से हमारे पास दिल्ली से मैसेज आया है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और केशु का मैसेज है और लिखा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ, आपने मेरे हाल चाल पूछे हैं तो जब आप सब लोग साथ आ जाते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और आपको पहला गाना बहुत अच्छा लगा, मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा कि मेरी कोशिश आपको पसंद आई। और आगे लिखते हैं कि हो सकता है जो हमें आगे बढ़ाते हैं और अगर ईश्वर पर विश्वास रखे बिना कि कोई ताकत आपको आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वही है कि वो जो मन का भाव है ना उससे हम जुड़ रहे हैं और हम सब एक दूसरे से सीख भी रहे हैं कौन कौन सी ऐसी बात है जो हम अपने जीवन में शामिल करके उसे आप तक ला सकते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं मुझे जीवन में आगे बढ़ाने वाली शक्ति उम्मीद है, इस उम्मीद से जीवन में हर कदम चलता रहता हूं और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता हूं। बिल्कुल, देख लीजिए। अनिल शर्मा जी का सरिता विहार से मैसेज आया है, मुझे नित्य आगे बढ़ने की आत्मशक्ति बुढ़ापे में व्यस्त रहने लेखन कला सिखाती है, क्या बात है। और दूसरी शक्ति, नित्य जल्दी सुबह की सैर मुझे फायदा देती है और इसको मैं महसूस कर रहा हूँ जिससे स्वस्थ जीवन यापन कर रहा हूँ और ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस तरह से यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो एक इंसान को जीने के लिए, खुश रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आप सबके इन आशीर्वाद, इन कृपा और इन शब्दों से हमें मनोबल हमारा बहुत बढ़ता है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं और कहती हैं मेरी सकारात्मक सोच मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल, मैं भी हर पल यही कोशिश करती हूँ कि ये जो हमारे मन की डोर है ना जो तुमसे जुड़ी है बस यूं ही जुड़ी रहे और ये जो उम्मीद और विश्वास है ना ये बना रहे। और हर गाने में और हर पंक्ति में एक ही सवाल है इस गीत के माध्यम से आपके लिए रख रही हूं। गाड़ी बहुत प्यार से चलाना दोस्त, आप चाय बना रही हैं, शक्कर थोड़ी और डाल दो, आप स्विमिंग कर रहे हैं तो बहुत मजे से कीजिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो।

0: असल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

हम तुम हैं साथ साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और बात कर रही हूँ आपके मन की कि मन में अक्सर आसान रास्ता चुनने की चाहत रहती है जबकि मंजिल तक पहुँचने के लिए कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है। ऐसे में आपके आगे बढ़ाने वाली वो सबसे बड़ी ताकत क्या है, यही सवाल मैंने पूछा था आपसे और जो श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सच में अपने जवाब के साथ जुड़ गए हैं वो है मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। कहते हैं मेरी पूरी ताकत मेरा अटूट विश्वास खुद पर जो मुझे शक्ति प्रदान करता है। गुड इवनिंग नीरजा, मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से आपने अपनी बात हमारे साथ साझा की और सच में ये बात हमें भी सीखने के लिए और बार बार अच्छी बात को भी तो बार बार दोहराया जाना चाहिए। दिनेश कुमार भंडारी हमारे साथ तुलसीपुर नेपाल से जुड़े हैं और कहते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा हौसला प्रेरणा मेरी प्यारी दोस्त देती है और साथ ही जो अलग जगह रहती है लेकिन हौसला हमेशा बनाए रखती है। बिल्कुल असली मित्र वही है जो कहीं दूर भी हो तो कहीं एक पल की मुस्कान से और एक झलक से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि खुद की इच्छा शक्ति आगे बढ़ाने की शक्ति है मेरी, ऐसा कह रहे हैं राजेश भल्ला कंकड़ खेड़ा मेरठ से। और हमारे पास मैसेज आ गया है गुन्नौर से आदिल कंवर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का और कहते हैं कि घर की एकता और प्यार सबका साथ जो है वो हमारी ताकत बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब घर परिवार में सब साथ होते हैं ना तभी कुछ भी करने का मज़ा होता है। मैडम नीरजा जी, मेरा ये कहना है कि हमारी मजबूत इच्छा शक्ति ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपने अपने आप पर विश्वास भी ज़रूरी है, ऐसा रवि जोशी मेरठ से हमें समझा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से मैसेज आया है विकास का और कहते हैं कि मैं हर पल आगे बढ़ता रहता हूँ, यही मुझे लगता है कि शक्ति देता है। बिल्कुल रुकना बंद हो, आगे बढ़ते रहना। और हमारे पास मैसेज आया है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा का। कहते हैं हम तो सुबह उठकर ना पहले फ़र्ज की नमाज़ पढ़ते हैं और मंजिल करीब नज़र आने लगती है। ऊपर वाले की इबादत कीजिए और सभी मुश्किल आसान हो जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही और बिल्कुल ऐसे ही बात से बात बनती जाती है। महिदा सुल्ताना जम्मू कश्मीर राजौरी से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं अगर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब जाए तो अलार्म की ज़रूरत

नहीं पड़ती, अलार्म के बिना भी इंसान उठ जाता है। वैसे मैं तो सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ और अलार्म के बिना ही, क्या बात है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और ये सबको सीखनी चाहिए। और ये तब होता है जब मन में वो जो विश्वास और जो आपका काम है ना, वो गति पकड़ लेता है, तब ऐसा होता है। और आपने वो गति पकड़ ली है और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज जुड़े रहना। और यही कहना चाहती हूँ कि बताइए ना, इस सवाल का क्या जवाब है? क्या वो अनुशासन है, क्या वो मेहनत है, परिवार का विश्वास है, या फिर कोई सपना है जो आपको रुकने नहीं देता? मुझे भी रुकने नहीं देता हर बार। बातें जो आपके और मेरे बीच में चल रही है, होती रहती है और हो रही है। मैसेज करना है आपको 9868107070 पर। नीरजा आपके मैसेज का इंतजार कर रही है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मंगल भवन मंगलहारी,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती से पहले मैसेज मसाला मिक्स। और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप करते हैं एक संदेश हमें और सीधे हमारे दिल तक पहुंच जाता है, और नंबर है 9868107070। और कहना यही है और सीधा साधा सवाल यही है कि आज का जो सवाल है ना, बहुत सीधा है कि आपके जीवन की वो शक्ति कौन है जो वो आपको हमेशा लगातार आगे बढ़ाती रहती है। और इसका जवाब ना सीधे आपके जीवन की कहानी कह देगा। और एक शब्द में बताइए, आपको आगे बढ़ने के लिए वो कौन सी ताकत है जो कहीं ना कहीं से मिल जाती है और अचानक से फिर से वही जोश आ जाता है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सलूजा जी, जनकपुरी दिल्ली से। कहते हैं, आप जो भी काम करें तो ईमानदारी से करें और सच्ची लगन से करें तो ऊपर वाला आपको खूब आगे तक लेकर जाता है। बिल्कुल, सच्चाई ज़रूर होनी चाहिए हर काम में। शम्सुल कमर राही हमसे कहते हैं कि मुश्किलों का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हमारे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। हमें आगे बढ़ने में हमारा हौसला, हमारी हिम्मत और अपनों का प्यार और साथ हमें कभी टूटने नहीं देता, बल्कि हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। वक्त की हर ठोकर से एक सबक लिए आगे बढ़ते रहो, जिंदगी की हर खुशी आपके कदमों में होगी। बिल्कुल, और इसका मतलब ये है कि ठोकरे सिर्फ आप ही नहीं खा रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में ठोकर खा रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि टॉपिक पर यही कहना है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी पावर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग और सबका प्यार है, और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी वही है। बिल्कुल, आप जानते हैं जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है ना, कई बार वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। अगला मैसेज आया है विपुल गौड़ का दिल्ली से, कहते हैं जय श्री महाकाल। बिल्कुल, महाकाल की जय हो। आगे कहते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा, बस यही बात मुझे हमेशा आगे बढ़ाती है। क्या बात है, बिल्कुल ये जो उम्मीद है ना, ये बहुत बहुत सकारात्मक भाव है आपका। मेरा नाम दीक्षांत धीमन है और मैं गाड़ी में अभी बैठकर जा रहा हूँ, और मैं आज पहली बार कार में बैठा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि आपको आज पहली बार क्या अच्छा लग रहा है। आज हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, या पहली बार गाड़ी में बैठे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, या गाड़ी में बैठे बैठे रेनबो सुनकर गाने सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे साथ आप भी खुश हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसा साथी है जो अपनी खुशी को हमारे साथ बांट रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है और यही समझनी है सबको कि सुख हो या दुख हो, बांटना ज़रूर चाहिए। सिर्फ अपने तक रखेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। आपके अपने जानना चाहते हैं आपके बारे में। सोनू कुमार चंडीगढ़ से कहते हैं, ज़िंदगी में आशा आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल सही कहा सोनू। और चलते चलते अगला गीत आपके नाम करती हूँ, लेकिन देहरादून से आलोक पवार और मिनी का मैसेज है, कहते हैं कि टॉपिक अच्छा लगा और अपने आसपास के लोगों से मेल मिलाप और अपनों का साथ हमें मजबूत बनाता है। समाज में एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। कितनी अच्छी बात कही है आलोक जी। सच में आलोक जी आएंगे तो आलोक हो ही जाएगा चारों ओर, और बहुत ही अच्छी बात। कहीं ना कहीं लोग अलग हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, और यही हम सबको सीखना है और जुड़े रहना है। और जुड़े रहना है दोस्त, और जिंदगी की खट्टी मीठी तकरार और ये जो वक्त का दौर है ये तो चलता रहेगा, लेकिन साथ रहना वो बहुत जरूरी है। आप ही के नाम करती हूँ ये गाना।

0: भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और जरा सोचिए ना, जब मन हार मानने को कहता है तब आपको कौन संभालता है, कौन सी वो ताकत है जो आपको फिर से खड़ा कर देती है और फिर से आगे बढ़ा देती है। बिल्कुल जवाब आ रहे हैं। और अगर दोस्त आप सोच रहे हो तो प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा, हमारा नंबर है 9868107070। और हमारे पास संदेश आ गया है ओखला संगम विहार दिल्ली से, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबके साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से गाने चल रहे हैं हमें लग रहा है हम भी आपके साथ सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, मैं जरूर आपसे उम्मीद करूंगी कि आप विषय से जुड़े हुए मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैसेज ढेर सारे आएंगे लेकिन अगर विषय से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो मैं कैसे ले पाऊंगी, है ना। प्लीज इस बात का ख्याल रखिए, अपनी नीरजा का ख्याल रखिए। हेरूलाल वाकतड़िया धाकर उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं अपना खुद का आत्मविश्वास भी हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है, मन में अगर ठान लें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी मन में ठाना नहीं है आपने, है ना। अरशद वारसी का सबसे पहला कहते हैं कि मेरा परिवार ही मेरा हौसला है, इसलिए परिवार के लिए कुछ करने में मन कभी नहीं हारता है। क्या बात है। मोहम्मद साजिद सूरत गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं और इतनी प्यारी बात कहते हैं। आगे प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और कहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं तो कुछ भी नहीं करता, सब अपने आप ही हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ ना भी करो तब भी समय के बहाव के साथ आगे बढ़ना तो तय है। एक चीज मुझ में सबसे खास है, वो मेरा मन जो दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी बहुत कम विचलित होता है। मुझे सफलता मिले या ना मिले, मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए और कभी मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि अकेले ही उसका सामना करता रहता हूँ। अरे बाप रे, आप तो सच में प्रवीण निकले। प्रवीण जी, नाम बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं आप अपना। मंजू भाटिया द्वारका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं स्ट्रांग बिलीफ इन गॉड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कीप्स मी गोइंग अहेड इन लाइफ। बिल्कुल मंजू जी, इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मोहम्मद सरफराज आलम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं असफलता की ठोकर, और बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिख के भेजी हैं। कहते हैं असफलता की ठोकरों से मैं हमेशा लड़ता गया, हर नए संघर्ष के संग और आगे बढ़ता गया, राह में कांटे मिले तो पाँव घायल भी हुए, दर्द को सीने में रख कर फिर भी मैं बढ़ता गया, धूप से तपकर परखा, आंधियों ने आजमाया, वक्त की हर मार सहकर मैं मगर बढ़ता गया, लोग मेरी हार पर जब जश्न अपने कर रहे थे मैं उन्हें चुपचाप देखता, खुद में ही गढ़ता गया, टूट कर बिखरा कई बार फिर स्वयं को जोड़कर, हौसलों की आग लेकर राज रोज ही जलता गया, मंजिलों ने दूर से आवाज जब मुझको लगाई, थके चुके कदमों को लेकर शिखर पर चढ़ता गया। आपका दिल भी किसी शिखर से कम है क्या?

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और बस कुछ ही पल हमारे बीच रह गए हैं, एक ट्रैक तो ज़रूर लूंगी और जो मैसेजेस आए हैं उन्हें भी शामिल करना है। हमारे साथ जुड़ जाएंगी 7:05 पर ज्योति अहलावत वेस्टर्न म्यूज़िक कार्यक्रम के साथ। 8 बजे कार्यक्रम होगा म्यूज़िक मस्ती, यानी फिर से मैं आपके बीच आ जाऊँगी 8 बजे, और 9 बजे कार्यक्रम होगा आपकी याद आती रही। ताहिर हसन रहेंगे हमारे साथ, और फिलहाल कविता देवभूमि उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं, मेरे माता पिता और पति चौहान जी ही मेरी ताकत हैं, मैं कैंसर की मरीज हूं, उनके प्यार से ही मैं सही हूं। बिल्कुल, आप हमेशा सही रहेंगी। और उपदेश जी ने लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु माम शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः, जय माता दी। मुझे लगता है कि जिंदगी में किसके साथ क्या होना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये समय रहते हमें समझ आ जाना चाहिए कि जो है उनको हम साथ लेकर प्यार से चलें। रिश्ते और विश्वास खराब एक पल में किए जा सकते हैं, जबकि उनको बनाने में वर्षों गुजर जाते हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमें कहते हैं थैंक्स। नीरजा जी ऐसा कह रहे हैं, प्रदीप सलूजा जी थैंक्स आपका मैसेज भेजने के लिए दोस्त। और चलते चलते एक मैसेज और लूँगी, दिस इज़ अमन प्रतीक फ्रॉम नोएडा, एक अच्छा इंस्पिरेशनल सॉन्ग, और हमारे एंसेस्ट्रल मंदिर की देवी को याद करता हूँ और फिर से मैं इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। और ज़िंदगी में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि न जाने कितने पल हम एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए एक दूसरे को आगे तो ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और देर किस बात की है, आपको बस ये समझना है कि शब्द बहुत ताकत रखते हैं और इनसे हर मसला हल हो जाता है। फिलहाल आपसे हर बार एक ही बात कहने को दिल कहता है, वो मैं इस गाने के माध्यम से आपसे कह रही हूँ। फिलहाल इजाजत ले रही हूँ, नमस्कार। मगर मुझे बार बार यही कहना है। अरिजीत सिंह की आवाज में आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से

दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉ सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ लेकर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी रेनबो पर म्यूजिक मस्ती की महफिल बिल्कुल सच चुकी है और आपके साथ का मुझे लगता है साथ तो मिल ही गया होगा, है ना। इंतजार क्या करना है, इंतजार अगले ट्रैक का था, लीजिए वो भी आ गया।

0: دفاو نه.
1: जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो लेकिन एक अच्छा गाना दिल को छू ही जाता है।

स्पीड पोस्ट मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है 8:15 पर और बिल्कुल मस्ती भी आपके पास है लेकिन म्यूजिक मैं लेकर आई हूँ। और कहते हैं कई धुनें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनाई देती हैं, बिल्कुल एक से बढ़कर एक लेकर

पहचान गए दोस्त, कौन सा ट्रैक है ये? गुरु रंधावा और हीर की आवाज में आपके लिए। रानी है ना आपके पास?

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दिल्ली की रफ्तार मेट्रो ने बनाई हुई है और मेट्रो इन दिनों, ये फिल्म का नाम है दोस्त, समझ गए? थिरक रहे हैं कि नहीं मेरी तरह? सचेत टंडन और आकाश की आवाज में ये ट्रैक।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहते हैं हर गीत की अपनी एक कहानी होती है, और एक कहानी वो लेकर आई हूँ जिसमें हर एक बच्चा चैंपियन है। उसकी माँ से पूछो, उसके पिता से पूछो, और फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना आपके लिए। आप है ना हमारे चैंपियन।
1: सीने विच नच दी आरज़ू, रुक नज़र आना तू।
0: आपका 2020 समझ आ रहा है हमें।

मैं थमेंगे नहीं, क्योंकि 9 बजे होगा कार्यक्रम। आपकी याद आती रही, ताहिर हसन होंगे हमारे साथ, और फिर 10:05 पर होगा कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक का। ज्योति अहलावत आ जाएंगी हमारे बीच, और फिर 11:05 पर एक बार फिर से ताहिर लेकर आएंगे रंगे महफिल। और फिलहाल मेरी महफिल में अभी बहुत कुछ है दोस्त आपके लिए। बारिश हो, धूप हो, या रात की तन्हाई, संगीत हर मौसम का सबसे प्यारा साथी है।

कहते हैं संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि थके हुए जज्बातों को फिर से जोश में भरने के काम भी आता है, और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो दोस्त आपके तो बहुत काम आएगा, है ना।

बिल्कुल दोस्त, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है जब उसमें संगीत होता है और अपने अपनों का साथ होता है। मैं ले रही हूँ इजाजत, नमस्कार। और हाँ, शाम अभी भी जैसी आप चाहते हैं वैसी ही है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम जनाब, क्या हाल चाल। हर शाम का अपना एक रंग होता है और हर दिन कुछ ना कुछ पीछे छोड़ जाता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो ना पूरी तरह से गुजरते हैं और ना पूरी तरह रुकते हैं, बस कभी किसी धुन के साथ, कभी किसी बात के साथ धीरे से दिल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, शायद इसीलिए इसी सिलसिले का नाम है आपकी याद आती रही। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। आइए आज इस शाम को कुछ गीतों के साथ, कुछ एहसासों के साथ, कुछ मुस्कुराती हुई यादों के नाम करते हैं।

कभी कभी याद किसी चेहरे की नहीं आती, याद किसी चेहरे की नहीं आती, बस किसी वक्त की आती है। वो वक्त जो आपके पीछे छोड़ गया और फिर दिल की उसी पुरानी गली में थोड़ी देर के लिए टहलने का दिल करता है। बताइए, ऐसा है या नहीं?

अजीब बात है ना, इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन किसी की हंसी, किसी का लहजा और किसी की फिक्र कहीं ना कहीं संभाल कर रखता है ना।

0: कुछ यादें किताबों में रखे हुए फूलों की तरह होती हैं, आवाज नहीं करती मगर जब सामने आती हैं तो महका जरूर देती हैं पूरा आलम, है ना। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस लौटकर जल्दी आता हूँ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, FM रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। और अजीब बात यह है जनाब, वक्त बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, रास्ते भी नए हो जाते हैं, लेकिन दिल कुछ चीजों को बदलने नहीं देता। शायद इसीलिए कि कुछ यादें उम्र भर मेहमान नहीं, घर का अफराद बनकर रह जाती हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर और प्रोग्राम चला है आपकी याद आती रही। तो जनाब, बात कर रहे थे याद की। कभी किसी की बात याद नहीं आती, बस उसके साथ वाली खामोशी याद आती है। वो लम्हे याद आते हैं जब कुछ कहना जरूरी नहीं होता और फिर समझ आता है कि सुकून अक्सर अल्फाजों में नहीं, एहसासों में छुपा रहता है।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जनाब क्या कहना, प्यार तो है ही आपसे भी और आप लोगों को हमसे भी, हमारे रेनबो से भी। फिलहाल इसी के साथ मुझे कहना होगा, यादों का सिलसिला अभी फिलहाल रोकते हैं। हालांकि यादें तो कभी रुकती नहीं, आपके दिलों के अंदर बैठी हुई हैं, कभी जाती नहीं, जा भी नहीं सकती। फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक, यानी कि थोड़ा सा टाइम लूँगा आपसे। रेनबो क्लासिक लेकर नीर ज्योति अभी आपके साथ रहेंगी। 11 बजे मैं आपके साथ आऊँगा, यानी 11:05 पर प्रोग्राम रहेगा रंगे महफिल। जब तक कि नहीं, इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया।

0: है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया है और अब वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसके संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टेलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: of your dog.
1: What a lovely voice that is. Shirley Bassey, our star performer for this edition of Rainbow Classic. I absolutely love her, and I do hope that you enjoyed listening to her mesmerizing, dramatic style of singing. There's so much pain and such feelings, you know. You can actually feel it. You can actually just seeps in. Yeah, she captivated her audiences with this kind of a performance, you know, soulful performance and extraordinary vocal strength. Her unforgettable performances have made her a true icon. I'm talking about Shirley Bassey. And on that note, we are taking a short little sweet little break. Stay with us because there's lots planned on the other side.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
5: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।

0: हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। रात फिर अपनी नरमी और अपनी खामोशी के साथ उतर आई है। दिन भर की मसरूफियत और धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही, और अब वक्त है उन अल्फाजों का जो शोर नहीं करते, बस एहसासों में समझे जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गजल का एक मिसरा, एक आवाज का लहजा, और दिल खुद ही उन्हें पूरा कर लेता है। मैं हूं आपके साथ ताहिर, और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। आइए जनाब, इस रात को थोड़ा आहिस्ता जीते हैं, कुछ गजलों, कुछ यादों और उन एहसासों के साथ जो अक्सर खामोशी में ज्यादा सुनाई देती हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। कभी कभी जनाब इंसान किसी को भूलना नहीं चाहता और ना कोई उसे पूरी तरह याद करना चाहता है। बस दिल के किसी कोने में एक छोटी सी जगह देकर उसके साथ जीना सीख लेता है। वक्त अपना काम करता रहता है। दिन महीने साल सब गुजर जाते हैं, मगर कुछ नाम, कुछ आवाजें और कुछ दुआएं दिल की डायरी से कभी मिटाई नहीं जाती। और फिर एक शाम, एक गजल या एक तन्हा लम्हा उन पर जमी हुई गर्द को हल्का सा हटा देता है और इंसान मुस्कुरा कर कहता है, हां ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई, यानी और होनी है, बाकी है।
2: वर्सेटाइल कलाकार, कमाल की फनकार, एक अलग अंदाज, एक अलग अदा, एक अलग रंग,

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। जिंदगी की सबसे अजीब बात शायद यह है कि इंसान हर चीज का हिसाब रखना चाहता है, मगर एहसासों का हिसाब कभी पूरा नहीं कर पाता। किसी ने कितना दिया, किसी ने कितना छोड़ा, ये सब बातें हैं। असल बात तो यह है कि किसने दिल में कितनी जगह बनाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी अपने होने का एहसास छोड़ जाते हैं। शायद इसीलिए खुशी और उदासी कभी अलग अलग नहीं चलती। जनाब, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी का सफर तय करती हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजी

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूं आपके साथ ताहिर, और प्रोग्राम है रंगे महफिल। और बात हो रही है रात की। रात का अपना एक मिजाज होता है। मैंने क्या कहा? यही तो कहा, रात का एक अपना मिजाज होता है। ये जल्दी में बात नहीं करती, ये ठहरती है, सुनती है और फिर धीरे से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। दिन भर हम बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर रात उन्हें फिर से सामने लाकर बिठा देती है। किसी की हंसी, किसी का इंतजार, किसी की नाराजगी या किसी की दुआ, और फिर लगता है कि इंसान सच में अकेला कभी नहीं होता। उसके साथ उसका एहसास हमेशा सफर करता है, चाहे वो बातें अच्छी हों ये यादें पुरानी।

कभी कभी सोचता हूँ जनाब कि अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाता तो शायद किसी गजल की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा ख्वाब और थोड़ी सी उदासी, शायद यही तो चीजें हैं इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। जो बातें हम कह नहीं पाते वो किसी शायर के अल्फाज कह देते हैं, और फिर लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल को की तरफ देखा, देख लिया हो। इसीलिए अच्छी गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो जी जाती हैं, और अच्छी आवाजों के साथ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक, और प्रोग्राम चला है रंगे महफिलों। मैं हूँ आपके साथ ताहिर।
6: कौन सी ताकत है कैप्टन, जो हमें अपने घरों से, अपने प्यार से, अपने माँ बाप से दूर दूर लाकर कंधों पर बंदूकें रखने को मजबूर कर देती है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूट।

ये बता दे मुझे जिंदगी, बताती कुछ भी नहीं है जिंदगी, जीना पड़ता है। फिलहाल मुझे ये बता रही है कि मुझे जाना होगा। अब जाते वक्त तो थोड़ा सा गमगीन हो जाता हूँ हमेशा, लेकिन जाना होगा, वक्त की किल्लत है। तो बहरहाल इसी वादे के साथ जाऊँगा कि बहुत जल्द आपकी खिदमत में वापस आऊँ। जब तक ख्याल रखिए अपना, ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शब खैर, खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति

0: निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टालो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपए के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अजी जनाब, चाहते तो हम भी आपको बहुत हैं और बहुत शिद्दत से चाहते हैं। इसी मोहब्बत और चाहत का ये सिलसिला है जो आज इतने दशक हम साथ चलते चलते आए। कब रेनबो की शुरुआत हुई थी, आज से पहले, इतने सालों पहले, और आज तक चलते चलते कई पड़ाव आए, कई दोहराव आए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारी पीढ़ियां बदली, हमारे चाहने वाले जो हमारे ऑडिशन ऑडियंस हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनमें इजाफा हुआ। और इतने बदलाव के बाद कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ प्यार बढ़ा। आपके और हमारे बीच की जो लाइन थी वो बिल्कुल ही नहीं है, अब तो कभी थी ही नहीं। और इसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि आपकी मोहब्बत हमें कहीं से भी खींच लाती है। लगता है कि अब आकाशवाणी रेनबो पर दोस्तों से मिलने का वक्त हो गया है। लगता है कि इतने बदलावों के बाद भी हम नहीं बदले, हमारी मोहब्बत नहीं बदली। हाँ, टेक्नोलॉजी आई इस दौरान बदलाव के रास्ते चलते, और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐड हुए, और उसके साथ साथ जुड़ाव हुआ हमारे और ज़्यादा श्रोता मित्रों का, हमारे सभी साथियों का जो हमारे साथ आज भी बदस्तूर बने हुए हैं, देश में नहीं, देश से बाहर। और अब चूंकि न्यूज़ ऑन एयर ऐप भी है, आपके और हमारे बीच का एक जो दायरा था इसको और थोड़ा थोड़ा सीमा को कम कर दिया। अब विदेशों से हमारे बहुत श्रोता जुड़ते हैं, देश में भी काफ़ी दूर दूर से हमारे श्रोता मित्र, हमारे साथी जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि अब सफ़र शुरू करने का मज़ा ही कुछ और है। चलता रहता है पूरे दिन, हमारे सभी शोज़ के साथ आप जुड़ते हैं। फ़िलहाल इस शो में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और शो का नाम है चूँकि ज़ीरो आवर शो, और तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बता दूं कि 00 के आगे 15 भी लग गया, यानी 15 मिनट हो चुके हैं रात के 12 बजकर, और नया दिन शुरू हो चुका है, नया शो शुरू हो चुका है। और 0 आवर बनता है हमारे दिन का आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर पहला शो। आप सभी के साथ मुलाकात होती रहेगी, बातचीत हम करते रहेंगे, खूबसूरत गानों को लेकर आएंगे हम आपके लिए, और एक ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं ना जाएं, हमारे साथ रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत 102.6 पर ही भी, और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। मेरे यानी रजत के साथ और प्रोग्राम है 0 आवर शो। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल स्वागत।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू

0: सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्ष

0: लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इन्नेस क्रेस्टिलो को हराया, जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 1:06 हो चुके हैं और अब शुरू होता है सुहानी रात शो, जिसमें आप एंजॉय करेंगे नॉनस्टॉप म्यूजिक। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से, फ्रॉम द एल्बम खो गए हम कहां से, और उसके बाद आप नॉनस्टॉप गानों को एंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही गानों की बीट्स पर झूमते रहिए।

0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत

0: के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सभी का स्वागत। 2:14 और कुछ सेकंड्स, लगभग 35 सेकंड्स हो चुके हैं और प्रोग्राम है भुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। खूबसूरत गाने और अपने हर अपने ज़माने के साथ साथ हर दौर में छा चुके गाने होते हैं मेरी पहली पसंद आप सभी के लिए। और आपसे भी जो सलाहियत मिलती है, इतना साथ मिलता है, स्नेह मिलता है, लगता है कि प्रोग्राम यूं ही चलता रहे। लेकिन शो तो बहुत आते हैं और आने ही चाहिए और हमारे सभी शोज लाजवाब होते हैं, इसीलिए तो आप सभी का इतने अरसे से प्यार हमें मिलता रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये साथ हमेशा बना रहे। आकाशवाणी रेनबो 102.6 के साथ आप सभी का और ये मोहब्बत हमेशा यूं ही चलती रहे। भुलाए ना बने प्रोग्राम में भी खूबसूरत और ताज़ा तरीन तो नहीं कहूँगा, हर दिल अजीज गानों का एक पूरा गहवारा लेकर मैं हाजिर होने की कोशिश कर रहा हूँ इस संस्करण में भी, इस अंक में भी आज। और उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल दिमाग से, आपके जहन से ये गाने जो कभी उतरे ही नहीं, एक बार उनकी याद फिर से ताज़ा तरीन हो जाएगी और आपको पसंद आएंगे। आपकी जो खूबसूरत जो रात है, कहीं कहीं बदली छाई हुई है, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई भी है, हो भी रही है दिल्ली NCR की अगर बात करें तो, और ये कहीं गर्मी से जूझते हुई बारिश की बूंदें और इन सब के बीच आप तक पहुंचते हैं हमारे खूबसूरत गाने, बहुत शानदार समीकरण बनाते दिख रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रजत, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए अपने इस शो भुलाए ना बने में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर, जैसा कि मैं बताता ही रहता हूँ, हम उपलब्ध हैं। आप देश दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से हमसे जुड़ने के लिए आज ही इसे डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है हमारा ये ऐप जो है। इस ऐप के जरिए भी दूरियां कम हुई हैं और आगे भी होंगी, ये दुआएं करते हैं। और आपका स्वागत करता हूं भुलाए ना बने कार्यक्रम में, मैं रजत।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से

0: सर्वाधिक है।
1: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आधी रात के 3:06 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। और आधी रात के 3:06 हुए हैं और अभी आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। तो ऐसे ही गानों को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन महत्व

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारत

भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिंदगी का मतलब ही उतार चढ़ाव है, कभी सावन है तो कभी पतझड़ है। और इन मौसमी जुगलबंदियों के बीच जो हम मुहावरे बनाते हैं उसके बीच अगर कुछ रहता है ना तो वो होता है हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा साहस। साहस के साथ आगे बढ़ते जाइए, चेहरे पर एक चुटीली सी मुस्कान लिए ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ आप चल रहे हैं, आप चलायमान हैं, प्रगतिशील हैं। और साफ सुथरी विचारधारा के साथ आगे बढ़ें, एक उन्मुक्त विचार शैली के साथ आगे बढ़ें तो सकारात्मकता अपने आप आपका साथ देती रहेगी। यही सिखाते हैं हमारे बहुत सारे फिल्मी गाने और उन्हीं के बीच हम हैं आपके साथ। प्रोग्राम है सारे गामा, मैं हूँ रजत आपके साथ। इस प्रोग्राम में सुबह के 4:13 हुए और कुछ ही पल में यानी अब से 35-40 मिनट की बात और है और इस दिन की पहली सूर्य की किरण इस धरती के आगोश में आएगी और उसका स्वागत करने के लिए हमारे पास तैयार हैं बहुत सारे गाने और हमारे साथ तैयार हैं हमारी बातें आपसे करने के लिए। करना चाहें तो जरूर कीजिए 9868107070 9868107070 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि दिन की सकारात्मकता से, दिन की पॉजिटिविटी से असल में आपके मायने क्या है, किस खास तरह की परिभाषा से आप नवाजते हैं। जब आप जिंदगी में कहते हैं ना कि हम चल रहे हैं, हमें चलना है, तो आप इसे किस पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, आपकी सकारात्मकता की परिभाषा क्या है, बताइए मुझे। और सुनते रहिए गाने मेरे साथ यानी रजत के साथ, आकाशवाणी रेनबो 102

0: कहना चाहिए कि बताएं क्या आप समझते हैं जिंदगी के बारे में, और क्या आप और पाना चाहते हैं जिंदगी में, जो आपको मिला है कितना बहुत है वो आपके लिए बता सकें तो जरूर बताइएगा। प्रोग्राम है सारे गामा मेरे यानी रजत के साथ।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

रंग हरोर है, उमंग हरोर है, लेकिन कविताएं लिखने की भी बात होती है। देखिए मैं शुरू कर देता हूँ लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे अतराफ, हमारे आसपास, जिनमें ये कला कूट कूट कर भरी है। अभी एक मैसेज मिला मुझे कुछ देर पहले, अनिल शर्मा जी हैं हमारे श्रोता मित्र, सरिता विहार दिल्ली से लिख रहे थे। इन्होंने कहा कि रजत मैं सुबह के सैर करते समय अपने विचार लिख रहा हूँ। जब इन्होंने हमें मैसेज किया, इन्होंने कहा कि सकारात्मक ता मेरे बुढ़ापे के समय सुबह दिन की शुरुआत मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अनुशासन, शौर्य, आगे बढ़ने की ऊर्जा और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। फिर एक कविता भी लिखी इन्होंने, अपने गमों की नुमाइश मत कर, अपने नसीम की आजमाइश ना कर, जो तेरा है वो तेरे पास आएगा हर रोज़, उसे पाने की ख्वाहिश मत कर, तकदीर खुद बदल जाएगी सुने इंसान, मुस्कुराना सीख ले वजह तलाश मत कर। बहुत खूब, बहुत ही खूब। और इन्होंने कहा कि यह रचना मैंने सुबह 3:30 बजे लिखी। अनिल जी आपको मुबारक, आपकी रचनात्मकता, आपकी सकारात्मकता और आपके विचार किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई तब्दीली अगर ला पाएं तो वाकई आपकी कलम क्रांतिकारी बनकर उभरेगी और याद की भी जानी चाहिए। इतनी बढ़िया लाइन है आपने।

भी इस तरह का मौका तराश कर लेंगे। बहरहाल अब आ चुके हैं हम उस पड़ाव पर जब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। 4:55 होने को हैं, कुछ ही देर में हम अगले पड़ाव की तरफ अपने आध्यात्मिक गीतों पर, भजन कीर्तन, भक्ति संगीत पर आधारित अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मुझे लेनी होगी आपसे विदा, लेकिन आप सभी के लिए शुभ संदेश यही है कि आप खुश रहें और जो कर रहे हैं उसे पूरी लगन, पूरे मगन होकर कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नमस्कार, सुप्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र

सुबह के 5:06 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप भजन कार्यक्रम आराधना में। तो शुरुआत करते हैं इस भजन के साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है

तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।